सुप्रभात। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, सितंबर 1948 की ज्येष्ठ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार ईस्वी सन 2026 के जून महीने की 11 तारीख। हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। इस सभा के कार्यक्रमों में हम आपका स्वागत करते हैं।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टि

0: दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं खेती किसानी, जानकारी लेते हैं पशुओं में टीकाकरण के बारे में। वाचन है अनीता तिर्की का।
4: पशुओं को संक्रामक एवं छूत के रोग से बचाव हेतु टीका लगाना अति आवश्यक है। स्वस्थ पशुओं में टीका लगा लेने से पशु के अंदर 15 से 20 दिनों में एक प्रभावी इम्यूनिटी आ जाती है, जिससे पशु में उस रोग के होने की संभावना नहीं रहती है। और यदि किसी कारणवश उस रोग का आक्रमण हो भी जाता है तो रोग बहुत हल्के रूप में होगा, जिससे आसानी से ठीक किया जा सकता है अथवा स्वतः ठीक हो जाता है। पशुओं में संक्रामक रोग जैसे गलाघोटू, लंगड़ा बुखार, खुरहा चपका, टीटनस, टीबी, रिंडर पेस्ट वह रोग है जो बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजुआ से उत्पन्न होता है। यह रोग जब स्वस्थ पशु अथवा किसी अन्य रोगी पशु के संपर्क में आता है तब उसे छूत के कारण रोग का जीवाणु संक्रमण हो जाता है और पशु संक्रामक रोग से ग्रसित हो जाता है। छूत के कारण जीवाणु संक्रमक पशु शरीर में त्वचा के द्वारा, श्वास नली के द्वारा या प्लासेंटा के द्वारा अथवा भोजन द्वारा, आंख के द्वारा उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। पशुओं को यह जरूरी है कि उसका रेगुलर टीकाकरण किया जाए। टीका द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा शक्ति समय के साथ पशु शरीर में घटता चला जाता है, जिससे रोग लगने की संभावना बन जाती है। अतः रेगुलर टीका लगा लेने से पशु शरीर में पुनः रोग से लड़ने की सुरक्षा शक्ति बन जाती है और पशु रोग से ग्रसित नहीं हो पाता है। पशुओं में जैसे गाय भैंस के लिए FMD, HSBQ और एंथ्रेक्स का टीका उपलब्ध है, उसी तरह भेड़ और बकरी के लिए FMD, HSBQ, PPR इत्यादि का टीका उपलब्ध है। सुकरों के लिए FMD और स्वाइन फीवर का टीका उपलब्ध है। इसी तरह कुत्तों के लिए हेपेटाइटिस, रेबीज इत्यादि का टीका उपलब्ध है, जिसे अवश्य ही लगवा लेना चाहिए। FMD या खुरहा चपका रोग पशुओं का जूठा चारा, पानी, नाद या बर्तन में खाने से लग सकता है। रोगग्रस्त पशु के सीधे संपर्क में आने से या रोगग्रस्त पशु के आसपास संक्रमित वायु के सेवन करने से यह रोग लग सकता है। इस रोग में पशु को तेज बुखार आता है, करीब 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। पशु खाना पीना बंद कर देता है, जुगाली करना बंद कर देता है, मुंह से लार बहते नजर आने लग जाते हैं, साथ ही साथ मुंह से चपचप की आवाज भी आने लगती है। मुंह के अंदर और खुरों के बीच में छाले हो जाते हैं। स्वस्थ पशुओं को प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर पहला टीकाकरण वर्षा ऋतु से पहले और दूसरा बसंत ऋतु से पहले इस रोग का

0: शरीर में प्रवेश कर बीमारी पैदा करता है। इस रोग में पशु जो रोगी है वो लंगड़ाकर चलने लगता है। पीछे पुट्ठों पर अथवा अगले पैर के ऊपरी भाग से कंधे तक के भाग में गर्म, कड़ा और दर्दनाक सूजन हो जाता है, दर्द युक्त होता है, जिसे दबाने पर चरचर की आवाज के साथ बालू जैसा अनुभव होगा। यह इस रोग का मुख्य पहचान है। अगर सूजन बड़ा या फैला हुआ हो तो चीरा लगाकर गंदा झाग युक्त खून को बाहर निकाल लिया जाता है और एंटीसेप्टिक घोल से पट्टी कर दी जाती है और पेंसिलिन इंजेक्शन दिया जाता है पशुओं को। इसे बचाव के लिए स्वस्थ पशु को BQ टीका, बड़े पशु को 3 ml और छोटे पशु को 1 ml की त्वचा, जो गर्दन है उसकी त्वचा के नीचे प्रतिवर्ष दिया जाता है मई जून के माह में, और पशु को रोगी होने से बचाया जाता है।
1: खेती किसानी कार्यक्रम में अभी आप जानकारी ले रहे थे पशुओं में टीकाकरण के बारे में। वाचन था अनीता तिर्की का, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं चिंतन।

0: आत्मविश्वास यानी भीतर का भरोसा, इसकी अलग ही ताकत होती है। अगर किसी को खुद पर भरोसा हो तो कोई भी कठिन काम आसानी से पूरा किया जा सकता है। रामायण में एक प्रसंग है कि वानर सेना माता सीता की तलाश में जब समुद्र तट पर पहुंची तो विशाल समुद्र को पार कर लंका जाना कठिन प्रतीत होने लगा। तब अंगद ने कहा कि मैं समंदर पार कर लंका तो जा सकता हूं, परंतु वहां से लौट आने की क्षमताओं पर मुझे संदेह है। तब जामवंत जी ने हनुमान को उनकी शक्ति का एहसास कराया और कहा कि आप जाकर सीता जी का पता करिए। उत्साहित हनुमान ने कहा कि मैं अभी लंका जाकर सभी राक्षसों का संहार करके माता सीता को वापस लेकर आता हूँ। तब जामवंत ने कहा कि ये कार्य श्री राम स्वयं करेंगे, आप सिर्फ ये कार्य करके लौटिए। इस प्रकार तमाम बाधाओं को पार कर हनुमान जी अपने लक्ष्य को पूरा करके लौटे। इस प्रसंग से हमें सीखना चाहिए कि जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो मन में आशंकाएं और भय जरूर पनपते हैं, मगर हमें इनसे पार पाने के लिए अपने भीतर के भरोसे को कायम रखना चाहिए। उत्साह के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ने से भीतर का भरोसा भी मजबूत होता है। अगर हमें अपने अंतर से अपनी क्षमता पर यकीन हो जाए तो कोई भी लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आखिर आत्मविश्वास है क्या और इसे कैसे जागृत किया जाए? वास्तव में आत्मविश्वास भीतर की ऐसी शक्ति है जो अपार ऊर्जा के प्रवाह से हमें क्षमता को पहचानने और अपने मुकाम तक जाने के लिए संबल प्रदान करती है। प्रायः हम बहुत कुछ करने के सपने देखते हैं, मगर संदेह की भावना हमें डरा देती है। जब हमारी क्षमताओं और आकांक्षाओं पर हमें ही यकीन नहीं रहता, तब हम अंतस से दब्बू बन जाते हैं। अज्ञात भय से इच्छाएं मन में ही दफन हो जाती हैं। इन दबी इच्छाओं को जागृत करने के लिए ही भीतर का भरोसा पैदा करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा कि पर्वतारोही, खिलाड़ी आदि भी दूसरे लोगों की तरह ही होते हैं, फिर वो इतने कठिन लक्ष्य को इतनी आसानी से कैसे पा लेते हैं? तो इसका जवाब है आत्मविश्वास। विजेता और पराजित में सिर्फ इसका ही अंतर रह जाता है।
1: आप सुन रहे थे चिंतन, संकलन और वाचन था दिनेश कुमार लाल का। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं आराधना। सबसे पहले सुनते हैं देशभक्ति गीत, लता मंगेशकर का गाया हुआ, शब्द रचना है प्रदीप की।

वतन की मिट्टी का कर्ज हम दिल से चुकाएंगे, शहीदों की अमर गाथा हर पीढ़ी को सुनाएंगे, जो हंसकर देश पर मिट गए उन्हें शत शत प्रणाम, तिरंगे की शान में हम जीवन भर गीत गाएंगे। अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत, लता मंगेशकर का गाया हुआ, शब्द रचना थी प्रदीप की। और आइए अब सुनते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम आराधना में लता मंगेशकर के। और सबसे पहले सुनते हैं असीत देसाई के स्वर में यह भजन। पीर पराई जान सके वही सच्चा इंसान है, सेवा करुणा प्रेम जहां वही प्रभु का धाम है। वैष्णव जन की पहचान न धन से न सम्मान से, जो दुखियों के संग खड़ा है वही ईश्वर के समान है। आइए सुनते हैं असीत देसाई के स्वर में यह भजन।

भक्ति गीतों का कार्यक्रम आराधना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। न धन दौलत, न राजपाट, न जग की चतुराई, प्रेम के आगे फीकी पड़ जाए हर प्रभुताई। मीरा, शबरी, सुदामा ने जग को यही बताई, भगवान को सबसे प्यारी होती है प्रेम सगाई। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम दास जलोटा का गाया यह भजन।

जानकी नाथ की कृपा हो तो हर संकट टल जाता है, भटकी हुई जीवन नैया को सच्चा किनारा मिल जाता है। जिस पर राम का हाथ रहे उसे किस बात की चिंता, अंधियारा चाहे कितना हो प्रकाश स्वयं खिल जाता है।

जहां संतों का संग मिले वहां मन निर्मल हो जाए, क्रोध लोभ और मोह का हर बंधन पल में खो जाए। संत परम हितकारी हैं, मानवता के रखवाले, उनके चरणों की धूल से जीवन सफल हो जाए। आइए सुनते हैं सुरेश वाडेकर के स्वर में यह भजन।

सुरेश वाडेकर के गाए इस भजन के साथ ही संपन्न हुआ आज का भक्ति गीतों का कार्यक्रम आराधना। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।

देवताओं के आग्रह ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। संपूर्ण जगत के कल्याण की भावना से प्रेरित सरस्वती ने रानी कैकेयी की मुंह बोली दासी मंथरा की बुद्धि फेर दी। श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सजाई अयोध्या नगरी का उत्सव जैसा निखरा रूप मंथरा की आंखों में चुभने लगा। उदास होकर वो कैकेयी के पास पहुंची। कैकेयी मंथरा की उदासी का कारण पूछती हैं, किंतु वो चुप है। लंबी सांसें लेते हुए आंखों से आंसू ढरका रही है। कैकेयी को अंदेशा होता है कि महाराज दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। कहीं उग्र स्वभाव वाले लक्ष्मण ने उसे दंडित तो नहीं किया है। तब मंथरा का त्रिया चरित्र मुखरित होता है। कहती है, उसे भला कोई दंड क्यों देगा। हे रानी, तुम्हारा पुत्र यहां से दूर परदेश में है और तुम यहां कोमल शैया पर पड़ी सुबह की मीठी नींद ले रही हो। राजा के छल कपट का ज्ञान तुम्हें क्यों होने लगा। मंथरा के मन का मैल कैकेयी से छुपा न रहा, किंतु उस पर क्रोध न कर कैकेयी ने राम के हृदय में अपने लिए उस स्नेह, आदर और सम्मान की बात कही जो माता कौशल्या को भी नहीं मिलता।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता, ब्लड प्रेशर और आयुर्वेदिक उपचार। भेंट वार्ताकार होंगे डॉक्टर राम विनोद पाठक, भेंटकर्ता संजीव कुमार लाल। समय याद रखें सुबह 7:05 पर। सुबह सुरीली आप सुनेंगे 7:15 पर। खुला आकाश का वक्त होगा 7:45 पर। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता बच्चों का बचपन और उनके अधिकार। वार्ताकार होंगे भाव प्रीतानंद। समाचार प्रभात 8:00, मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर और प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 8:30 पर। लोक रंग 8:45 पर आप सुनेंगे प्रेमचंद कालिंदी और साथियों का गाया हुआ खोलठा लोकगीत।

रस रंजन 9 बजे से 9:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत, आप सुनेंगे पंडित मोर मुकुट केडिया द्वारा सितार पर राग अहिर भैरव में आलाप और झोड़ के बाद दो गते, दोनों ही गते तीन ताल में निबद्ध होंगी। तबले पर संगत करेंगे श्रीजीत चैटर्जी।

विज्ञान जगत आप सुनेंगे 10 बजे से। वाचन एवं सहयोग होगा बसंत कुमार का, प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। जोहार रांची 10:30 पर, आपकी पसंद आप सुनेंगे 11:30 पर। 12 बजे से महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा, खेलों में नाम रोशन करती महिलाएं, जानकारी मिलेगी अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेल, प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडेय की। अनुरंजनी आप सुनेंगे 1:20 पर।

हरिहरन के गाए हुए सुगम संगीत आप सुनेंगे 1:45 पर। जय भारती का वक्त होगा 2:30 पर। रांची मेलोडीज 3:30 पर। इससे पहले आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग 3 बजे से। विज्ञान जगत आप सुनेंगे 4:02 पर। वाचन एवं सहयोग होगा बसंत कुमार का, प्रस्तुति होगी प्रभु सरण की।

युवाणी शाम 5:02 पर प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की। श्रमिक लोक आप सुनेंगे शाम 5:30 पर, प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की। किसान वाणी शाम 6:02 पर, प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की।

0: आप जानकारी ले रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदेहल्याः राष्ट्रपतिभवनस्य सांस्कृतिक केन्द्रे नीति आयोगस्य एकादशे शासि परिषदोपवेशने अध्यक्षतां विधास्यति। विकसित भारताय प्रधानमन्त्रिणः टीम इंडिया इति संकल्पानुगुणम् अस्य वर्षस्य मुख्य विषयो विकसित भारतम् @2047 इत्यस्य कृते समावेशी मानव विकासः इन्क्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत @2047 इति अस्ति। विषयोयम् आयु क्षेत्र लिंग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमिकायाः भेदं विनैव प्रत्येकं भारतीयस्य कल्याणाय विकासाय च केन्द्रीकृतो वर्तते। उपवेशने अस्मिन् अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये दृष्टिं समेत्य देशस्य प्रत्येकं नागरिकं प्रति अस्य सुदृढमापनयोग्य परिणामेषु परिवर्तनस्य विषये गभीरं मन्थनं भविष्यति। अस्मिन् महत्वपूर्णे उपवेशने समावेशी मानव विकास प्रारूपस्य विषये चर्चां कर्तुं सर्वे मुख्यमन्त्रिणः केन्द्रशासित प्रदेशानाम् उपराज्यपालाः च एकत्रिताः भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आश्वासितवान् यत् देशस्य 44,100 कोटि नागरिकाणाम् आकांक्षाः निश्चप्रचं पूरयिष्यन्ते। तेन समुदीरितं यत् राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधन दलं सदैव राष्ट्रस्य विश्वासं सुदृढं कृतवत् अस्ति। अत्रावधेयं यत् श्रीमोदी गतरात्रौ नवदेहल्याः भारत मण्डपे आयोजितं एनडीए सम्मेलनं संबोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा भणितं यत् देशस्य प्रत्येकमपि नागरिकः विकसित भारतस्य स्वप्नेन पूरितो वर्तते। एषः स्वप्नः इदानीं कस्यापि एकस्य व्यक्तिविशेषस्य प्रशासनस्य वा राजनीतिकदलस्य परिधौ सीमितो नैवास्ति।
2: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा। देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: अस्मिन् अवसरे एनडीए घटक दलैः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक उपलब्धेः श्लाघनाय एकः संकल्प प्रस्तावः स्वीकृतः। एतदन्तरं सम्पूर्ण विश्वतः प्रधानमन्त्रिणे अभिनन्दन सन्देशाः आगच्छन्तः सन्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः, यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन, इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी देशस्य चांसलर फेडरिक मर्स, इजराइल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू, कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री मार्क कॉर्नी सहैव दक्षिण कोरिया देशस्य राष्ट्रपतिः ली जे म्यूंग इत्यादयः प्रमुख वैश्विक नेतारः श्रीमोदिनं प्रति वर्धापनं प्रेषितवन्तः। संस्कृति मन्त्रालयेन गतवर्षस्य कृते संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराः अथ च उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्काराः घोषिताः। अकादमी संघस्य सामान्य परिषदा संगीत नृत्य रंगमंच पारंपरिक लोक जनजातीय कला

0: वैविध्येभ्यः कलामञ्चं यावत् विविधक्षेत्रेभ्यः अष्टोत्तरैकशत प्रसिद्धाः कलाकाराः चतुर्विंशत्युत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य अथ च पञ्चविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य अकादमी पुरस्कारार्थं चिताः। एते चिताः पुरस्कारविजेतारः अशेषस्य हि देशस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। ये विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः च सम्बद्धाः सन्ति। बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धायाः महिलानां वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य द्वितीय चक्रं प्रति प्रविष्टवत्यौ। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई भी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमे

रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस दौरान डॉ. जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ. जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुल्ता रांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में, हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा, सुनते हैं भेंटवार्ता, ब्लड प्रेशर और आयुर्वेदिक उपचार। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर राम विनोद पाठक, भेंटकर्ता संजीव कुमार लाल।
1: नमस्कार साथियों, आधुनिक जीवन शैली में एक बीमारी धीरे से चुपके से आपको इसका पता भी नहीं चलता है और आपके अंदर ये समा जाता है, चुपके से प्रवेश कर जाता है और ये बीमारी आपको परेशान करता है। एक ऐसी ही बीमारी है रक्तचाप। तो ये रक्तचाप क्यों हो जाता है, क्या कारण है और इसका हम आयुर्वेद में किस प्रकार उपचार करें, इस संबंध में बातचीत करने के लिए आज हमारे इस स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वैद्य डॉक्टर राम विनोद पाठक साहब। पाठक साहब स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: देखिए, बदलती जीवन शैली में ब्लड प्रेशर से हर व्यक्ति पीड़ित होता जा रहा है। तो ये ब्लड प्रेशर क्या है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर क्यों हो जा रहा है लोगों में?
2: रक्तचाप का प्रभेद दो है, एक निम्न रक्तचाप और दूसरा ये उच्च रक्तचाप। तो निम्न रक्तचाप होता क्यों है, ये अस्वस्थ शरीर का विशेष ये परिचय देता है और इसके रोगियों को ये महसूस नहीं होता है कि आखिर हो गया क्या, नाड़ी सुस्त हो जाती है, मन उदासीनता से भर जाता है और ये चाहकर भी कुछ भी सक्रिय कार्य नहीं कर सकता, ये रोगी की मनोदशा बड़ी गंभीर हो जाती है। इसलिए इनको विशेष इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए इनको तंदुरुस्त रहने का विशेष हिदायत दिया जाए। तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें तो ये रोग दूर रहेगा। पाचन संस्थान इनका गड़बड़ाया हुआ रहता है, इसीलिए ऐसा होता है दोनों रोगियों को, उच्च रक्तचाप निम्न रक्तचाप दोनों में।
1: तो जब हम रक्तचाप या ब्लड प्रेशर से पीड़ित हो जाते हैं, मालूम पड़ जाता है कि हमें ब्लड प्रेशर है, तो नियंत्रण किस प्रकार करें? हमारे जो खान पान है, हमारा जो दिनचर्या है, वो आजकल अस्त व्यस्त हो गया है, ये कितना प्रभावित कर रहा है हमारे ब्लड प्रेशर को, और क्या खाएं और क्या ना खाएं और किस प्रकार अपनी दिनचर्या को हम व्यवस्थित करें?
2: अपने आप में इंसान समझे कि हमें क्या खाना है तो सुधार हो जाए। मन को समझाने की आवश्यकता है, जितने तैलीय पदार्थ हैं, मसालेदार भोज्य पदार्थ हैं, उन सबों से थोड़ा नाता तोड़ा जाए और प्राकृतिक जीवन में अपने आप को लाया जाए। जहाँ तक हो सके हरी सब्जियों का विशेष सेवन और समय से सामयिक भोजन लिया जाए। सबसे बड़ी आज दिनचर्या की जो बात आपने कही बिल्कुल सही है, जलपान समय से नहीं, भोजन समय से नहीं, शयन समय से नहीं, तो असमय से होने से पाचन संस्थान गड़वा जाता है और वो गड़वा गया इसका मतलब आपका पूरा का पूरा स्वास्थ्य लुढ़क जाता है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सोचा जाए कि हम कैसे स्वस्थ रहें तो इसके लिए प्राकृतिक स्तर से विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो प्रकृति सुलभ प्रदान कर रही है उसे स्वयं लिया जाए, अपनी ओर से कृत्रिम भोज्य पदार्थ बनाकर उसे दूरी बनाई जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है।
1: डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर से हम पीड़ित हो गए, उपचार की बात करें, निदान की बात करें और संयमित जीवन हम यापन करें, किस प्रकार करें, कैसे अपने आप को हम व्यवस्थित करें आज की भाग दौड़ वाली जीवन शैली में, क्योंकि हम काम से घिरे हुए हैं और चाहते हैं हमारा काम फटाफट हो जाए और इसमें हम तनाव के शिकार हो जाते हैं, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है, मन भारी होने लगता है और हम ये कहते हैं कि हमें थकावट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें ना हो, हम स्वस्थ रहें और एक स्वस्थ व्यक्ति ही समाज में

0: का ये फूलना दे दिया जाए, फुला दिया जाए कटोरे में और सुबह उसको छान कर पिया जाए तो रक्तचाप से मुक्ति मिल जाएगी निस्संदेह। और अपने आप को रेशेदार सब्जियों का विशेष भोज्य पदार्थ में शामिल किया जाए, ज़्यादा बेहतर होगा। और समय से भोजन करने का प्रयास किया जाए, ये नहीं कि असमय कुसमय भोजन नहीं करना चाहिए।
1: रेशेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए, तो इसमें कौन कौन सी सब्जी आ जाती है, कौन कौन से भोज्य पदार्थ आ जाता है
0: इसमें? जैसे भिंडी है, भिंडी की सब्जी बनाई जाए, नेनुआ की सब्जी बनाई जाए, तो ये सब विशेष रेशेदार पत्तेदार साग जितने भी हैं वो लिया जाए। मुनगा जिनको सहजन लोग समझते हैं, सुट्टी बोलते हैं, तो उसको सब्जी में लिया जाए, बहुत अच्छा है वो, लाभकारी भी है, हर तरह से लाभकारी है। और उसका यूं ही मतलब समझा जाए तो ये मुनगे सहजन की एक मुट्ठी पत्ती यूं ही कोमल कोमल फुनगी वाली पत्तियां चबा कर अगर ले लिया जाए तो फिर क्या कहना है, सेंधा नमक के साथ लिया जाए बहुत अच्छा, फायदेमंद भी होगा, ब्लड प्रेशर तो जल्द से जल्द उनका घटेगा ही घटेगा और निम्न रक्तचाप वाले को बैलेंस में आएगा। ये बहुत ही सर्वोपरि मतलब चिकित्सा का एक केंद्र बिंदु है अपने आप में सहजन।
1: इसके बावजूद भी हमें समस्या आ रही है
0: जी,
1: तो आयुर्वेदिक उपचार क्या है?
0: बहुत सारे ऐसे हुए जिनका रक्तचाप 300 तक चला जाता है, 300 से ज़्यादा हो जाता है, हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं और जीवन मरण में बदल जाने की ज़्यादा संभावना होती है, बचना चाहिए। उसके लिए अश्वगंधा का सिरप, अश्वगंधा का सिरप लेना जरूरी हो जाता है, 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम जरूर लिया जाए, अश्वगंधा का चूर्ण लिया जाए, साथ साथ त्रिफला अगर अपने आप में उसका सेवन का प्रयास किया जाए सुबह शाम केवल 1-1 चम्मच, तो ये नियंत्रण ब्लड प्रेशर से बिल्कुल हो सकता है और बहुत ही अच्छा स्वस्थ इंसान अपने आप में महसूस करेगा।
1: तो अपने जीवन शैली को हम सुधार कर अपना रक्तचाप को हम नियंत्रित कर सकते हैं। आपके रसोई में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, मेथी है, मगरेला है, अजवाइन है, उसका आप सेवन कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन आप गुजार सकते हैं। और ये आज के जो जीवन शैली वाली बीमारी है, लाइफ स्टाइल डिजीज है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इससे आप दूरियाँ बना सकते हैं। क्या कहेंगे पाठक साहब कि हमारे साथी स्वस्थ रहें, लोग स्वस्थ रहें, इस तरह की बीमारी से वो कोशों कोशों दूर रहें?
0: तो उसके लिए मैं यही चाहूँगा, स्वयं को समझने की आवश्यकता है और नहीं तो किचन तो हर किसी के यहाँ है ही है, उसमें सर्व सुलभ हर घर में आज उपलब्धता है जिसको कहते हैं लहसुन। लहसुन की केवल और केवल 5 से 6 तुरियां छीलकर उसको तोड़कर गुनगुने गोदुग्ध में लिया जाए, देसी गाय का विधान है उसमें, और नहीं तो फिर गुनगुने जल के साथ सेवन किया जाए, तो मेरा दावा है 8 दिनों के अंदर ही जो नियंत्रित रहेगा वह उच्च रक्तचाप कभी बेलगाम नहीं बढ़ेगा, नियंत्रित बिल्कुल ही रखा जा सकता है, बशर्ते कि खान पान पे सुधार हो, खान पान का ख्याल रखें। सामयिक भोजन श्रेयस्कर होता है, असामयिक भोजन बड़ा दुष्कर होता है।
1: तो दोस्तों अपने खान पान पर नियंत्रण रखिए, संयमित जीवन यापन कीजिए, तो इस तरह की बीमारियां आप पर हावी नहीं होगी और आप स्वस्थ रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य डॉक्टर राम विनोद पाठक साहब। और दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, ब्लड प्रेशर और आयुर्वेदिक उपचार। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर राम विनोद पाठक, उनसे बातचीत कर रहे थे संजीव कुमार लाल।

आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस का गीत। शब्द रचना थी हसरत जयपुरी की, संगीत था शंकर जयकिशन का। और आइए अब सुनते हैं फिल्म जिस देश में गंगा बहती है का ये गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत बद किया है शंकर जयकिशन ने, स्वर मुकेश का।

नया दौर, यह है फिल्म जिसका गीत अब आप सुनेंगे मोहम्मद रफिया और आशा भोसले के स्वर में। साहिर लुधियानवी के बोल हैं, संगीत है ओपी नैयर का।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: और आइए सुनते हैं फिल्म मुनीम जी का ये गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार ने। शब्द रचना है साहिल लुधियानवी की, संगीत एच डी बर्मन का।

किशोर कुमार के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म गोलमाल का गीत। शब्द रचना थी गुलजार की, संगीत था आर डी बर्मन का। और आइए अब सुनते हैं फिल्म आंधी का ये गीत, जिसे लिखा है गुलजार ने, संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने, स्वर आशा भोसले और किशोर कुमार का।

बूंद जो बन गई मोती, यह है फिल्म जिसका गीत अब आप सुनेंगे मुकेश का गाया हुआ, भरत व्यास के बोल हैं, संगीत है सतीश भाटिया का।

0: मुकेश और साथियों के गाए फिल्म बुंद जो बन गई मोती के इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ आज का सुबह सुरीली आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं खुला आकाश, सुनते हैं भाव प्रीतानंद की वार्ता, बच्चों का बचपन और उनके अधिकार।
1: समाज और देश के भविष्य को रचनात्मक और ऊर्जावान बनाने के लिए बच्चों के बचपन को सुरक्षित करना आज की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। संविधान में बच्चों को जो अधिकार दिए गए हैं उसे वास्तविक अर्थों में लागू करना हम सबों का दायित्व होना चाहिए, तभी इसकी सार्थकता है। हमें उन अधिकारों के विषय में जानना समझना होगा जो बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। बच्चों को उनका बचपन सौंपने और उनके अधिकार के प्रति सजग होने से पहले हमें यह देखना होगा कि इसके लिए किन खास बातों पर ध्यान देना है। जब अधिकार की बात करते हैं तो भला बच्चा है या बच्ची, सबसे पहले बात आती है जीने के अधिकार की, अच्छा खाने पीने के अधिकार की, अच्छी सेहत बनाने के अधिकार की। बच्चों का स्वास्थ्य, पोषण व वृद्धि देश के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, लेकिन अपने देश में लगभग 40% बच्चे कुपोषित हैं। कुपोषण के कारण बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं और उनका विकास प्रभावित होता है। गरीबी इसका प्रमुख कारण है, लेकिन गलत खान पान की आदत के कारण अमीर परिवार के बच्चों में भी अलग तरह का कुपोषण हो ही जाता है। बाल अधिकारों की चर्चा के क्रम में अगला अहम मुद्दा संरक्षण का हो सकता है। संरक्षण के कई आयाम हैं। उन्हें कम उम्र में रोजी रोटी के लिए श्रम करने को विवश नहीं किया जाए, बाल विवाह से बचाया जाए, भीख या अंग व्यापार के लिए उनका इस्तेमाल नहीं किया जाए। यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने बच्चे की शादी नहीं कर दें या अपने घर व संस्थान में बाल श्रमिकों को नहीं रखें। केवल इतना ही काफ़ी नहीं, बल्कि हमें सजग होना होगा कि हमारे आसपास कहीं बच्चों का हक तो नहीं छीना जा रहा है। ऐसे मामलों में आवाज़ उठानी होगी, विरोध करना होगा, ज़रूरत पड़े तो कानूनी मदद भी लेनी होगी। कौन इस पचड़े में पड़े जैसी मानसिकता छोड़नी होगी, तभी बचपन मुस्कुराएगा, तभी देश का भविष्य सुरक्षित होगा। बच्चों की सुने बिना बच्चों के हक की बात कैसे पूरी हो सकती है? सहभागिता बच्चों का सहज अधिकार है। उन्हें सुने, उनकी बातों को समझें, हमेशा संरक्षक या अभिभावक बनकर नहीं, बल्कि कभी कभी बचपन की गलियों में झांक कर, उनके स्तर तक लौटकर उन्हें समझने की कोशिश करें। वो क्या और क्यों चाहते हैं यह जानना भी जरूरी है। विकास का हक भी बच्चों का प्रमुख हक है। आखिर उनके सामने संभावनाओं का अनंत आकाश जो फैला है। विकास का हक सीधे शिक्षा से जुड़ा हुआ है। संविधान के 86वें संशोधन के तहत बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक अपने पास के स्कूलों में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा सरकार की मदद पाने वाले निजी स्कूलों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वे कमज़ोर वर्गों के पिछड़े तबकों के 25% बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें। बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में अप्रैल 2010 में ऐतिहासिक कदम उठाया गया। 6 से 14 वर्ष के बीच बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार से जोड़ा गया। इस कानून से उन करोड़ों बच्चों को लाभ हुआ जो स्कूल नहीं जा पाते हैं। कानून को स्थानीय और राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी बनाया गया। इतिहास में झांके तो ह्यूमन राइट्स और सिटीजन पावर ने 54 अनुच्छेदों में बच्चों को 41 विशिष्ट अधिकार दिए हैं। भारत में इसका अनुमोदन 1992 में किया गया। 41 विशिष्ट अधिकारों में से 16 अधिकार भारतीय बच्चों के संदर्भ में जरूरी पाए गए। इनमें बच्चों से भेदभाव नहीं करना, बाल हितों की रक्षा करना, बाल अधिकारों को लागू करना आदि महत्वपूर्ण है। 14 नवंबर को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। पंडित नेहरू का बच्चों के प्रति प्रेम और उनके अधिकारों को लेकर सजगता किसी से छिपी नहीं है। नेहरू ने जो बच्चों के भविष्य के लिए मानक तय किया था उसे पूरा करना हर सजग नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। बच्चों को तमाम तरह के अधिकार मिलने के बाद भी वास्तविक अर्थों में कई कमियाँ अब भी दिखाई देती हैं। बच्चों का होटलों में काम करना, कूड़ा बीनना, असमय वयस्क कार्यों के बोझ से दब जाना आज भी जारी है। हालांकि इन सबों से लड़ने के लिए देश में कई स्वयंसेवी संगठन और लोगों के व्यक्तिगत प्रयास जारी हैं। झारखंड में ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बड़ी समस्या है। इसमें गरीब बच्चों को घरेलू कार्यों के लिए महानगर ले जाया जाता है। वहाँ हर स्तर पर उनके बाल अधिकारों का हनन किया जाता है। हम अगर थोड़ा सजग होंगे तो राज्य में जारी इस समस्या से आसानी से निजात पाई जा सकती है। मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे लोगों के जीवन स्तर को सुधार कर हम बाल अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। तकनीकी से संपन्न इस युग में अब ऐसा समय आ गया है जब हम बच्चों को संविधान में दिए गए अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। तकनीक के जरिए हमारा जुड़ाव गांव-गांव तक हो गया है। गांव और छोटे शहरों में कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने वंचित हैं, इसे आसानी से जाना जा सकता है। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते उसके कारणों को चिन्हित कर शहरों और गांवों में समग्र योजना पर काम किया जाए तो हर बच्चे को स्कूल भेजा जा सकता है। सरकार की तरफ से बच्चों की शिक्षा के लिए कई योजनाएं हैं, उन पर काम करना, उसे गंभीरता से लागू करना आज के समय की मांग है। राज्य सरकारें अगर तय मानकों के अनुसार गांव-गांव में स्कूल खोलें और शिक्षकों की भर्ती बच्चों के अनुपात में करें तो वह दिन दूर नहीं जब पिछड़े से पिछड़े राज्य में भी संपूर्ण साक्षरता की अलख जग जाएगी और हम चाचा नेहरू के सपने को साकार कर पाएंगे। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियाँ जीवन के सुनहरे दौर बचपन की अहमियत को बखूबी दर्शाती है। यह भी सच है कि कोई लौटा दे मेरा बचपन की टीस, सिद्धत से तभी मन में उठती है जब अपने बचपन को पूरा जिया हो, बचपन के अधिकार मिले हों, संरक्षण मिला हो, जब अपनी संभावनाओं का भरपूर इस्तेमाल कर देश और समाज के विकास में अपना योगदान दे पाए हों। अन्यथा क्या हमें मालूम नहीं कि बचपन तो जूठे बर्तन समेटने में भी गुजरता है। बचपन तो कूड़े की ढेर में फेंक दिया जाता है। बचपन में अग्नि के फेरे दिलवाकर आग में झोंक दिया जाता है। एक रोटी के लिए तरसता रह जाता है बचपन। अपनी जमीन से सैकड़ों मील दूर फेंक दिया जाता है बचपन। ज्ञान के दो आखर सीखने की उम्र में नन्ही उंगलियां बीड़ी और दोने बनाने में लग जाती हैं। हम भूल जाते हैं कि बच्चे हमारे भविष्य हैं, देश व समाज की भावी तस्वीर हैं। अपने भविष्य को सजाने संवारने के लिए हमें निदा फाजली के शेर को जिंदगी का फलसफा बनाना होगा कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए।
0: खुला आकाश कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भव प्रीतानंद की वार्ता, बच्चों का बचपन और उनके अधिकार।

आपको बता दें, शाम 6:32 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी दुनिया। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा, छोटा परिवार विकास का आधार। हिंदी वार्ता भी इस कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे, बच्चों को स्वावलंबी बनाएं। वार्ताकार होंगी सुगंधा विहंगम, प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। आदिवासी अखाड़ा आप सुनेंगे शाम 7:15 पर, जो कि हो भाषा में होगा। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा, नशे की लत से बचने के उपाय, जल संरक्षण के महत्व पर भी आपको जानकारी मिलेगी। प्रस्तुति होगी प्रदीप कुमार की।

सुनहरी यादें आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। आप सुनेंगे पंडित विश्वमोहन भट्ट द्वारा गिटार पर राग बागेश्वरी में आलाप और गत, मध्य लय की रचना झपताल और द्रुत लय की रचना तीन ताल में निबद्ध होगी।

युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम युवाणी में आज आप शाम 5:02 पर सुनेंगे युवाओं के लिए खेल का महत्व। इतिहास में आज का दिन, भारत और विश्व विशेष, रोचक तथ्यों की भी जानकारी इस कार्यक्रम में आपको मिलेगी। प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। श्रमिक लोग कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा, भीषण गर्मी में श्रमिक अपने सेहत का रखें ख्याल, हुनर का हाथ, तरक्की के साथ अपने कौशल को पहचानें और आगे बढ़ें, कार्यस्थल पर सुरक्षा और प्रबंधन की शिक्षा पर भी आपको जानकारी मिलेगी, तनाव मुक्त और शांत मन के लिए योग कितना जरूरी है यह जानकारी भी आपको इस कार्यक्रम में मिलेगी। प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की। आप जानकारी ले रहे थे हमारे केंद्र से। आज प्रस्तुत कुछ विशेष कार्यक्रमों के बारे में अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
3: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
4: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
4: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
2: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया।

0: किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
2: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
1: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
3: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है, जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल ICC ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
5: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में

0: जीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
2: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
1: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्ता ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1000 रुपए तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने एनटीए ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमेरिका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में पीओके की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने पीओके में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का पीओके में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी ITBP। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार, 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खान पान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू चेयर 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग इन न्यू दिल्ली टुडे। Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction. Indian Chamber of Commerce plans to channel investments worth 1 lakh crore rupees into West Bengal. IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast sub

0: काम। स्नातक शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट का नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश। 30 जून को होगी मामले की अगली सुनवाई। राजधानी रांची, धनबाद और दुमका सहित 9 जिलों में आज से 14 जून तक तेज आंधी, बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और रांची में शुरू हुई झारखंड T20 लीग में आज छोटा नागपुर रॉयल्स की भिड़ंत धनबाद डायमंड से और रांची टाइटंस का मुकाबला संथाल स्ट्राइकर्स से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। वे दिल्ली पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड का पक्ष मजबूती से रखेंगे। केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने जमशेदपुर में NH-33 फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। सांसद विद्युत वर्ण महतो की मौजूदगी में हुए इस निरीक्षण के बाद मंत्री ने कहा कि वन विभाग की क्लियरेंस मिलते ही काम में और तेजी आएगी। यह परियोजना 2027 तक पूरी होगी, जिससे मानगो वासियों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी।
2: एलिवेटेड कॉरिडोर के माध्यम से जाम की समस्या का निजात मिलेगा। पदाधिकारी के द्वारा बताया गया है कि 26 के लास्ट में और 27 की शुरुआत में बनके चालू हो जाएगा। मात्र 1 किलोमीटर फॉरेस्ट क्लियरेंस राज्य सरकार नहीं दे रहा है, जिसके चलते परेशानियां हो रही है।
0: झारखंड हाईकोर्ट ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 मामले में राज्य सरकार की संशोधन याचिका स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 30 जून तय की है। साथ ही कैवियट दायर करने वाले पक्षकारों को याचिका की सॉफ्ट कॉपी देने का आदेश दिया है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि एकल पीठ के आदेश में संशोधन के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के नए अध्यक्ष का गठन कर दिया गया है। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई तक नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा मद में 10 करोड़ 70 लाख का बजट जारी किया है। इसमें से 3 करोड़ 60 लाख राज्य के 6 प्रमुख मेडिकल कॉलेजों और राजकीय फार्मेसी संस्थान के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित है। बाकी राशि का उपयोग चिकित्सा संस्थानों में बिजली, पुस्तकालय, भवन मरम्मत, नए वाहनों की खरीद और बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। स्वास्थ्य विभाग ने सर्पदंश, एंटी रेबीज और अन्य जीवन रक्षक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने के लिए निर्देश दिए हैं। मौसम जनित बीमारियों से निपटने के लिए पहले से तैयारी रखने और एक्सपायरी के करीब पहुंच चुकी दवाओं की खरीद पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। चतरा महिला महाविद्यालय में 7 दिवसीय संकाय विकास कार्यक्रम का समापन हो गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और विनोबा भावे विश्वविद्यालय के इस संयुक्त कार्यक्रम में 60 शिक्षकों को भारतीय ज्ञान परंपरा और AI का प्रशिक्षण दिया गया। समापन पर कुलपति प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा ने कहा कि आने वाला समय विकसित भारत 2047 और AI का होगा। उन्होंने घोषणा की कि अगले चरण में विश्वविद्यालय के 50 शिक्षक विशेष प्रशिक्षण के लिए BHU जाएंगे और भविष्य में 1 लाख छात्र छात्राओं को AI की ट्रेनिंग दी जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध।

0: है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवाणी का नामांकन रद्द करने की मांग पर कांग्रेसी नेताओं द्वारा विधानसभा के सामने प्रदर्शन करने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे संवैधानिक प्रक्रिया पर दबाव बनाने की कोशिश करार दिया।
1: लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को विधानसभा के गेट के बाहर रखने का काम किया वहां का प्रशासन ने, और कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सब विधानसभा के अंदर घुसे। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। भेदभाव की राजनीति प्रशासन करना बंद करे। ये आरओ की जिम्मेवारी है कि बिना दबाव में आए जो सही है उसको सही करें, जो गलत है उसको गलत करने का काम करें।
0: इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवाणी के नामांकन में कई त्रुटियां होने के बावजूद उसे रद्द नहीं किया गया। रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर नेताओं ने निर्वाचन आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए इस मामले को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास ले जाने की बात कही।
2: मध्य प्रदेश में हमारे मीनाक्षी नटराजन जो उम्मीदवार थे उनको 15 मिनट में जब त्रुटि पाई गई तो उन्हें रद्द किया गया, और यहाँ पर हमारे द्वारा जो आपत्ति की गई उससे 24 घंटा का समय दिया गया, उसमें कई त्रुटियां थी।
0: धनबाद के टाउन हॉल में झामुमो ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण सहकार्यशाला का आयोजन किया। केंद्रीय सचिव विनोद पांडे और टुंडे विधायक मथुरा प्रसाद महतो की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को आगामी SIR और मतदाता सूची पुनरीक्षण की बारीकियां सिखाई गईं। विनोद पांडे ने बताया कि 30 जून से शुरू होने वाले इस अभियान से पहले बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना और एजेंटों को प्रशिक्षित करना बेहद जरूरी था।
3: आने वाली जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का सामना BLA 2 और बूथ स्तर के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कैसे करेंगे, इन सारे विषयों पर हम लोगों ने प्रकाश डाला। जो 30 तारीख से SIR की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो आप अपने बूथ पर किस तरह से मुस्तैद रहेंगे, इन सभी विषयों पर हम लोगों ने बातचीत की।
0: और अब मौसम का हाल। राज्य के 9 जिलों में आज से 14 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार रांची, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, गुड्डा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह में कहीं कहीं तेज बारिश होने की आशंका है। इस मौसम बदलाव को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग और स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। रांची के JSCA स्टेडियम में झारखंड T20 लीग का रंगारंग आगाज हो गया है। टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले कल देर शाम भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने चमचमाती ट्रॉफी का अनावरण किया। आज मैदान पर दो रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें पहले मैच में छोटा नागपुर रॉयल्स की भिड़ंत धनबाद डायमंड से होगी, जबकि दूसरे मैच में रांची टाइटंस का मुकाबला संथाल स्ट्राइकर्स से होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने झारखंड से राज्यसभा चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन वैध होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, कांग्रेस की आपत्ति खारिज, नाथवाणी मैदान में कांग्रेसियों ने धरना दिया तो भाजपा कार्यकर्ता भी पहुंचे विधानसभा। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 4 में से जिन 3 नामों पर लोकभवन को थी आपत्ति वही बनाए गए सूचना आयुक्त। हिंदुस्तान के शब्द हैं, जमीन के ऑनलाइन रिकॉर्ड अब CEO के डिजिटल हस्ताक्षर से होंगे प्रमाणित। दैनिक जागरण लिखता है, 108 एम्बुलेंस सेवा में लापरवाही पर 2 चिकित्सा पदाधिकारी निलंबित। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रखेंगे झारखंड का पक्ष। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने जमशेदपुर में NH-33 एलिवेटेड कॉरिडोर का लिया जायजा, कहा 2027 तक पूरा होगा काम। स्नातक शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट का नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश, 30 जून को होगी मामले की अगली सुनवाई। राजधानी रांची, धनबाद और दुमका सहित 9 जिलों में आज से 14 जून तक तेज आंधी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और रांची में शुरू हुई झारखंड T20 लीग में आज छोटा नागपुर रॉयल्स की भिड़ंत धनबाद डायमंड से और रांची टाइटंस का मुकाबला संथाल स्ट्राइकर्स से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

लोक रंग लोकगीतों के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं खोरठा लोकगीत। कलाकार हैं प्रेमचंद कालिंदी और साथी।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। कलाकार हैं प्रेमचंद कालिंदी और साथी।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम। कलाकार हैं प्रेमचंद कालिंदी और साथी।

प्रेमचंद कालिंदिया और साथियों के गाए इस खोरठा लोकगीत के साथ ही संपन्न हुआ आज का लोक रंग। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे रसरंजन।

आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म ताजमहल का गीत। साहिल लुधियानवी के बोल थे, संगीत था रोशन का। और आइए अब सुनते हैं फिल्म प्यार का मौसम का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म मंजिल का ये गीत, जिसे लिखा है योगेश ने, संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

किशोर कुमार के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म मंजिल का गीत। और आइए अब सुनते हैं फिल्म याराना का यह गीत, किशोर कुमार का ही गाया हुआ। शब्द हैं अनजान के, संगीत राजेश रोशन का।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के,
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
5: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
6: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
5: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कैसे क्लिक में, अरे वाह।
8: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: कभी कभी यह फिल्म जिसका गीत अब आप सुनेंगे, मुकेश के स्वर में, साहिल लुधियानवी के बोल हैं, संगीत है हयाम का।

लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह के गाए फिल्म मौसम के इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ आज का रसरंजन। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। सुनते हैं पंडित मोरमकुट केडिया द्वारा सिदार पर राग अहिर भैरव में आलाप और जोड़ के बाद दो गतें। दोनों ही गतें तीन ताल में निबद्ध हैं। तबले पर संगत कर रहे हैं श्रीजीत चैटर्जी।

आप सुन रहे थे पंडित मोर मुकुट केडिया द्वारा सितार पर राग अहिर भैरव में आलाप और जोड़ के बाद दो गते। दोनों ही गते तीन ताल में निबद्ध थीं। तबले पर संगत कर रहे थे श्रीजीत चटर्जी। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत संपन्न हुआ।

आपको बता दें 2:30 पर आप सुनेंगे जय भारती। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे 3:00 से। 3:30 का वक्त होगा रांची मेलोडीज का। दस बजे और फिर 4:02 पर आप सुनेंगे विज्ञान जगत। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा, एसी का उपयोग सावधानी से करें। भेंटवार्ता भी आप सुन सकेंगे, कॉन्टैक्ट लेंस का बढ़ता क्रेज। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर अमित कुमार जायसवाल, उनसे बातचीत करेंगे बसंत कुमार।

महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम गृहलक्ष्मी आप सुनेंगे 12 बजे से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा, खेलों में नाम रोशन करती महिलाएं, खेल के क्षेत्र में उभरते खिलाड़ी, जानकारी आपको मिलेगी अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेल। प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की।

0: विज्ञान जगत आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
0: और आइए अब सुनते हैं विज्ञान जगत, वाचन एवं सहयोग बसंत कुमार का, प्रस्तुति प्रभु शरण की।

नमस्कार, विज्ञान जगत कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से उपस्थित है हम। मैं हूं बसंत और आप सभी का स्वागत है विज्ञान जगत कार्यक्रम में। तो हर बार की तरह आज भी हम ढेर सारी नई रोचक जानकारी और तथ्यों को लेकर फिर से उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए क्या क्या नई जानकारियां लेकर आए हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे कि एसी का उपयोग हमें सावधानी से क्यों करना चाहिए। इसके बाद बारी होगी भेंटवार्ता की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कॉन्टैक्ट लेंस के बढ़ते क्रेज के बारे में। इसके बाद बारी होगी वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं वैज्ञानिक

0: इयान डोनाल्ड के बारे में। इसके बाद बारी होती है खोज और आविष्कार की, जिसमें आज हम आपसे बात करेंगे ओएमआर क्या है इसके बारे में और ये कैसे काम करता है इसके बारे में। तो ये हमने आपको बता दिया कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या नई जानकारी आपको देने वाले हैं इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि एसी का उपयोग हमें सावधानी से क्यों करना चाहिए इसके बारे में। गर्मी का मौसम आते ही हम सबसे पहली जिस चीज की तलाश करते हैं वो है ठंडक और छांव की, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर हमें गर्मी से राहत मिले, हमें आराम मिले और गर्मी से जो परेशानी होती है उसे दूर कर सके। लेकिन गर्मी से राहत पाने के लिए एयर कंडीशनर यानी एसी आज हमारी जरूरत बन चुकी है। बढ़ते तापमान के कारण लोग घरों, दफ्तरों, अस्पतालों और वाहनों में एसी का उपयोग कर रहे हैं। एसी हमें ठंडी और आरामदायक हवा तो देती ही है, लेकिन इसका उपयोग यदि सावधानी पूर्वक नहीं किया गया तो स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए इसके साथ में बिजली की जो खपत है इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे बजट पर भी डाल सकता है। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो कई लोग एसी का तापमान बहुत कम कर देते हैं। अत्यधिक ठंडे वातावरण में लंबे समय तक रहने से सर्दी, जुकाम, गले में खराश, सिर दर्द, त्वचा का सूखापन और सांस संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार एसी का तापमान 24 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रखना सबसे अच्छा माना जाता है। इससे शरीर को आराम भी मिलता है और बिजली की बचत भी होती है। इसके अलावा एसी वाले जो कमरे हैं लंबे समय तक उसमें रहने से शरीर को प्राकृतिक वातावरण की आदत जो है वो कम हो जाती है। जब व्यक्ति अचानक बहुत ठंडे कमरे से बाहर तेज धूप में निकलता है तो शरीर पर उसका प्रतिकूल यानी कि नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए समय समय पर खुली हवा में भी हमें समय बिताना बहुत आवश्यक है, न कि एसी वाले कमरे में 24 घंटा यानी कि बंद होकर रहने की कोई जरूरत नहीं है। एसी की नियमित सफाई और सर्विसिंग ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए समय समय पर साफ करवाना और एसी की जांच करवाते रहना बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं कि बिजली की खपत की, यानी कि एसी घर में जब लग जाती है तो बिजली का जो खर्च है, जो बिल है, वो भी काफी बढ़ने लगता है। सबसे अधिक बिजली खर्च करने वाले उपकरणों में अगर माना जाए तो एसी ही होता है गर्मी के समय में। यदि इसका उपयोग आवश्यकता से अधिक किया जाए तो बिजली का जो बिल है वो भी काफी बढ़ सकता है। इसके अलावा एसी का पर्यावरण पर काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। अधिक बिजली की खपत का मतलब है अधिक ऊर्जा का उत्पादन, जिससे कार्बन उत्सर्जन बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ पुराने एसी में उपयोग होने वाली जो गैस है वो पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक हो सकती है। इसलिए ऊर्जा दक्षता वाले यानी अधिक स्टार रेटिंग वाले एसी का उपयोग करना अच्छा माना जाता है। श्रोताओं, एसी हमारे जीवन को आरामदायक बनाता है, लेकिन इसका विवेकपूर्ण और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। सही तापमान, नियमित सफाई, सीमित उपयोग और ऊर्जा संरक्षण के उपाय अपनाकर हम अपने स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक संसाधनों की रक्षा कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया कि एसी का उपयोग हमें सावधानी से क्यों करना चाहिए। और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं भेंटवार्ता में, आज हम कॉन्टेक्ट लेंस का बढ़ता क्रेज क्यों है इतना ज्यादा इसके बारे में बात करेंगे। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं डॉक्टर अमित कुमार जायसवाल, जो कि एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस शो में बुलाने के लिए।
0: हम आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आज के समय में आंखों में लोग थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं और आंखों में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, थोड़ा सा उसके बारे में पहले बताएं।
1: सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है सीजनल एलर्जी की। बहुत लोगों को आंख में लालीपन ना जाना, खुजली होना, और दूसरा अभी क्या है, लोगों को कोरोना के बाद जो बच्चे बहुत सारे मोबाइल करते थे तो उन लोगों का बहुत सारे लोगों को चश्मा लग गया है। तो ये दो मेन समस्याएं अभी हैं,
0: यानी कि ये दो प्रमुख समस्याएं हैं जो आप अभी ज्यादा देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी आंखों में जो समस्याएं होती है वो कौन कौन सी चीजें हैं जो ज्यादातर परेशान करती हैं आंखों को, जिससे बचना जरूरी है?
1: अभी के दौर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो लोगों को आ रही है वो मोबाइल या कंप्यूटर यूज़ करने के बाद लोगों को ड्राई आई, जो हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं, उसकी समस्या आ रही है। और साथ ही साथ बच्चों में अभी इतना ज़्यादा मोबाइल और लैपटॉप यूज़ हो रहा है।

0: है कि लोगों में, बहुत सारे लोगों को मैंने अभी देखा है कि पिछले एक साल में बहुत से नए बच्चों को चश्मा का पावर लग गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नियर वर्क करने के कारण हो रहा है, पहला चीज़। दूसरा, जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम मैंने बताया, इसमें क्या होता है, जैसे आप मोबाइल देख रहे हैं या कंप्यूटर देख रहे हैं तो आपकी पलक झपकती नहीं है, आप लगातार कोई चीज़ को देखते रहते हैं, तो इससे क्या होता है, आपको आँखों में जो टियर फिल्म होता है वो इवेपोरेट होकर आँख को ड्राई कर देता है। तो इस कारण लोगों को फिलहाल तो ये ज़्यादा समस्या है, और जो लोगों का स्क्रीन टाइम है मोबाइल और लैपटॉप में जो बहुत देर से लोग बैठे रहते हैं, तो उसके कारण बहुत सारे लोगों का आँखों में ड्राइनेस का प्रॉब्लम और आँखों में पावर का आ जाना वो बहुत कॉमन हो गया है अभी के समय में।
1: तो ये प्रमुख वजह है जिसके कारण अभी ज़्यादातर मरीज इसके दिखे जा रहे हैं। तो अब जैसा कि हमने बात की कि कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में हम बात करेंगे, तो सबसे पहले तो एक आम सा सवाल है कि कॉन्टैक्ट लेंस क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: कॉन्टैक्ट लेंस एक बहुत ही पतला झिल्ली प्लास्टिक का बना हुआ रहता है, जो 1 मिलीमीटर से भी कम का थिकनेस रहता है। इसे हम अपने पुतलियों के ऊपर आसानी से लगा सकते हैं, उसमें पावर लगा रहता है जिससे चश्मा पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है।
1: इसकी शुरुआत तो बहुत पहले से ही हो चुकी होगी, लेकिन आज के समय में इसका जो क्रेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये बढ़ता हुआ क्रेज हमारी आँखों के लिए सही है या फिर चश्मा ज़्यादा बेहतर है आँखों के लिए?
0: देखिए, अभी डिपेंड करता है कि कॉन्टैक्ट लेंस कौन पहनना चाहता है, और कभी कभी कॉन्टैक्ट लेंस के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस पहनने का सबसे मेन रीज़न होता है कॉस्मेटिक। लोग चश्मा नहीं पहनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग वो चाहते हैं कि मैं चश्मा ना पहनूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का होता है कि थोड़ा ज़्यादा पावर होता है तो चश्मा थोड़ा मोटा दिखता है, तो लोगों को देखने में थोड़ा भद्दा लगता है। और जनरली जो फीमेल होते हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो चश्मा नहीं पहनना चाहती हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे शादी वगैरह होना है तो उसमें भी लोग वो चाहते हैं कि लोग ना जाने कि मैं चश्मा ज़्यादा पावर है, तो वो लोग भी कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करना चाहते हैं। ज़्यादातर लड़कियाँ यूज़ करती हैं क्योंकि कॉस्मेटिकली वो नहीं चाहती हैं कि उन्हें चश्मा पहने वो।
1: मतलब कोई ये ना जाने कि मुझे आंखों की समस्या है, और इसीलिए ज़्यादातर आज इसका क्रेज बढ़ गया है।
0: सही
1: है। क्या इसके बहुत सारे प्रकार भी हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे तरह के लेंसेज होंगे जिसका इस्तेमाल लोग करते हैं?
0: हाँ, डेफिनेटली होते हैं। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि मैं आईज का कलर ब्लू कर लूँ, मेरा आईज ब्राउन है तो मैं थोड़ा ब्लू लगाऊँ तो मेरा थोड़ा आईज का कलर अच्छा दिखाई देगा। और कुछ बीमारियाँ भी होती हैं, जैसे केराटोकोनस है जिसमें आँख की पुतली थोड़ी पतली हो जाती है, तो उसमें एक अलग तरह का लेंस यूज होता है। तो होते हैं मेडिकली बहुत तरह के कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं, तो इसलिए हमेशा कभी भी आपको कॉन्टैक्ट लेंस लेना है तो डॉक्टर के सलाह पर ही पहने।
1: यानी कि बिना डॉक्टरी सलाह के लेंस यूज करना खतरनाक हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग भी होंगे जिनको किसी तरह की समस्या नहीं है, फिर भी वो कॉन्टैक्ट लेंस
0: नहीं, वो नहीं पहनते हैं। जनरली वो फिल्मों में यूज होता है कि आईज का कलर चेंज करना है तो होता है, ऐसे जनरली लोग नहीं यूज करते।
1: अच्छा, इसे लगाने का जो तरीका है और इसके रखरखाव का तरीका, आंखों में कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजें कैसे समझ सकते हैं इसके बारे में?
0: ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आप इसको ठीक से नहीं समझेंगे कि कैसे यूज करना है तो आपको आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। सबसे पहले हाथ को धो लिया जाता है, उसके बाद हैंड क्लीन करके अच्छे से कॉन्टैक्ट लेंस, एक पहनने का तरीका होता है कि पहले अपने दो फिंगर्स के बीच ले, अपने पलक को नीचे खींच के ऊपर देख के आँख के ऊपर लेंस लगाना होता है। अगर इस तरह से आप नहीं पहनेंगे, अगर गंदे हाथ से पहनेंगे, गंदे हाथ से खोल लेंगे उसको निकाल लेंगे, तो आँखों में गंदे हाथ से इन्फेक्शन चला जाता है। और बहुत ज़्यादा समय भी, अगर कुछ लेंसेस होते हैं जिसको आपको ज़्यादा समय तक नहीं यूज़ करते हैं, उसका एक एक्सपायरी होता है, जैसे एक मंथ में उसको डिस्कार्ड कर देना है या एक हफ्ता या एक महीने, इस तरह उन लोगों को उस लेंस को डिस्कार्ड कर दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि हम लेंस लगा रहे हैं तो इसको जब तक चल रहा है चलाएं, उससे भी नुकसान आँखों को हो सकता है।
1: यानी कि चश्मा हम एक बार खरीदते हैं तो चश्मा काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और लेकिन लेंसेस में ये बात नहीं है, उसे समय समय पर बदलते रहना जरूरी है।
0: जरूरी है, उसे समय समय पर बदलना जरूरी है। उसको लेंस को आँख से निकाल के भी एक सॉल्यूशन में रखा जाता है, ये नहीं कि कहीं भी रख दिए, कोई भी पानी में रख दिए तो उससे भी आँखों में और ज्यादा इन्फेक्शन का खतरा रहता है।
1: यानी उसके लिए अलग से एक लोशन भी आता है।
0: हाँ, एक सॉल्यूशन रहता है जिसमें आप उस लेंस को रखना होता है।
1: क्या जो बच्चे हैं उनकी आंखों में भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर सिर्फ बड़ों के लिए है ये?
0: नहीं, ये सिर्फ जो मैच्योर लोग हैं, जो समझ सकते हैं कैसे यूज करना है, उन्हें ही पहना जाना अच्छा रहता है।
1: अभी के समय में देखा जाए तो लोग चश्मा छोड़कर अब

0: भी उसको रख सकते हो, उसके रख रखाव में उतना स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैक्सिमम लोग चश्मा ही यूज़ करते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस में थोड़ी दिक्कत तो बहुत लोगों को आती ही है, तो आज के समय में अगर देखा जाए तो इतना भी बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेंस का यूजेस नहीं है, मैक्सिमम लोग चश्मा ही पहनते हैं।
1: और जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर रहे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो किस तरह से इनका सही इस्तेमाल करें कि उनकी आँखों में किसी तरह की समस्या नहीं उत्पन्न हो इसके लिए?
0: पहले तो जैसे मैंने बताया कि हैंड क्लीन करके प्रॉपर वे में उसको पहनना है, और उसमें लेंस में लिखा हुआ रहता है कि आपको कितने दिन तक यूज़ करना है, तो ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और तीसरा, एक समय समय पर आँखों का चेक कराते रहें साल में एक बार।
1: एक और सबसे आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जैसे हमने अभी बात की कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में, कितने तरह के होते हैं और इसके बहुत सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए हमारी आँखें हैं, तो हम आज के समय में अपनी आँखों का किस तरह से देखभाल करें, कैसे उसको अच्छा रख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: सबसे पहले तो आजकल जो स्क्रीन टाइम, मोबाइल टाइम है, उसको कम करना होगा। जितनी ज़रूरत है उतना ही करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। ड्राई आई का प्रॉब्लम है, लोगों को पावर बढ़ते जा रहा है, और बच्चे उसका दूसरा साइड इफ़ेक्ट है कि एडिक्ट होते जा रहे हैं कि मुझे मोबाइल चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों के हाथ से तो मोबाइल लेना है, बच्चों को मोबाइल नहीं देना है। दूसरा, आप अगर बहुत ज़्यादा मोबाइल या स्क्रीन टाइम है ही, अगर आपका वो जॉब ही है कि आपको कंप्यूटर पे काम करना है, तो जो ब्लू फिल्टर एंटी रिफ्लेक्टिव ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं उसको यूज़ करें, वो आँखों के लिए अच्छे होते हैं। दूसरा, बच्चों को हरी सब्जियाँ खिलाएं, गाजर खिलाएं, पपीता खिलाएं, तो वो सब अच्छा रहता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनका एक बार ज़रूर आँखों की जांच कराएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है कि बच्चों को आँख का पावर है और वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है।
1: जी, तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, उसके लिए आपको धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: अभी हमारे साथ में थे डॉक्टर अमित कुमार जायसवाल, नेत्र रोग विशेषज्ञ। इस भेंटवार्ता के बाद क्यों ना आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुना दिया जाए, तो चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत। इस गीत के बाद हम लौट कर आएंगे तो अपनी बातों को आगे जारी रखेंगे।

तो इस बहुत ही प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विज्ञान जगत कार्यक्रम में। और अब बारी है वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की। आज हम बात करेंगे चिकित्सा विज्ञान के एक ऐसे महान वैज्ञानिक और चिकित्सक की, जिनके शोध और आविष्कार ने आधुनिक चिकित्सा को नई दिशा देने का काम किया। इयान डोनाल्ड को चिकित्सा जगत में अल्ट्रासाउंड तकनीक के जनक के रूप में जाना जाता है। इनकी खोज ने गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की देखभाल को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाने का काम किया। इयान डोनाल्ड का जन्म 27 दिसंबर सन 1910 को स्कॉटलैंड में हुआ था। इनका पूरा नाम इयान डगलस विल्सन डोनाल्ड था। बचपन से ही ये अत्यंत जिज्ञासु और मेधावी छात्र के रूप में काफी आगे रहते थे। इन्हें विज्ञान, तकनीक और नई चीजों को समझने में विशेष रुचि रहती थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्कॉटलैंड में हुई और बाद में इन्होंने प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज से चिकित्सा की पढ़ाई पूरी की। अध्ययन के दौरान ही इन्होंने चिकित्सा अनुसंधान के प्रति गहरी रुचि विकसित कर ली और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने ब्रिटिश वायुसेना में चिकित्सा अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं भी दी। युद्ध काल में इन्हें विभिन्न प्रकार की तकनीकों और उपकरणों के साथ काम करने का अवसर मिला। इसी अनुभव ने इनके मन में चिकित्सा क्षेत्र में नई तकनीकों के उपयोग का विचार पैदा कर दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद इन्होंने स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्य करना शुरू किया और महिलाओं तथा नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहन अध्ययन करना शुरू कर दिया। 1950 के दशक में चिकित्सा विज्ञान में गर्भस्थ शिशु की स्थिति का पता लगाने के लिए सुरक्षित और प्रभावी साधनों की काफी कमी थी। डॉक्टरों को केवल अनुमान और सीमित जांचों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसी समस्या को देखते हुए इयान डोनाल्ड ने ध्वनि तरंगों के उपयोग पर शोध करना शुरू किया। इन्होंने उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली अल्ट्रासोनिक तकनीक से प्रेरणा लेकर इसे चिकित्सा के क्षेत्र में लागू करने का प्रयास किया। इनकी मेहनत रंग लाई और इन्होंने अल्ट्रासाउंड तकनीक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तकनीक के माध्यम से पहली बार गर्भ में पल रहे शिशु की तस्वीरें प्राप्त करना संभव हो गया। डॉक्टर अब बिना किसी दर्द, ऑपरेशन या हानिकारक विकिरण के गर्भस्थ शिशु की स्थिति, विकास और स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त कर सकते थे। ये चिकित्सा विज्ञान की एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में मानी गई। इयान डोनाल्ड ने केवल गर्भावस्था संबंधी जांच तक ही अपने शोध को सीमित नहीं रखा। इन्होंने ये भी कर दिखाया कि अल्ट्रासाउंड तकनीक शरीर के भीतर मौजूद ट्यूमर, सिस्ट और अन्य असामान्य संरचनाओं की पहचान में भी उपयोगी साबित हो सकती है। आज हृदय, गुर्दे और शरीर के कई अन्य अंगों की जांच में अल्ट्रासाउंड व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ये सब इनके दूरदर्शी अनुसंधान का परिणाम ही माना जाता है। इनकी खोज ने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में काफी योगदान दिया है। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से गर्भावस्था के दौरान होने वाली कई जटिलताओं का समय रहते पता लगाया जा सके, इसके लिए उचित उपचार संभव हो, इसमें इनका काफी योगदान है। आज दुनिया के लगभग हर अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन एक आवश्यक चिकित्सा उपकरण बन चुकी है। अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए इयान डोनाल्ड को अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए। चिकित्सा जगत में इन्हें अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय अनुसंधान, शिक्षण और रोगियों की सेवा को समर्पित कर दिया। 9 जून सन 1987 को इनका निधन हो गया, लेकिन इनकी खोज और योगदान आज भी मानव की सेवा कर रहे हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इनका नाम सदैव स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है। जब भी किसी गर्भवती महिला की अल्ट्रासाउंड जांच होती है, तब कहीं ना कहीं इयान डोनाल्ड के महान कार्यों की झलक इसमें दिखाई पड़ती है। इयान डोनाल्ड का जीवन हमें ये सिखाता है कि विज्ञान और मानव सेवा का मेल समाज के लिए चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। अब बारी है खोज और आविष्कार की, और आज खोज और आविष्कार में हम जानकारी देने वाले हैं आपको OMR क्या है और कैसे काम करता है इसके बारे में। तो हम आपको बता दें कि OMR वर्तमान समय में प्रतियोगी परीक्षाओं, सर्वेक्षणों और विभिन्न प्रकार के डेटा संग्रहण में कार्य के लिए OMR का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल मार्क रीडर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से विशेष रूप से तैयार किए गए फॉर्म या उत्तर पत्र पर लगाए गए निशानों को कंप्यूटर द्वारा पढ़ा और विश्लेषित किया जाता है। जब किसी परीक्षा में अभ्यर्थी उत्तरों के सामने दिए गए गोले को काले या नीले पेन से भरता है, तो OMR उस मशीन में भरे हुए गोलों को स्कैन करके उनकी जानकारी कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करती है। आज देश की अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाएं
विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं, भर्ती परीक्षाएं और विद्यालयों की कई परीक्षाएं भी OMR सीट के माध्यम से ली जाती है। इससे मूल्यांकन प्रक्रिया में तेजी आती है, सटीकता और पारदर्शिता भी बनी रहती है। इसके अलावा OMR तकनीक का कार्य करने का तरीका काफी सरल माना जाता है। सबसे पहले अभ्यर्थी उत्तर पत्र में सही विकल्प के सामने बने गोले को भरता है। इसके बाद OMR स्कैनर उस सीट को स्कैन करती है और स्कैनर प्रकाश किरणों की सहायता से ये स्पष्ट पहचानता है कि कौन सा गोला भरा गया है और कौन सा खाली है। भरे हुए स्थान प्रकाश को कम परावर्तित करते हैं जबकि खाली स्थान अधिक प्रकाश परावर्तित करते हैं। इसी अंतर के आधार पर कंप्यूटर सही जानकारी प्राप्त कर लेता है। OMR के कई महत्वपूर्ण लाभ भी है। सबसे बड़ा लाभ ये है कि इससे हजारों उत्तर पत्रों का मूल्यांकन बहुत कम समय में किया जा सकता है। मानवीय त्रुटियों की संभावना भी इसमें कम रहती है और परिणाम अधिक सटीक हो जाते हैं। इसके अलावा बड़ी मात्रा में डेटा को जल्दी और आसानी से संशोधित भी किया जा सकता है। यही कारण है कि शैक्षिक संस्थानों, सरकारी विभागों और निजी संगठनों में इसका उपयोग लगातार बढ़ रहा है। हालांकि OMR का उपयोग करते समय कुछ सावधानियां भी आवश्यक मानी जाती हैं। उत्तर पत्र में गोले को पूरी तरह भरना चाहिए। एक से अधिक विकल्प भरने पर उत्तर पत्र गलत माना जा सकता है। उत्तर पत्र को मोड़ना, फाड़ना या उस पर अनावश्यक निशान बनाना भी स्कैनिंग प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसलिए परीक्षा के दौरान दिए गए निर्देशों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। OMR तकनीक का उपयोग केवल परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं है। इसका उपयोग सर्वेक्षण फॉर्म, जनमत संग्रह, उपस्थिति रजिस्टर, ग्राहक प्रतिक्रिया फॉर्म और विभिन्न प्रकार के डेटा संग्रहण कार्यों में भी किया जाता है। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। और आज के समय में हम अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो आज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं, लेकिन OMR का इस्तेमाल आज भी अलग अलग परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में की जाती है। OMR आधुनिक तकनीक का एक महत्वपूर्ण और उपयोगी उदाहरण है जिसने परीक्षा और डेटा प्रबंधन की प्रक्रिया को अधिक सरल, तेज और विश्वसनीय बनाने का काम किया है। डिजिटल युग में इसकी उपयोगिता लगातार बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में भी ये तकनीक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और हम में से बहुत सारे लोगों ने प्रतियोगी परीक्षाएं दी होगी। कंप्यूटर के एग्जाम यानी कि CBT बेस्ड एग्जाम होने के पहले OMR पर ही परीक्षा देने के लिए किया करते थे और आज भी CBT एग्जाम्स होने के बाद भी आज OMR सीट का इस्तेमाल किया जाता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो अगर आप कभी परीक्षा देने जाएं तो OMR के बारे में पूरी जानकारी रखें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आज हमने ढेर सारी बातें आपसे कर ली, ढेर सारी जानकारियां आपको दे दी और अब हमारी स्टूडियो की जो घड़ी है वो आपसे विदा लेने का इशारा कर रही है। लेकिन जाने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जीवन में कुछ भी बड़ा करना हो, कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना हो तो सपने हमेशा उससे बड़े देखें ताकि आप मेहनत पूरी तरीके से करें और आप जिस जगह पहुंचना चाहते हैं वहां समय से पहुंच पाएं। इसलिए मेहनत, लगन और ईमानदारी, ये तीनों चीज़ आपको हमेशा खुद के अंदर बनाए रखनी है और जीवन में आगे

बढ़ते चले जाना है, तो एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इन्हीं सारी बातों के साथ अब आपसे लेते हैं विदा, और अगली कड़ी में हम फिर से मिलेंगे नई रोचक जानकारी और तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बसंत को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान जगत। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय था एसी का उपयोग सावधानी से करें। इसी कार्यक्रम में भेंट वार्ता का विषय था कॉन्टैक्ट लेंस का बढ़ता क्रेज। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर अमित कुमार जायसवाल, भेंटकर्ता थे वसंत कुमार। वाचन एवं सहयोग वसंत कुमार का था। कार्यक्रम की प्रस्तुति प्रभु शरण की। और इसी के साथ आज का विज्ञान जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। सुबह के 10:30 हो चुके हैं और अब समय है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम जोहार रांची का। मैं हूं विश्वजीत और कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और जोहार करता हूं। अगले एक घंटे तक हम करेंगे ढेर सारी बातें, साझा करेंगे रोचक जानकारियां, सुनेंगे आज के दिन से जुड़ी खास बातें और साथ ही आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत होंगे एक से बढ़कर एक मधुर और शानदार गीत। तो आइए इस सुहानी सुबह की खूबसूरत शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

जोहार रांची कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम प्रतिदिन एक प्रेरणादायक सुविचार आपके साथ साझा करते हैं। आज का सुविचार है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जो लोग निरंतर मेहनत, धैर्य और संघर्ष करते हैं, सफलता एक दिन जरूर उनके कदम चूमती है। याद रखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कठिन

कठिनाइयों से घबराते नहीं, बल्कि हर चुनौती का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। मेहनत आपका कर्म है, संघर्ष आपकी पहचान है और सफलता उसका सबसे सुंदर परिणाम है।

0: सुबह और शाम की हवाओं में ठंडक का एहसास है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ धूप कभी भी अपनी तेवर दिखा रही है। ऐसे में आप सभी से अनुरोध है कि दोपहर के समय अनावश्यक रूप से तेज धूप में निकलने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। मौसम का आनंद जरूर लें, लेकिन सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। अब जब बात सूरज और उसकी रोशनी की हो ही रही है, तो क्यों ना सुन लिया जाए एक ऐसा गीत जो सूरज की गर्माहट और जीवन की खूबसूरती को बयां करता है। प्रस्तुत है फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से ये खूबसूरत गीत।
1: सूरज

जोहार रांची कार्यक्रम में अब वक्त है इतिहास के पन्नों को पलटने का। आइए जानते हैं 11 जून के दिन इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। 11 जून सन 1509 को इंग्लैंड के राजा हेनरी एस्टम का राज्याभिषेक हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1866 में इलाहाबाद राज उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इससे पहले आगरा उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। वहीं आज ही के दिन वर्ष 1970 को महान समुद्री खोजकर्ता कैप्टन जेम्स कुक का जहाज ऑस्ट्रेलिया के पास ग्रेट बैरियर रीफ में टकरा गया था। लौह महिला के नाम से मशहूर मार्गरेट थैचर ने लगातार तीसरी बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का चुनाव जीतकर इतिहास रचा था। आज ही के दिन वर्ष 1987 को 11 जून 1897 को भारत के इतिहास में सबसे भीषण भूकंप में से एक असम भूकंप आया था, जिसमें पूर्वोत्तर भारत में भारी तबाही मचाई गई थी।

वर्ष 2009 में आज ही के दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने स्वाइन फ्लू H1N1 को एक वैश्विक महामारी घोषित किया था। वहीं आज ही के दिन वर्ष 1964 को विश्व प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और दक्षिण अफ्रीका के नेता नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आज ही के दिन खेल जगत की बात करें, वर्ष 1975 को इंग्लैंड में पहले पुरुष क्रिकेट विश्व कप का शुभारंभ हुआ था, जिसने क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा गया। सचमुच इतिहास हमें अतीत से सीखने और भविष्य को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है।

ज्वाराची में अब बात उनकी जिनका निधन आज ही के दिन हुआ। 11 जून के दिन देश और दुनिया के इतिहास में कई महान स्वतंत्रता सेनानियों, राजनेताओं और वैज्ञानिकों के जन्म और निधन का साक्षी रहा है। 11 जून को अलविदा कहने वाले प्रसिद्ध व्यक्तित्व में से पहला नाम है घनश्याम दास बिड़ला। भारत के अग्रणी उद्योगपति, स्वतंत्रता सेनानी और बिड़ला साम्राज्य के संस्थापक वे महान महात्मा गांधी के बेहद करीबी सहयोगी और मित्र थे। उन्होंने देश में शिक्षा और उद्योग के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया था, जिनका निधन आज ही के दिन वर्ष 1983 को हुआ। वासुदेव बावन शास्त्री खरे मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध इतिहासकार, नाटककार, कवि और जीवनी लेखक। उन्होंने महाराष्ट्र और मराठा साम्राज्य के इतिहास को सहेजने में अहम भूमिका निभाई थी, जिनका निधन आज ही के दिन वर्ष 1924 को हुआ था। लेव बाइगोत्स्की रूस के महान मनोवैज्ञानिक, बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास पर दिए गए उनके सिद्धांत आज भी पूरे दुनिया के शिक्षा जगत में पढ़ाए जाते हैं, जिनका निधन आज ही के दिन वर्ष 1934 को हुआ। रॉबर्ट ई हार्वर्ड अमेरिका लेखक और पल्स फिक्शन के जन्मदाता, वे दुनिया के बेहद लोकप्रिय काल्पनिक किरदार कोनन द बारबेरियन के रचयिता थे, जिनका निधन आज ही के दिन वर्ष

1936 को हुआ। नमन उन महान आत्माओं को जिन्होंने आज ही के दिन इस संसार से विदा ली, लेकिन अपने कार्यों और योगदान से इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। आइए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और अब बात उन्हें जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ, उन्हें नमन करते हैं जिनका आज ही के दिन इस धरती में जन्म हुआ, जिन्होंने अपनी प्रतिभा, मेहनत और समर्पण से दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आइए जानते हैं कि 11 जून को जन्म में कुछ महान और प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में। लालू प्रसाद यादव वर्ष 1948 को आज ही के दिन जन्मे भारतीय राजनीतिज्ञ के दिग्गज नेता, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रेल मंत्री। वे अपने अनूठे राजनीतिक अंदाज और भाषण शैली के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। जाक क्रुस्टो, जिनका जन्म आज ही के दिन 1910 को हुआ, फ्रांस के प्रसिद्ध समुद्र विज्ञानी, पर्यावरणविद और अन्वेषक। उन्होंने समुद्र के नीचे सांस लेने वाले आधुनिक उपकरण स्कूबा डाइविंग गियर

भारत की चुनावी प्रक्रियाओं में कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए। चार्ल्स फैवी फ्रांस के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी, जिन्होंने अपने साथी हेनरी बुडसन के साथ मिलकर वायुमंडल की ऊपरी सतह में ओजोन परत की खोज की थी, जिनका जन्म भी आज ही के दिन 1867 में हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी और कवि, वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे और उन्होंने ऐतिहासिक काकोरी कांड की मुख्य योजना बनाई थी। युवाओं में देशभक्ति की अलग जगाने वाले गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इन्हीं की पहचान से जुड़ा है।

जोहार रांची कार्यक्रम में श्रोताओं, अब एक ऐसी खबर जो पूरे झारखंड के लिए गर्व और सम्मान का विषय है। हमारी समृद्ध कला संस्कृति और लोक परंपराओं को राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से पहचान मिली है। झारखंड के 3 प्रतिष्ठित लोक कलाकार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से संयुक्त रूप से सम्मानित किए जाएंगे। ये देश का सर्वोच्च प्रदर्शन कला सम्मान है जिसे राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा। तीनों कलाकारों में बुटन देवी, सोमवारी देवी और सरायकेला के 6 मुकोटा शिल्पकार सुशांत कुमार महापात्र शामिल हैं। बुटन देवी और सोमवारी देवी ने अपना पूरा जीवन झारखंड की पारंपरिक नचनी नृत्य परंपरा के संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित कर दिया। सरायकेला के प्रख्यात 6 मुखौटा शिल्पकार सुशांत कुमार महापात्रा ने सरायकेला 6 की पारंपरिक मुखौटा कला के संरक्षण के अहम योगदान दिया। यह 6 दशक से अधिक समय तक कला की सेवा कर रहे हैं। उनकी शिल्प साधना ने सरायकेला 6 को एक नई पहचान दिलाई।

सिर के एक हिस्से में तेज दर्द महसूस हो, तेज रोशनी या शोर से परेशानी हो तो ये माइग्रेन का संकेत हो सकता है। माइग्रेन की समस्या तनाव, अनियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद ना लेने, लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर का उपयोग करने तथा शरीर में पानी की कमी के कारण बढ़ सकती है। इससे बचाव के लिए संतुलित आहार लें, भरपूर पानी पिएं, पर्याप्त नींद लें और तनाव से दूर रहने का प्रयास करें। तेज धूप में बाहर निकलते समय सावधानी बरतें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। यदि सिर दर्द लगातार बनी रहे या अधिक परेशानी हो तो चिकित्सा की सलाह अवश्य लें। स्वस्थ शरीर में ही जीवन का वास होता है और ये सबसे बड़ी पूंजी है।

श्रोताओं, अगर आपको घूमने फिरने के साथ साथ धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को देखने का शौक है तो रांची के दुर्गा क्षेत्र में स्थित जगन्नाथ टेम्पल रांची आपके लिए एक बेहतरीन स्थल है। लगभग 17वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित है। इसकी वास्तुकला जगन्नाथ टेम्पल पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर से प्रेरित मानी जाती है। ऊंची पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि यहां से रांची शहर का सुंदर दृश्य भी देखने को मिलता है। हर वर्ष आषाढ़ के माह में यहां भव्य जगन्नाथ रथ मेला आयोजित होता है। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। मेले में झूले, स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र होता है। यह मेला झारखंड की संस्कृति, आस्था और लोक जीवन की खूबसूरत झलक प्रस्तुत करता है। तो अगर आप आने वाले दिनों में परिवार या मित्रों के साथ कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं तो दुर्गा का जगन्नाथ मंदिर और वहां लगने वाला रथ मेला आपकी सूची में जरूर होना चाहिए।

श्रोताओं, अब जोहार रांची कार्यक्रम में बात कर लेते हैं खेल की। झारखंड क्रिकेट के लिए एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। झारखंड के रांची के जेएससी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में झारखंड टी20 लीग का शानदार आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह की सबसे खास बात रही झारखंड के गौरव और भारतीय क्रिकेट के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की मौजूदगी, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से खिलाड़ियों और दर्शकों का उत्साह कई गुना बढ़ा दिया। इस लीग में 6 फ्रेंचाइजी टीम हिस्सा ले रही है और टूर्नामेंट का उद्देश्य झारखंड की युवा क्रिकेटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच प्रदान करना। आने वाले दिनों में यही खिलाड़ी राज्य और देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना साकार लेकर मैदान पर उतरने वाले हैं। इसके अलावा आज से फुटबॉल का महाकुंभ, यानी कि फुटबॉल का सबसे बड़ा महाकुंभ फीफा विश्व कप 2026 का आगाज गुरुवार से हो रहा है। अगले 39 दिनों तक दुनिया की नजरें अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के 16 स्टेडियम में टिकी रहेगी। 48 टीमों की भागीदारी के साथ यह विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ा संस्करण होगा। करोड़ों प्रशंसकों के लिए यह सिर्फ खेल नहीं बल्कि जुनून, जज्बा और राष्ट्रीय गौरव की लड़ाई है। इन दिग्गजों की जो अंतिम टूर्नामेंट भी होगी, क्योंकि अर्जेंटीना के मेसी जो कि 48 वर्षीय हैं और पुर्तगाल के रोनाल्डो जो कि 41 वर्ष के हैं, जिनके लिए ये आखिरी विश्व कप होगा, तो इन पे निगाहें होंगी और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा आयोजन है फुटबॉल के लिए।

श्रोताओं, इसी प्यारे गीत के साथ जोहार रांची कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज हमने ढेर सारी बातें की, कई जानकारियां साझा की और आपके लिए पसंदीदा गीत भी सुनाए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी के हर पल का आनंद लेते रहिए। इसी के साथ जोहार रांची कार्यक्रम से दीजिए मुझे विश्वजीत को इजाजत। नमस्कार, जोहार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 11:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है आपका प्रिय कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम के पहले गीत की फरमाइश हमें रांची के हिनू से ममता पासवान, जूही पासवान, राजू पासवान, अमर पासवान, शेखर पासवान तथा उनके साथियों ने भेजी है। इसी गीत को रांची के बरियातू से पूनम कुमारी, कविता कुमारी, मोहित कुमार, अमर कुमार और उनके मित्र ने भी सुनना चाहा है। तो आइए इन सभी श्रोताओं की पसंद को करते हैं शामिल और सुनते हैं फिल्म सड़क का ये गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में। इस गाने को लिखा है समीर, सुरेंद्र साथी और रानी मलिक ने।

अब सुनिए फिल्म प्यार किया तो डरना क्या का सुपरहिट गीत। इस गीत को अपनी दमदार आवाज दी है कमाल खान ने, गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा होगा।

अब सुनिए फिल्म फना का चुलबुला और बेहद लोकप्रिय गीत चंदा चमके। इस गीत को अपनी आवाज दी है बाबुल सुप्रियो, महालक्ष्मी अय्यर, मास्टर अक्षय भागवत और आमिर खान ने। गीत के बोल लिखे हैं प्रसून जोशी और संगीत दिया है।

0: पक्के पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म एनिमल का बेहद लोकप्रिय गीत पहले भी मैं। इस गीत को अपनी सुरीली आवाज दी है विशाल मिश्रा ने। गीत के बोल लिखे हैं राजशेखर ने और संगीत भी विशाल मिश्रा का है।

इस गाने के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में सुनिए समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल, सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि के रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा में भारत में निर्मित पहले एयरबेस C-295 के प्रथम परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.4% की बढ़त दर्ज हुई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 74,301 और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 23,297 पर था। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi. The meeting will deliberate on measures to promote entrepreneurship, enhance skilling and create sustainable employment opportunities across the country. Discussions will also focus on collectively charting an implementation roadmap that leverages key enablers, including governance, digital public infrastructure and partnerships, while ensuring accountability and measurable impact. In a social media post, Mr. Modi said, guided by the spirit of cooperative federalism, center and states are working together to accelerate India's development journey. He added that the collective efforts of the center and states will play a pivotal role in realizing the shared vision of Viksit Bharat. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, which emphasizes the well-being and development of every Indian regardless of age, region, gender or socio-economic background. The government has waived excise duty on certain variants of ethanol-blended petrol. In a notification, the Finance Ministry announced that petrol blended with 22, 25, 27 and 30% ethanol has been exempted from central excise duty. The Ministry said all four fuel grades will now attract a nil rate of excise duty. The move is aimed at strengthening India's ethanol blending program, which seeks to reduce dependence on imported crude oil, cut carbon emissions and enhance demand for domestically produced ethanol. Union Minister for Railways and Information and Broadcasting Ashwini Vaishnav virtually inaugurated a 20-kilowatt FM transmitter at Ramgarh in Jaisalmer district of Rajasthan during a program held at the Akashvani premises in Jaipur today. The event was attended by Jaipur MP Manju Sharma, Prasar Bharati Chairman Prasoon Joshi and Akashvani Director General Rajiv Kumar Jain, among other senior officials. Addressing the gathering, Union Minister Vaishnav, focusing on strategic infrastructure, highlighted the government's commitment to strengthening communication in border regions. He said today, a major initiative to cover border areas has commenced in Rajasthan. The minister said the plan is to provide comprehensive coverage across the entire border belt of the country, stretching all the way from Kashmir.
3: Today, a new 20 kilowatt. Which will cover not only the district but also surrounding regions. About an 80-kilometer radius and nearly 20,000 square kilometers. This is a significant step forward.
2: All three Indian seafarers who were initially reported missing after the tragic incident aboard the commercial vessel Palau-flagged MT Sethubalo have now been confirmed dead. The tanker was hit off the coast of Oman in a suspected U.S. missile strike. In a social media post, Union Minister for Ports, Shipping and Waterways, Sarbananda Sonowal said the bodies of three seafarers have been located and identified. Trinamool Congress MP Prakash Chigwaraik has resigned as a member of the Rajya Sabha. He has sent his resignation letter to Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan. Earlier, Trinamool Congress leaders and Rajya Sabha members Shukhendu Shekhar Rai

0: and Sushmita Dev had resigned from both the Rajya Sabha and the party. The United States carried out a new round of military strikes on Iranian targets, prompting Tehran to announce the closure of the strategically vital Strait of Hormuz and launch retaliatory actions against regional locations hosting U.S. forces. U.S. Central Command said it had completed a second consecutive day of self-defense strikes targeting Iranian air defense systems, radar installations, communications infrastructure, and surveillance capabilities in response to what Washington called continued Iranian aggression. Sports fans across the world are set for a month-long football spectacle as the 2026 FIFA World Cup kicks off tonight at the historic Estadio Azteca in Mexico City. In the opening match, hosts Mexico will take on South Africa in a Group A clash. The match begins at 12:30 a.m. Indian Standard Time. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक शुरू। विकसित भारत और समावेशी विकास पर चर्चा जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ले रहे हैं भाग। झारखंड हाईकोर्ट ने भूमाफियाओं के खिलाफ अपनाया सख्त रुख। राज्य सरकार ने तैयार किया विशेष एसओपी। कोर्ट ने दिया 6 हफ्ते का समय। राज्य के नेशनल और स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार रोकने के लिए लगेंगे स्पीड रिकॉग्निशन कैमरे। गति सीमा तोड़ने पर कटेगा ऑनलाइन चालान। रांची सदर अस्पताल बनेगा राज्य का पहला टेली एसएनसीयू और ई संजीवनी हब। ग्रामीण मरीजों को ऑनलाइन मिलेगी विशेषज्ञ सलाह। और रांची में आयोजित झारखंड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप संपन्न। बालक वर्ग में तनिष्क और बालिका वर्ग में कीर्ति बनी विजेता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता, कौशल विकास और स्थायी रोजगार सृजन के उपायों पर गहन विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके साथ ही डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और शासन से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर भी चर्चा केंद्रित है। इस वर्ष का मुख्य विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया है। बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद हैं। राज्य में जमीन कब्जे के बढ़ते मामलों पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया। सरकार की ओर से बताया गया कि मामले की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने विशेष एसओपी तैयार कर लिया है। अधिवक्ता अत्तानु बैनर्जी ने बताया कि अदालत ने इस एसओपी की समीक्षा करने और इसके क्रियान्वयन से जुड़े अन्य आवश्यक कदमों के लिए राज्य सरकार को 6 हफ्ते का समय दिया है।
2: एक नियम बनाया गया है, वो सरकार के पास अभी भेजा गया है। कोर्ट ने सरकार को 6 हफ्ते का समय दिया है। जो प्रस्ताव गया है इसको आपको लागू करना है, नहीं लागू करना है, जो भी निर्णय लेना आप 6 हफ्ते के अंदर लीजिए। कोर्ट ने मुझे भी ये कहा है वो उचित कानूनी रूप से वो सुझाव भी हम 10 दिन के अंदर ये वहाँ पर दे दे।
1: राज्य से गुजरने वाले नेशनल और स्टेट हाईवे पर सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार ने नई तकनीक अपनाने का फैसला किया है। अब हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने के लिए स्पीड रिकॉग्निशन कैमरे लगाए जाएंगे। सड़क सुरक्षा कोषांग की समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई कि अधिकांश हादसे वाहनों की तेज गति के कारण होते हैं। इसी को देखते हुए बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी कैमरा एनफोर्समेंट व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। बोकारो के सेक्टर 12 में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण कार्य का जायजा लेने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह बोकारो पहुंचे। उन्होंने जिला प्रशासन और सेल के अधिकारियों के साथ बैठक कर जमीन हस्तांतरण और बुनियादी ढांचे की प्रगति की समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने और इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है।
3: 27 मार्च में इसको चालू कर दिया जाए और NMC का जो नॉर्म्स है उसमें हम लोग मार्च तक अप्लाई कर देंगे।

0: पूरा हो चुका है। NHAI के अनुसार रेलवे ओवरब्रिज पर गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा होने के बाद अब निर्माण अंतिम चरण में है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोडरमा के लक्ष्मीपुर में गोवर्धन योजना के तहत स्थापित बायोगैस प्लांट से 32 घरों में पाइपलाइन के जरिए गैस की आपूर्ति शुरू हो गई है। महिलाओं द्वारा संचालित इस 1500 किलोग्राम क्षमता वाले प्लांट से लकड़ियों पर निर्भरता खत्म हुई है और खेतों के लिए जैविक खाद भी मिल रही है। परियोजना की सफलता पर मेंटेनेंस मैनेजर नीतीश राज ने कहा कि मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव और LPG की आसमान छूती कीमतों के बीच यह आत्मनिर्भर पहल बेहद कारगर साबित हो रही है।
1: तो और हम लोग पाइप से गैस दिए, गैस देने के बाद सुबह शाम जिस तरह हम रेगुलर बेसिस पर जो गैस जलता है उस हिसाब से प्रतिदिन हम लोग गैस जलता है सब वहाँ पे, जिसमें अभी LPG की किल्लत होने के कारण हमारे सबसे वरदान साबित होता है गोवर्धन योजना।
0: बोकारो शहर के सिटी थाना क्षेत्र स्थित दूंदीबाद फल मंडी में कल देर रात भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से 4 फल दुकानें और कई खटाल पूरी तरह नष्ट हो गए। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और BSL की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जमशेदपुर पुलिस ने साक्षी बाजार से लापता मासूम बच्ची आफरीन को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से सकुशल बरामद कर लिया है। बच्ची की तलाश के लिए गठित SIT ने 50 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल कर इस सफलता को हासिल किया। सिटी SP ललित मीणा ने बताया कि मामले में पुलिस ने एक निसंतान दंपति को हिरासत में लिया है।
2: 50 से अधिक CCTV देखे गए और उसका जब वो जो ट्रेल था जो उसके द्वारा रास्ता फॉलो किया गया था और ये जो दो व्यक्ति हैं इनका नाम है अब्दुल जसीम और अफसाना बेगम। इन्होंने देखा कि उस दिन मार्केट में बच्ची अकेली है तो ये उसको अपने साथ लेकर चले गए।
0: आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के मुख्य इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 125 अंक बढ़कर 74,109 पर और निफ्टी 29 अंक बढ़कर 23,244 पर पहुंच गया था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,38,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपये प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। राज्य में भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को आज से राहत मिल सकती है क्योंकि प्री मानसून गतिविधियां तेज होने जा रही हैं। मौसम विभाग ने रांची, धनबाद और देवघर समेत कई जिलों में आंधी, वज्रपात और बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मुख्य मानसून अगले 4 दिनों में संताल परगना के रास्ते राज्य में प्रवेश करेगा। रांची में आयोजित 25वीं झारखंड जूनियर स्टेट शतरंज चैंपियनशिप में बालक वर्ग में तनिष्क कुमार और बालिका वर्ग में कीर्ति कुमारी ने खिताबी जीत हासिल की है। प्रतियोगिता के शीर्ष 4-4 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर की शतरंज प्रतियोगिता के लिए हुआ है। इसी समारोह में झारखंड अंडर 7 और अंडर 11 शतरंज चैंपियनशिप का भी विधिवत उद्घाटन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक शुरू। विकसित भारत और समावेशी विकास पर चर्चा जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ले रहे हैं भाग। झारखंड हाईकोर्ट ने भूमाफियाओं के खिलाफ अपनाया सख्त रुख। राज्य सरकार ने तैयार किया विशेष SOP। कोर्ट ने दिया 6 हफ्ते का समय। राज्य के नेशनल और स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार रोकने के लिए लगेंगे स्पीड रिकॉग्निशन कैमरे। गति सीमा तोड़ने पर कटेगा ऑनलाइन चालान। रांची सदर अस्पताल बनेगा राज्य का पहला टेली SNCU और ई संजीवनी हब। ग्रामीण मरीजों को ऑनलाइन मिलेगी विशेषज्ञ सलाह। और

रांची में आयोजित झारखंड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप संपन्न, बालक वर्ग में तनिष्क और बालिका वर्ग में कीर्ति बनी विजेता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है अब उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। हमारे आज के कलाकार हैं गिरजा देवी। इनसे सुनिए राग देव गंधार।

उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम मनोरंजनी का प्रसारण अभी आप सुन रहे थे। हमारे आज के कलाकार थे गिरिजा देवी। इसी के साथ आज का मनोरंजनी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है अब सुगम संगीत। हमारे आज के कलाकार हैं हरिहरण। इनसे आप सुनेंगे चंद गजल।

सुगम संगीत के अंतर्गत लीजिए, इस कार्यक्रम का अंतिम गजल पेश है, जिसे अल्फाज है हकीम नासिर के।

सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे थे मशहूर गजल गायक हरिहरन की दिलकश आवाज में चुनिंदा गजलें। इसी के साथ आज का सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़।

0: सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर DG साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य

0: भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
1: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
0: ओमान की खाड़ी में पलाव ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमरीकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमरीका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्यवाही में ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमरीका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
2: मिलिट्री कॉन्फ्रेंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधा कृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए AI द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं।

0: आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
2: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं हमारे वीर फौजी साथियों को समर्पित फिल्म संगीत का लोकप्रिय कार्यक्रम जय भारती। देश की सीमाओं पर तैनात जवानों के साहस, समर्पण और देशभक्ति को नमन करते हुए प्रस्तुत है कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म भूज द प्राइड ऑफ इंडिया से। देशभक्ति से ओतप्रोत गीत देश मेरे, स्वर है अरिजीत सिंह के, संगीत दिया है ऑर्को ने और बोल लिखे हैं मनोज मुंतशिर ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: फिल्म भाग मिल्खा भाग से प्रस्तुत है बेहद सुरीला और भावपूर्ण गीत ओ रंगरेज। स्वर है जावेद बशीर और श्रेया घोषाल के, संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने और बोल लिखे हैं प्रशुन जोशी ने।

फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह से प्रस्तुत है जोश जुनून और देशभक्ति से भरपूर गीत मेरा रंग दे बसंती चोला। स्वर है सोनू निगम और मनमोहन वारिश के। संगीत दिया है ए आर रहमान ने और बोल लिखे हैं समीर ने।

फिल्म बजरंगी भाईजान से प्रस्तुत है दिल को छू लेने वाला गीत जिंदगी कुछ तो बता। स्वर है जुबिन नौटियाल के, संगीत दिया है प्रीतम ने और बोल लिखे हैं निलेश मिश्रा ने।

इसी खूबसूरत गीत के साथ फौजी साथियों को समर्पित फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती यहीं संपन्न होता है। देश की सीमाओं पर तैनात हमारे वीर जवानों को शत शत नमन।

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आज नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक चल रही है। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता की और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़

0: संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। नीति आयोग की बैठक के दौरान देश के विकास को रफ्तार देने के लिए समन्वय और सहयोग पर बल दिया जा रहा है। राज्यों ने भी अपनी आवश्यकताओं से केंद्र सरकार को अवगत कराया और विकसित राष्ट्र निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई। इस बैठक में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य का पक्ष रखा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और निर्देशन में पिछले 12 वर्षों में देश के हर क्षेत्र और हर वर्ग का अभूतपूर्व विकास हुआ है। श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड को भी केंद्र सरकार की ओर से देवघर एम्स, हवाई अड्डा, वंदे भारत ट्रेन, विभिन्न सड़क परियोजनाओं और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं की सौगात मिली है, जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आया है।
1: जो देश में विकास और देश की जनता का विश्वास और साथ ही गरीब कल्याण योजना, अगर इसके फेहरिस्त को आप देखेंगे वो लंबी 12 वर्षों में उन्होंने जितना काम किया वो अपने आप में अद्भुत। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। इससे स्पष्ट होता है कि ये कोई सत्ता के लिए नहीं बल्कि सेवा का वो तपस्या का वो इकरार है।
0: राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में नाम वापसी की समय सीमा अब से कुछ देर बाद दोपहर 3 बजे खत्म हो जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों, झामुमो के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के बीच मुकाबला तय है। तीनों ने चुनावी रणक्षेत्र में डटे रहने का फैसला किया है और किसी ने नाम वापस नहीं लिया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार 18 जून को राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में मतदान कराया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद नगर निगम ने क्षेत्र में बिना लाइसेंस के चल रहे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने बताया कि शहरी क्षेत्र में बिना लाइसेंस के चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस दिया गया, लेकिन एक प्रतिष्ठान ने समय सीमा के अंदर आवेदन नहीं प्रस्तुत किया, इस कारण उसे सील कर दिया गया है।
2: यहाँ पर बहुत सारे विभाग, भवन, बैंकेट हॉल, लॉजिस है, जहाँ पर 2013 की नियमावली के अनुसार सबको निबंधन कराना है, लेकिन यहाँ पर प्राय देखा गया कि बहुत सारे जो ऐसे लॉजिस है, विभाग भवन है, उन्होंने निबंधन नहीं कराया, हम लोगों के लाइसेंस नहीं लिया। सारे कागजात की जांच की जा रही है और जांच करने के उपरांत हम लोग जो भी उपयुक्त कार्रवाई होगी वो करेंगे।
0: मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज दोपहर बाद गरज के साथ झमाझम बारिश हो रही है। इस बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि देवघर, दुमका, गुड्डा, हजारीबाग, लोहरदगा, पाकुड़, रामगढ़ और साहिबगंज जिले में अगले कुछ घंटों के दौरान तेज हवा और गरज के साथ बारिश और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। एनजीटी के निर्देश पर झारखंड में बालू खनन, भंडारण और परिवहन पर 15 अक्टूबर तक पूरी तरह रोक लगा दी गई है। मॉनसून में नदियों का जलस्तर और बहाव तेज होने से पर्यावरण और सुरक्षा जोखिम को देखते हुए राज्य के सभी 444 बालू घाटों में उत्खनन और परिवहन बंद कर दिया गया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छिपी होती है एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
3: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
3: श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
2: जी
3: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
2: जी
3: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
2: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई हैं, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजीत जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
3: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
2: जी
3: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
2: जी
3: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
2: श्रोताओ, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओ, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
3: तो श्रोताओ, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
2: जी
3: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है, यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है या नारंगी या लाल भी हो सकता है किस्मों और स्थान के अनुसार।
2: जी
3: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं। फिर क्या होता है?
2: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भून कर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
3: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
2: जी
3: तो श्रोताओ, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
2: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
3: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
2: जी
3: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
2: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।

0: जी, श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
1: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियाँ उनके लिए अनुकूल हैं।
0: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
2: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहाँ बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माता जी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माता जी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पौंडेचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
0: जी,
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
0: जी,
1: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
0: जी,
1: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करें। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
0: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
1: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
0: जी,
1: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
0: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
1: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
0: जी,
1: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में

0: हमारी शिक्षा व्यवस्था, ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
1: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
0: जी,
1: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
0: जी हाँ,
1: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें 1-2 विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
0: बिल्कुल ठीक।
1: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
0: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
1: असल बात तो यह है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
0: जी,
1: अब सवाल यह है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है, उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
0: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
1: दरअसल 6ठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5ों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
0: जी,
1: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
0: जी हाँ,
1: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू ये है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
0: जी बिल्कुल।
1: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को

0: साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पौंडेचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: शिक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

हो गई इस गीत में। अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर।

0: मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहाँ।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग
4: NCERT के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण अभी आप सुन रहे थे, और इसी के साथ आज का उमंग कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। नमस्कार श्रोताओं, कड़ी धूप और उमस के लंबे दौर के बाद रांची शहर में हुई जोरदार बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। ठंडी हवाओं और बारिश के फुहारों के बीच आपका स्वागत आपके पसंदीदा कार्यक्रम रांची मेलोडीज में। मैं हूं विश्वजीत और अगले कुछ समय तक हम साथ सुनेंगे बेहतरीन फिल्मी गीतों का सिलसिला। तो शुरुआत करते हैं एक चुलबुले और मस्ती भरे गीत से, फिल्म कोई मिल गया का ये लोकप्रिय गीत इधर चला मैं उधर चला। गीत को स्वर दिया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने, संगीत है राजेश रोशन का और बोल लिखे हैं इब्राहिम अक्ष ने।

बारिश की रिमझिम फुहारें, हाथों में गर्मा गर्म चाय, साथ में स्वादिष्ट पकौड़े और सुरीले गीतों के साथ ऐसे खुशनुमा मौसम में सुनिए फिल्म गुरु का बेहद रूहानी गीत तेरे बिना। स्वर है एआर रहमान, चिन्मयी मुर्तजा खान और कादिर खान के। संगीत दिया है एआर रहमान ने और बोल लिखे हैं गुलजार ने। आइए इस खूबसूरत गीत का आनंद लेते हैं।

रांची में यही तो खास बात है, चाहे दिन में कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़े, एक अच्छी बारिश पूरे मौसम का मिजाज बदल देती है। आसमान में घने बादल छाए हैं, हवाओं में मिट्टी की सौंधी खुशबू खुली हुई है, और ऐसे में सुहाने मौसम के लिए अगला गीत बिल्कुल उपयुक्त है। सुनिए आयुष्मान खुराना के स्वर में।

बारिश के इस सुहाने मौसम में सुनिए दिल को छू लेने वाला गीत बारिश, बरसात की धुन। स्वर है जुबिन नौटियाल के, संगीत दिया है रोचक कोहले ने और बोल लिखे हैं रश्मि विराग ने। आइए बारिश के फुहारों के साथ इस खूबसूरत गीत

अभी आपने सुना फिल्म चमेली का खूबसूरत गीत भागीरे मन, सुनिधि चौहान की सुरीली आवाज, संदेश शौंडल्य का मधुर संगीत और इरशाद कामिल के भावपूर्ण बोल। और अब सुनिए बारिश के इस रिमझिम फुहारों के बीच फिल्म 1942 अ लव स्टोरी का सदाबहार गीत रिमझिम रिमझिम। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की मधुर आवाजों में सजा यह गीत हर मौसम को और भी खुशनुमा बना देता है।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म लापता लेडीज से, सचनी। स्वर है अरिजीत सिंह के, संगीत दिया है राम संपत ने और बोल लिखे हैं प्रशांत पांडे ने।

0: इस गाने के साथ रांची मेलोडीज कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। विश्वजीत का नमस्कार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। शाम के 4 बजने वाले हैं। आइए सुने अब प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आज नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य का पक्ष रखा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और निर्देशन में पिछले 12 वर्षों में देश के हर क्षेत्र और हर वर्ग का अभूतपूर्व विकास हुआ है। श्री मरांडी ने कहा कि केंद्र को भी झारखंड को भी केंद्र सरकार की ओर से देवघर एम्स, हवाई अड्डा, वंदे भारत ट्रेन, विभिन्न सड़क परियोजनाओं और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं की सौगात मिली है, जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आया है। राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में नाम वापसी की समय सीमा खत्म हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों झामुमो के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के बीच मुकाबला तय है। तीनों में से किसी उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लिया। अब भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार 18 जून को राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में मतदान कराया जाएगा। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से 21 जून को ली जाने वाली नीट की पुनर्परीक्षा के मद्देनजर रांची के 21 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है। परीक्षा के शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संचालन के लिए केंद्रों पर दंडाधिकारियों और पुलिस बलों की तैनाती की गई है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान जगत। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है एसी का उपयोग सावधानी से करें। इसी कार्यक्रम में आपको भेंटवार्ता में सुनवाएंगे कांटेक्ट लेंस का बढ़ता क्रेज। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर अमित कुमार जायसवाल, भेंटकर्ता होंगे वसंत कुमार। वाचन एवं संयोग वसंत कुमार का है। कार्यक्रम की प्रस्तुति प्रभु शरण की।

नमस्कार, विज्ञान जगत कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से उपस्थित है हम। मैं हूँ बसंत और आप सभी का स्वागत है विज्ञान जगत कार्यक्रम में। तो हर बार की तरह आज भी हम ढेर सारी नई रोचक जानकारी और तथ्यों को लेकर फिर से उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए क्या क्या नई जानकारियां लेकर आए हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे कि एसी का उपयोग हमें सावधानी से क्यों करना चाहिए। इसके बाद बारी होगी भेंटवार्ता की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कॉन्टेक्ट लेंस के बढ़ते क्रेज के बारे में। इसके बाद बारी होगी वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं वैज्ञानिक इयान डोनाल्ड के बारे में। इसके बाद बारी होती है खोज और आविष्कार की, जिसमें आज हम आपसे बात करेंगे OMR क्या है इसके बारे में और ये कैसे काम करता है इसके बारे में। तो ये हमने आपको बता दिया कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या नई जानकारी आपको देने वाले हैं इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि एसी का उपयोग हमें सावधानी से क्यों करना चाहिए इसके बारे में। गर्मी का मौसम आते ही हम सबसे पहली जिस चीज की तलाश करते हैं वो है ठंडक और छांव की, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर हमें गर्मी से राहत मिले, हमें आराम मिले और गर्मी से जो परेशानी होती है उसे दूर कर सके। लेकिन गर्मी से राहत पाने के लिए एयर कंडीशनर यानी एसी आज हमारी जरूरत बन चुकी है। बढ़ते तापमान के कारण लोग घरों, दफ्तरों, अस्पतालों और वाहनों में एसी का उपयोग कर रहे हैं। एसी हमें ठंडी और आरामदायक हवा तो देती ही है, लेकिन इसका उपयोग यदि सावधानी पूर्वक नहीं किया गया तो स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए इसके साथ में बिजली की जो खपत है इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे बजट पर भी डाल सकता है। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो कई लोग एसी का तापमान बहुत कम कर देते हैं। अत्यधिक ठंडे वातावरण में लंबे समय तक रहने से सर्दी, जुकाम, गले में खराश, सिर दर्द, त्वचा का सूखापन और सांस संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार एसी का तापमान 24 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रखना सबसे अच्छा माना जाता है। इससे शरीर को आराम भी मिलता है और बिजली की बचत भी होती है। इसके अलावा एसी वाले जो कमरे हैं लंबे समय तक उसमें रहने से शरीर को प्राकृतिक वातावरण की आदत जो है वो कम हो जाती है। जब व्यक्ति अचानक बहुत ठंडे कमरे से बाहर तेज धूप में निकलता है तो शरीर पर उसका प्रतिकूल यानी कि नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए समय समय पर खुली हवा में भी हमें समय बिताना बहुत आवश्यक है, न कि एसी वाले कमरे में 24 घंटा यानी कि बंद होकर रहने की कोई जरूरत नहीं है। एसी की नियमित सफाई और सर्विसिंग ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए समय समय पर साफ करवाना और एसी की जांच करवाते रहना बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं कि बिजली की खपत की, यानी कि एसी घर में जब लग जाती है तो बिजली का जो खर्च है, जो बिल है, वो भी काफी बढ़ने लगता है। सबसे अधिक बिजली खर्च करने वाले उपकरणों में अगर माना जाए तो एसी ही होता है गर्मी के समय में। यदि इसका उपयोग आवश्यकता से अधिक किया जाए तो बिजली का जो बिल है वो भी काफी बढ़ सकता है। इसके अलावा एसी

0: का पर्यावरण पर काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। अधिक बिजली की खपत का मतलब है अधिक ऊर्जा का उत्पादन, जिससे कार्बन उत्सर्जन बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ पुराने एसी में उपयोग होने वाली जो गैस है वो पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक हो सकती है। इसलिए ऊर्जा दक्षता वाले यानी अधिक स्टार रेटिंग वाले एसी का उपयोग करना अच्छा माना जाता है। श्रोताओं, एसी हमारे जीवन को आरामदायक बनाता है, लेकिन इसका विवेकपूर्ण और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। सही तापमान, नियमित सफाई, सीमित उपयोग और ऊर्जा संरक्षण के उपाय अपनाकर हम अपने स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक संसाधनों की रक्षा कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया कि एसी का उपयोग हमें सावधानी से क्यों करना चाहिए। और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं भेंटवार्ता में। आज हम कॉन्टेक्ट लेंस का बढ़ता क्रेज क्यों है इतना ज्यादा, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं डॉक्टर अमित कुमार जायसवाल, जो कि एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस शो में बुलाने के लिए।
0: हम आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आज के समय में आंखों में लोग थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, और आंखों में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, थोड़ा सा उसके बारे में पहले बताएं।
1: सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है सीजनल एलर्जी की। बहुत लोगों को आंख में लालीपन ना जाना, खुजली होना। और दूसरा अभी क्या है, लोगों को कोरोना के बाद जो बच्चे बहुत सारे मोबाइल करते थे, तो उन लोगों का बहुत सारे लोगों को चश्मा लग गया है। तो ये दो मेन समस्याएं अभी हैं।
0: यानी कि ये दो प्रमुख समस्याएं हैं जो आप अभी ज्यादा देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी आंखों में जो समस्याएं होती है वो कौन कौन सी चीजें हैं जो ज्यादातर परेशान करती है आंखों को, जिससे बचना जरूरी है?
1: अभी के दौर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो लोगों को आ रही है वो मोबाइल या कंप्यूटर यूज़ करने के बाद लोगों को ड्राई आई, जो हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं, उसकी समस्या आ रही है। और साथ ही साथ बच्चों में अभी इतना ज़्यादा मोबाइल और लैपटॉप यूज़ हो रहा है कि लोगों में, बहुत सारे लोगों को मैंने अभी देखा है कि पिछले एक साल में बहुत से नए बच्चों को चश्मा का पावर लग गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नियर वर्क करने के कारण हो रहा है, पहला चीज। दूसरा, जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम मैंने बताया, इसमें क्या होता है, जैसे आप मोबाइल देख रहे हैं या कंप्यूटर देख रहे हैं तो आपकी पलक झपकती नहीं है, आप लगातार कोई चीज़ को देखते रहते हैं, तो इससे क्या होता है, आपको आँखों में जो टियर फिल्म होता है वो इवेपोरेट होकर आँख को ड्राई कर देता है। तो इस कारण लोगों को फिलहाल तो ये ज़्यादा समस्या है। और जो लोगों का स्क्रीन टाइम है मोबाइल और लैपटॉप में जो बहुत देर से लोग बैठे रहते हैं, तो उसके कारण बहुत सारे लोगों का आंखों में ड्राइनेस का प्रॉब्लम और आंखों में पावर का आ जाना वो बहुत कॉमन हो गया है अभी के समय में।
0: तो ये प्रमुख वजह है जिसके कारण अभी ज्यादातर मरीज इसके देखे जा रहे हैं। तो अब जैसा कि हमने बात की कि कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में हम बात करेंगे, तो सबसे पहले तो एक आम सा सवाल है कि कॉन्टैक्ट लेंस क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: कॉन्टैक्ट लेंस एक बहुत ही पतला झिल्ली प्लास्टिक का बना हुआ रहता है, जो 1 मिलीमीटर से भी कम का थिकनेस रहता है। इसे हम अपने पुतलियों के ऊपर आसानी से लगा सकते हैं, उसमें पावर लगा रहता है जिससे चश्मा पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है।
0: इसकी शुरुआत तो बहुत पहले से ही हो चुकी होगी, लेकिन आज के समय में इसका जो क्रेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये बढ़ता हुआ क्रेज हमारी आंखों के लिए सही है या फिर चश्मा ज्यादा बेहतर है आंखों के लिए?
1: देखिए, अभी डिपेंड करता है कि कॉन्टैक्ट लेंस कौन पहनना चाहता है, और कभी कभी कॉन्टैक्ट लेंस के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस पहनने का सबसे मेन रीज़न होता है कॉस्मेटिक। लोग चश्मा नहीं पहनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग वो चाहते हैं कि मैं चश्मा ना पहनूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का होता है कि थोड़ा ज़्यादा पावर होता है तो चश्मा थोड़ा मोटा दिखता है, तो लोगों को देखने में थोड़ा भद्दा लगता है। और जनरली जो फीमेल होते हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो चश्मा नहीं पहनना चाहती हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे शादी वगैरह होना है तो उसमें भी लोग वो चाहते हैं कि लोग ना जाने कि मैं चश्मा ज़्यादा पावर है, तो वो लोग भी कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करना चाहते हैं। ज़्यादातर लड़कियाँ यूज़ करती हैं, क्योंकि कॉस्मेटिकली वो नहीं चाहती है कि उन्हें चश्मा पहने, वो
0: मतलब कोई ये ना जाने कि मुझे आंखों की समस्या है, और इसीलिए ज्यादातर आज इसका क्रेज बढ़ गया है।
1: सही
0: है। क्या इसके बहुत सारे प्रकार भी हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे तरह के लेंसेस होंगे जिसका इस्तेमाल लोग करते हैं?
1: हाँ, डेफिनेटली होते हैं। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि मैं आईज का कलर ब्लू कर लूँ, मेरा आइस ब्राउन है तो मैं थोड़ा ब्लू लगाऊं तो मेरा थोड़ा आइस का कलर अच्छा दिखाई देगा। और कुछ बीमारियां भी होती हैं जैसे केराटोकोनस है,

0: इसमें आँख की पुतली थोड़ी पतली हो जाती है, तो उसमें एक अलग तरह का लेंस यूज होता है। तो होते हैं मेडिकली बहुत तरह के कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं, तो इसलिए हमेशा कभी भी आपको कॉन्टैक्ट लेंस लेना है तो डॉक्टर के सलाह पर ही पहने,
1: यानी कि बिना डॉक्टरी सलाह के लेंस यूज करना खतरनाक हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग भी होंगे जिनको किसी तरह की समस्या नहीं है, फिर भी वो कॉन्टैक्ट लेंस
0: नहीं, वो नहीं पहनते हैं। जनरली वो फिल्मों में यूज होता है कि आईज का कलर चेंज करना है तो होता है, ऐसे जनरली लोग नहीं यूज करते।
1: अच्छा, इसे लगाने का जो तरीका है और इसके रखरखाव का तरीका, आंखों में कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजें कैसे समझ सकते हैं इसके बारे में?
0: ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आप इसको ठीक से नहीं समझेंगे कि कैसे यूज करना है तो आपको आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। सबसे पहले हाथ को धो लिया जाता है, उसके बाद हैंड क्लीन करके अच्छे से कॉन्टैक्ट लेंस, एक पहनने का तरीका होता है कि पहले अपने दो फिंगर्स के बीच ले, अपने पलक को नीचे खींच के ऊपर देख के आँख के ऊपर लेंस लगाना होता है। अगर इस तरह से आप नहीं पहनेंगे, अगर गंदे हाथ से पहनेंगे, गंदे हाथ से खोल लेंगे उसको निकाल लेंगे, तो आंखों में गंदे हाथ से इन्फेक्शन चला जाता है। और बहुत ज्यादा समय भी, अगर कुछ लेंसेस होते हैं जिसको आपको ज्यादा समय तक नहीं यूज करते हैं, उसका एक एक्सपायरी होता है, जैसे एक मंथ में उसको डिस्कार्ड कर देना है या एक हफ्ता या एक महीने, इस तरह उन लोगों को उस लेंस को डिस्कार्ड कर दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि हम लेंस लगा रहे हैं तो इसको जब तक चल रहा है चलाएं, उससे भी नुकसान आंखों को हो सकता है।
1: यानी कि चश्मा हम एक बार खरीदते हैं तो चश्मा काफी लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और लेकिन लेंसेस में ये बात नहीं है, उसे समय समय पर बदलते रहना जरूरी है।
0: उसे समय समय पर बदलना जरूरी है। उसको लेंस को आंख से निकाल के भी एक सॉल्यूशन में रखा जाता है, ये नहीं कि कहीं भी रख दिए, कोई भी पानी में रख दिए, तो उससे भी आंखों में और ज्यादा इन्फेक्शन का खतरा रहता है।
1: यानी उसके लिए अलग से एक लोशन भी आता है,
0: एक सॉल्यूशन रहता है जिसमें आप उस लेंस को रखना होता है।
1: क्या जो बच्चे हैं उनकी आंखों में भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर सिर्फ बड़ों के लिए है ये?
0: नहीं, ये सिर्फ जो मैच्योर लोग हैं, जो समझ सकते हैं कैसे यूज करना है, उन्हें ही पहना जाना अच्छा रहता है।
1: अभी के समय में देखा जाए तो लोग चश्मा छोड़कर अब कॉन्टैक्ट लेंस की तरफ ज्यादा रुझान दिखा रहे हैं, तो इस्तेमाल करने के बाद इसके फायदे और नुकसान क्या क्या हैं?
0: नहीं, अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस जिस तरह प्रिस्क्राइब किया हुआ है उसमें भी आपको साल में एक बार डॉक्टर से मिलके अपना पावर चेक कराना है, जो सही पावर है उसी का कॉन्टैक्ट लेंस पहने, फिर उसका रख रखाव का तरीका अगर आपने सही से समझा है तो लंबे समय तक यूज करने पर भी कोई नुकसान नहीं होती है आंखों को।
1: चश्मा और कॉन्टैक्ट लेंस में दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर है आंखों के लिए?
0: देखिये, बेहतर तो चश्मा ही होता है, कॉन्टैक्ट लेंस सब कोई नहीं मैनेज कर पाते हैं, बहुत लोग उनको उसको पहनना नहीं सीख पाते हैं। और चश्मा क्या है, आप डेली यूज है, आप जैसे भी रखो रफली भी उसको रख सकते हो, उसके रख रखाव में उतना स्किल की जरूरत नहीं पड़ती है, तो मैक्सिमम लोग चश्मा ही यूज करते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस में थोड़ी दिक्कत तो बहुत लोगों को आती ही है, तो आज के समय में अगर देखा जाए तो इतना भी बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट लेंस का यूजेस नहीं है, मैक्सिमम लोग चश्मा ही पहनते हैं।
1: और जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर रहे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो किस तरह से इनका सही इस्तेमाल करें कि उनकी आंखों में किसी तरह की समस्या नहीं उत्पन्न हो इसके लिए?
0: पहले तो जैसे मैंने बताया कि हैंड क्लीन करके प्रॉपर वे में उसको पहनना है, और उसमें लेंस में लिखा हुआ रहता है कि आपको कितने दिन तक यूज करना है, तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, एक समय समय पर आंखों का चेक कराते रहें साल में एक बार।
1: एक और सबसे आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जैसे हमने अभी बात की कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में, कितने तरह के होते हैं और इसके बहुत सारी चीजों के बारे में, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए हमारी आंखें, तो हम आज के समय में अपनी आंखों का किस तरह से देखभाल करें, कैसे उसको अच्छा रख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: सबसे पहले तो आजकल जो स्क्रीन टाइम, मोबाइल टाइम है, उसको कम करना होगा, जितनी ज़रूरत है उतना ही करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, ड्राई आई का प्रॉब्लम है, लोगों को पावर बढ़ते जा रहा है, और बच्चे उसका दूसरा साइड इफेक्ट है कि एडिक्ट होते जा रहे हैं कि मुझे मोबाइल चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों के हाथ से तो मोबाइल लेना है, बच्चों को मोबाइल नहीं देना है। दूसरा, आप अगर बहुत ज़्यादा मोबाइल या स्क्रीन टाइम है ही, अगर आपका वो जॉब ही है कि आपको कंप्यूटर पर काम करना है, तो जो ब्लू फिल्टर एंटी रिफ्लेक्टिव ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं उसको यूज करें, वो आंखों के लिए अच्छे होते हैं। दूसरा, बच्चों को हरी सब्जियां खिलाएं, गाजर खिलाएं, पपीता खिलाएं, तो वो सब अच्छा रहता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनका एक बार ज़रूर आँखों की जाँच कराएँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है कि बच्चों

तो इस बहुत ही प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विज्ञान जगत कार्यक्रम में। और अब बारी है वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की। आज हम बात करेंगे चिकित्सा विज्ञान के एक ऐसे महान वैज्ञानिक और चिकित्सक की, जिनके शोध और आविष्कार ने आधुनिक चिकित्सा को नई दिशा देने का काम किया। इयान डोनाल्ड को चिकित्सा जगत में अल्ट्रासाउंड तकनीक के जनक के रूप में जाना जाता है। इनकी खोज ने गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की देखभाल को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाने का काम किया। इयान डोनाल्ड का जन्म 27 दिसंबर सन 1910 को स्कॉटलैंड में हुआ था। इनका पूरा नाम इयान डगलस विल्सन डोनाल्ड था। बचपन से ही ये अत्यंत जिज्ञासु और मेधावी छात्र के रूप में काफी आगे रहते थे। इन्हें विज्ञान, तकनीक और नई चीजों को समझने में विशेष रुचि रहती थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्कॉटलैंड में हुई और बाद में इन्होंने प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज से चिकित्सा की पढ़ाई पूरी की। अध्ययन के दौरान ही इन्होंने चिकित्सा अनुसंधान के प्रति गहरी रुचि विकसित कर ली और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने ब्रिटिश वायुसेना में चिकित्सा अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं भी

दी। युद्ध काल में इन्हें विभिन्न प्रकार की तकनीकों और उपकरणों के साथ काम करने का अवसर मिला। इसी अनुभव ने इनके मन में चिकित्सा क्षेत्र में नई तकनीकों के उपयोग का विचार पैदा कर दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद इन्होंने स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्य करना शुरू किया और महिलाओं तथा नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहन अध्ययन करना शुरू कर दिया। 1950 के दशक में चिकित्सा विज्ञान में गर्भस्थ शिशु की स्थिति का पता लगाने के लिए सुरक्षित और प्रभावी साधनों की काफी कमी थी। डॉक्टरों को केवल अनुमान और सीमित जांचों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसी समस्या को देखते हुए इयान डोनाल्ड ने ध्वनि तरंगों के उपयोग पर शोध करना शुरू किया। इन्होंने उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली अल्ट्रासोनिक तकनीक से प्रेरणा लेकर इसे चिकित्सा के क्षेत्र में लागू करने का प्रयास किया। इनकी मेहनत रंग लाई और इन्होंने अल्ट्रासाउंड तकनीक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तकनीक के माध्यम से पहली बार गर्भ में पल रहे शिशु की तस्वीरें प्राप्त करना संभव हो गया। डॉक्टर अब बिना किसी दर्द, ऑपरेशन या हानिकारक विकिरण के गर्भस्थ शिशु की स्थिति, विकास और स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त कर सकते थे। ये चिकित्सा विज्ञान की एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में मानी गई। इयान डोनाल्ड ने केवल गर्भावस्थ संबंधी जांच तक ही अपने शोध को सीमित नहीं रखा। इन्होंने ये भी कर दिखाया कि अल्ट्रासाउंड तकनीक शरीर के भीतर मौजूद ट्यूमर, सिस्ट और अन्य असामान्य संरचनाओं की पहचान में भी उपयोगी साबित हो सकती है। आज हृदय, गुर्दे और शरीर के कई अन्य अंगों की जांच में अल्ट्रासाउंड व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ये सब इनके दूरदर्शी अनुसंधान का परिणाम ही माना जाता है। इनकी खोज ने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में काफी योगदान दिया है। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से गर्भावस्था के दौरान होने वाली कई जटिलताओं का समय रहते पता लगाया जा सके, इसके लिए उचित उपचार संभव हो, इसमें इनका काफी योगदान है। आज दुनिया के लगभग हर अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन एक आवश्यक चिकित्सा उपकरण बन चुकी है। अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए इयान डोनाल्ड को अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए। चिकित्सा जगत में इन्हें अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय अनुसंधान, शिक्षण और रोगियों की सेवा को समर्पित कर दिया। 9 जून 1987 को इनका निधन हो गया, लेकिन इनकी खोज और योगदान आज भी मानव की सेवा कर रहे हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इनका नाम सदैव स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है। जब भी किसी गर्भवती महिला की अल्ट्रासाउंड जांच होती है, तब कहीं न कहीं इयान डोनाल्ड के महान कार्यों की झलक इसमें दिखाई पड़ती है। इयान डोनाल्ड का जीवन हमें ये सिखाता है कि विज्ञान और मानव सेवा का मेल समाज के लिए चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। अब बारी है खोज और आविष्कार की, और आज खोज और आविष्कार में हम जानकारी देने वाले हैं आपको OMR क्या है और कैसे काम करता है इसके बारे में। तो हम आपको बता दें कि OMR वर्तमान समय में प्रतियोगी परीक्षाओं, सर्वेक्षणों और विभिन्न प्रकार के डेटा संग्रहण में कार्य के लिए OMR का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल मार्क रीडर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से विशेष रूप से तैयार किए गए फॉर्म या उत्तर पत्र पर लगाए गए निशानों को कंप्यूटर द्वारा पढ़ा और विश्लेषित किया जाता है। जब किसी परीक्षा में अभ्यर्थी उत्तरों के सामने दिए गए गोले को काले या नीले पेन से भरता है, तो OMR उस मशीन में भरे हुए गोलों को स्कैन करके उनकी जानकारी कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करती है। आज देश की अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाएं, विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं, भर्ती परीक्षाएं और विद्यालयों की कई परीक्षाएं भी OMR सीट के माध्यम से ली जाती है। इससे मूल्यांकन प्रक्रिया में तेजी आती है, सटीकता और पारदर्शिता भी बनी रहती है। इसके अलावा OMR तकनीक का कार्य करने का तरीका काफी सरल माना जाता है। सबसे पहले अभ्यर्थी उत्तर पत्र में सही विकल्प के सामने बने गोले को भरता है। इसके बाद OMR स्कैनर उस शीट को स्कैन करती है और स्कैनर प्रकाश किरणों की सहायता से ये स्पष्ट पहचानता है कि कौन सा गोला भरा गया है और कौन सा खाली है। भरे हुए स्थान प्रकाश को कम परावर्तित करते हैं, जबकि खाली स्थान अधिक प्रकाश परावर्तित करते हैं। इसी अंतर के आधार पर कंप्यूटर सही जानकारी प्राप्त कर लेता है। OMR के कई महत्वपूर्ण लाभ भी हैं। सबसे बड़ा लाभ ये है कि इससे हजारों उत्तर पत्रों का मूल्यांकन बहुत कम समय में किया जा सकता है। मानवीय त्रुटियों की संभावना भी इसमें कम रहती है और परिणाम अधिक सटीक हो जाते हैं। इसके अलावा बड़ी मात्रा में डेटा को जल्दी और आसानी से संशोधित भी किया जा सकता है। यही कारण है कि शैक्षिक संस्थानों, सरकारी विभागों और निजी संगठनों में इसका उपयोग लगातार बढ़ रहा है। हालांकि OMR का उपयोग करते समय कुछ सावधानियां भी
आवश्यक मानी जाती हैं। उत्तर पत्र में गोले को पूरी तरह भरना चाहिए। एक से अधिक विकल्प भरने पर उत्तर पत्र गलत माना जा सकता है। उत्तर पत्र को मोड़ना, फाड़ना या उस पर अनावश्यक निशान बनाना भी स्कैनिंग प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसलिए परीक्षा के दौरान दिए गए निर्देशों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। OMR तकनीक का उपयोग केवल परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं है। इसका उपयोग सर्वेक्षण फॉर्म, जनमत संग्रह, उपस्थिति रजिस्टर, ग्राहक प्रतिक्रिया फॉर्म और विभिन्न प्रकार के डेटा संग्रहण कार्यों में भी किया जाता है। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। और आज के समय में हम अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो आज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं, लेकिन OMR का इस्तेमाल आज भी अलग अलग परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में की जाती है। OMR आधुनिक तकनीक का एक महत्वपूर्ण और उपयोगी उदाहरण है, जिसने परीक्षा और डेटा प्रबंधन की प्रक्रिया को अधिक सरल, तेज और विश्वसनीय बनाने का काम किया है। डिजिटल युग में इसकी उपयोगिता लगातार बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में भी ये तकनीक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और हम में से बहुत सारे लोगों ने प्रतियोगी परीक्षाएं दी होगी। कंप्यूटर के एग्जाम यानी कि CBT बेस्ड एग्जाम होने के पहले OMR पर ही परीक्षा देने के लिए किया करते थे, और आज भी CBT एग्जाम्स होने के बाद भी आज OMR सीट का इस्तेमाल किया जाता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो अगर आप कभी परीक्षा देने जाएं तो OMR के बारे में पूरी जानकारी रखें, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आज हमने ढेर सारी बातें आपसे कर ली, ढेर सारी जानकारियां आपको दे दी, और अब हमारी स्टूडियो की जो घड़ी है वो आपसे विदा लेने का इशारा कर रही है। लेकिन जाने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जीवन में कुछ भी बड़ा करना हो, कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना हो, तो सपने हमेशा उससे बड़े देखें, ताकि आप मेहनत पूरी तरीके से करें और आप जिस जगह पहुंचना चाहते हैं वहां समय से पहुंच पाएं। इसलिए मेहनत, लगन और ईमानदारी, ये तीनों चीज आपको हमेशा खुद के अंदर बनाए रखनी है और जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है, तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इन्हीं सारी बातों के साथ अब आपसे लेते हैं विदा, और अगली कड़ी में हम फिर से मिलेंगे नई रोचक जानकारी और तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे विज्ञान जगत, चर्चा थी एसी का उपयोग सावधानी से करें, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स तथा FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी ही देर में 4:35 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम साज सरगम। 5 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 5:02 पर युवा भाइयों को संबोधित कार्यक्रम युवाणी। चर्चा होगी आरंभिक कंपेयरिंग इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, युवाओं के लिए खेल का महत्व। प्रस्तुत करता होंगे गौरव कुमार पांडेय। 5:30 पर आप सुन सकेंगे श्रमिक लोक। चर्चा होगी भीषण गर्मी में श्रमिक अपनी सेहत का रखे ख्याल, हुनर का हाथ तरक्की के साथ अपने कौशल को पहचाने और आगे बढ़े। कार्यात्मक साक्षरता, कार्यस्थल पर सुरक्षा और प्रबंधन की शिक्षा, तनाव मुक्त और शांत मन के लिए योग। प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की। 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 6:02 का समय होगा किसान वाणी का। चर्चा होगी किसान क्रेडिट कार्ड। आज की बात होगी गर्मियों में पशु पक्षी की देखभाल एवं रोग प्रबंधन। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नंदिनी कुमार। भेंटकर्ता संजीव कुमार लाल, नई उम्र की नई फसल। प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की।

6:32 पर प्रसारण होगा हमारी दुनिया का। चर्चा होगी छोटा परिवार विकास का आधार, हिंदी वार्ता बच्चों को स्वावलंबी बनाए, वार्ताकार सुगंधा विहंगम, प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की। 7:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:11 पर जिले में आजकल आदिवासी अकड़ा का समय होगा। 7:15 पर चर्चा होगी नशे की लत से बचने के उपाय, जल संरक्षण का महत्व, प्रस्तुतकर्ता प्रदीप कुमार। 7:45 पर आप सुनेंगे सुर भारती, वार्ता आयुषो वेद आयुर्वेद, वार्ताकार होंगे डॉक्टर रामाशीष पांडे। 8:00 प्रसारण होगा फिल्म संगीत का। 8:10 पर विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण। 8:45 पर समाचार संध्या। 9:00 न्यूज़ @9

रात्रि के 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में समाचार, 9:30 पर कंट्री वाइड इनसाइट्स का समय होगा, 9:45 पर जो कि हमारे दिल्ली प्रसारण से प्रसारित किया जाएगा, सुनहरी यादें आप सुन सकेंगे रात्रि के 10:00, 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत, गिटार पर राग बागेश्री में अलाप और गत, मध्य लय की रचना झपताल में व द्रुत लय की रचना तीन ताल में निबद्ध होगी, कलाकार होंगे पंडित विश्वमोहन भट्ट। 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार और रात्रि 11:10 पर मीडियम वेव सभा समाप्त।

अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही क्षणों में। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का फिल्म संगीत का कार्यक्रम साज सरगम में। दोस्तों, आज की शाम को हम सुरमई बनाते हैं इन प्यारे प्यारे गीतों से। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आज मौसम ने बड़ा ही अच्छा करवट बदला। इस भीषण गर्मी में बड़ी राहत मिली हमें, तो चलिए एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साज सरगम। अगला गीत है फिल्म मिर्जापुर से, आवाज है रोमी की, गीत को लिखा है गिन्नी दीवान ने, सुरों से सजाया है पार्थ पारेख ने।

कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत है फिल्म गुरु से, जिसे गाया है A.R. रहमान, चिन्मयी, मुर्तुजा खान और कादिर खान ने। बोल है गुलजार के, धुन बनाई है A.R. रहमान ने।

0: इस गीत के साथ ही संपन्न होता है आज का कार्यक्रम साज सरगम। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आज नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी भाग लिया और विकास तथा जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में 18 जून को मतदान होगा। नाम वापसी के अंतिम दिन आज कोई भी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों झामुमो के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के बीच मुकाबला तय है। रांची के नगड़ी मौजा में प्रस्तावित रिम्स 2 के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने आज विरोध मार्च निकाला। ग्रामीणों की योजना मुख्यमंत्री आवास घेरने की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें मोराबादी में रोक दिया। राजधानी रांची समेत राज्यभर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई चल रही है। इसी कड़ी में देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक महिला समेत 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों के पास से 76 ग्राम से अधिक ब्राउन शुगर, 63,000 रूपये नकद और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। और मौसम विभाग के तात्कालिक पूर्वानुमान के मुताबिक रांची समेत 16 जिलों में अगले कुछ घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग।
1: ये आकाशवाणी रांची है। शाम के 5:02 और 20 सेकंड हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवाणी।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी, जहां हर दिन होती है नई बातें, नए विचार और ढेर सारी जानकारी। तो मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति
1: और मैं वैभवी।
0: आप सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कुछ ही मिनटों में हम करेंगे मनोरंजन, ज्ञान और प्रेरणा से भरी बातें, तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि शुरुआत हो चुकी है एक शानदार सफर की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले की, जो हर साल 11 जून को मनाया जाता है।
1: बिल्कुल, खेल हम बच्चों का अधिकार है। खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि सीखने, बढ़ने और स्वस्थ रहने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है।
0: बिल्कुल सही कहा वैभव आपने। आज के समय में बच्चे पढ़ाई और मोबाइल की दुनिया में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास खेलने का समय कम होता जा रहा है। ऐसे में इस दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है।
1: दोस्तों, खेल बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास में भी मदद करता है। जब बच्चे खेलते हैं तो उनकी सोचने और समझने की क्षमता, रचनात्मक और आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
0: खेल हमें अनुशासन भी सिखाता है, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो या कोई अन्य खेल। हर खेल के अपने नियम होते हैं और उन्हें मानकर ही खेला जाता है।
1: दोस्तों, खेलों से टीम भावना भी विकसित होती है। बच्चे मिलजुल कर काम करना, एक दूसरे का सहयोग करना और जीत हार को स्वीकार करने का भावना सीखते हैं।
0: दोस्तों, क्या आपको याद है कि बचपन में हम कितने तरह के खेल खेलते थे? गिल्ली डंडा, कबड्डी, खो खो, पकड़म पकड़ाई और ना जाने कितने खेल।
1: बिल्कुल, उन खेलों में न केवल आनंद था बल्कि स्वास्थ्य भी था। आज जरूरत है कि हम बच्चों को फिर से मैदान की ओर प्रेरित करें।
0: एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि खेल तनाव को कम करने में भी मदद करता है। जब हम खेलते हैं तो हमारा मन प्रसन्न रहता है और हम अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं।
1: सही कहा प्रीति, यही कारण है कि डॉक्टर और विशेषज्ञ भी रोजाना कुछ खेल कूद या शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करते हैं।
0: अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हर बच्चे को खेलने का अवसर मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो।
1: और यह जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं बल्कि परिवार, स्कूल और समाज की भी है कि बच्चों के लिए सुरक्षित और खेल अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराएं।
0: तो आइए इस अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि बच्चों को खेल के लिए प्रोत्साहित करेंगे और स्वयं भी अपने जीवन में खेल और शारीरिक गतिविधियों को स्थान देंगे।
1: दोस्तों, हम इस बारे में और भी बात करेंगे कि खेल हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों रखता है, लेकिन सुनते हैं इससे जुड़ा एक गाना।

0: दोस्तों, खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, विशेष रूप से युवाओं के लिए। खेल न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि स्वस्थ और सफल जीवन की आधारशिला भी है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। आज के समय में युवा पढ़ाई, प्रतियोगिता, परीक्षाओं और तकनीकी की दुनिया में काफी व्यस्त रहते हैं। ऐसे में खेल उनके लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में एक बेहतरीन माध्यम है।
0: सही कहा। नियमित रूप से खेल खेलने से शरीर मजबूत बनता है, मांसपेशियों में को विकास होता है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। खेल युवाओं को फिट और ऊर्जावान बनाए रखता है।
1: खेल का प्रभाव केवल शरीर पर नहीं बल्कि मन पर भी पड़ता है। खेल तनाव और चिंता को कम करने में मदद करते हैं। मैदान में बिताया गया समय मन को ताजगी और नई ऊर्जा देता है।
0: दोस्तों, खेल युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। जब कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है या किसी चुनौती का सामना करता है तो उसमें आत्मविश्वास और साहस का विकास होता है।
1: खेल हमें अनुशासन भी सिखाते हैं। समय पर अभ्यास करना, नियमों का पालन करना और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करना, ये सभी गुण जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में मदद करता है।
0: और खेल टीम भावना का भी विकास करते हैं। क्रिकेटर, फुटबॉल, हॉकी या कबड्डी जैसे खेलों में खिलाड़ी मिलकर काम करना और एक दूसरे का सहयोग करना सीखते हैं।
1: आज भारत के कई युवा खेलों में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उनकी सफलता यह संदेश देती है कि खेल केवल शौक नहीं बल्कि एक सम्मानजनक करियर भी बन सकता है।
0: बिल्कुल, खेल युवाओं को नशे और अन्य बुरी आदतों से दूर रखने में भी मदद करते हैं। जो युवा खेल कूद में सक्रिय रहते हैं वे अपने समय और ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग कर पाते हैं।
1: इसलिए हमें अपने दैनिक जीवन में खेलों को स्थान देना चाहिए, चाहे कोई भी खेल हो। रोज कुछ समय खेल कूद या व्यायाम के लिए अवश्य निकालना चाहिए क्योंकि स्वस्थ युवा ही एक मजबूत और विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं।
0: तो दोस्तों, खेलना जरूरी है। आप चाहे किसी भी उम्र में हो, अपने उम्र के हिसाब से खेल खेलें, अपने दिमाग का विकास करें और अपने आसपास के

0: वातावरण को भी स्वच्छ बनाए, इसके लिए हम खेलना ज़रूरी है। और अब हम बात करते हैं दोस्तों, जीवन में सीखना भी बेहद ज़रूरी है। हम खेल से भी सीखते हैं और कुछ ऐसी बातें जो दुनिया को रोचक बनाती है, हम उस बारे में भी बात करेंगे। तो इसीलिए हम आज आपके साथ लेकर आए हैं एक रोचक तथ्य का सेगमेंट, जिसमें हम बातें करेंगे कि हमारे दुनिया में कितनी अनोखी चीज़ें हैं जिससे हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं और हैरान हो जाते हैं।
1: इंसान और जिराफ की गर्दन में हड्डी की संख्या समान होती है, फर्क सिर्फ उनके आकार का होता है।
0: क्या आपको पता है हमारा दिल एक दिन में लगभग 1,00,000 बार धड़कता है और पूरे शरीर में 7,500 लीटर रक्त पंप करता है।
1: तितलियां अपने पैरों से स्वाद पहचानती है, यानी उन्हें खाने की चीज का स्वाद लेने के लिए जीभ की जरूरत नहीं पड़ती।
0: दोस्तों, दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात पेड़ 4,800 साल से भी अधिक पुराना है और सबसे रोचक बात यह है कि वो अभी भी जीवित है।
1: शार्क डायनासोर से भी पुरानी प्रजाति है, वे लगभग 40 करोड़ वर्षों से पृथ्वी पर मौजूद है।
0: दोस्तों, हंसने से शरीर की लगभग 17 मांसपेशियां सक्रिय होती हैं और तनाव जो है वो कम होता है, इसलिए कहते हैं हंसते रहना चाहिए जिससे हमें दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती।
1: तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जिन्होंने हमें यह एहसास दिलाया कि हमारी दुनिया कितनी अनोखी, रहस्यमयी और
0: आश्चर्यों से भरी है। तो दोस्तों, हम और भी सारी बातें करेंगे आपसे, लेकिन एक गाने के बाद।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, वक्त कभी रुकता नहीं, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाता है कुछ ऐसी कहानियां जो सदियों तक याद रखी जाती है।
4: किसी दिन एक साम्राज्य का जन्म होता है, तो किसी दिन कोई ऐसी खोज होती है जो दुनिया

0: बदल देती है। ऐसी ही इतिहास के पन्नों में दर्ज आज के दिन के विशेष घटनाओं के बारे में अब हम आपसे बात करेंगे।
1: आज ही के दिन 1866 में भारत में आगरा उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी।
0: 1770 में आज के ही दिन ब्रिटिश खोजकर्ता जेम्स कुक का जहाज ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ से टकरा गया था। यह घटना समुद्री खोज के इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जाती है।
1: 11 जून 1970 में भारत की पहली महिला टेनिस स्टार निरुपम माकंड ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय महिला टेनिस को एक पहचान दिलाई और आधुनिक युग में ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में खेलने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी।
0: 11 जून 1910 को महान समुद्री वैज्ञानिक जैक्स कुस्टो का जन्म हुआ था, जिन्होंने समुद्री दुनिया को लोगों के सामने लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हें स्कूबा डाइविंग का जनक भी कहा जाता है।
1: 1815 में जूलिया मार्गरेट कैमरून अंग्रेजी फोटोग्राफर का जन्म कोलकाता में हुआ था।
0: दोस्तों, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट ही रहे हैं तो क्यों ना हम आज की भी बात कर ले। तो अब हम आपसे बताएंगे करेंट अफेयर्स के बारे में। केंद्रा बैंक के पूर्व एमडी एवं सीईओ के सत्यनारायण राजू को प्रतिष्ठित एफई बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2026 बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए यह सम्मान प्रदान किया गया है।
1: एबी क्रिएटिव अवार्ड 2016 में हिंदी समाचार पत्र दैनिक जागरण के पब्लिशर ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया जाता है यह पुरस्कार।
0: यह पुरस्कार पत्रकारिता, नवाचार और पाठकों तथा प्रभावी पहुंच के लिए दिया जाता है। वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज लेखिका यांग सुंगजी को प्रदान किया गया। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ द्वारा एग्रीकल्चर मेडल से सम्मानित किया गया। तकनीकी और प्रशासन के क्षेत्र में पहल करते हुए उच्च न्यायालय की एफआई समिति ने न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपायुक्त हेतु उपयोग हेतु विनिमय 2026 का मसौदा तैयार किया है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रगति की 50वीं बैठक की अध्यक्षता कर विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। तो दोस्तों, ये थे करेंट अफेयर्स। अब हम जाने से पहले आपको बताएंगे कि खेल में अनुशासन का क्या महत्व है।
1: दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेल न केवल हमें स्वास्थ्य रखते हैं, बल्कि हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण गुण भी सिखाते हैं, जिनमें अनुशासन सबसे प्रमुख है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। किसी भी खेल में सफलता पाने के लिए खिलाड़ी को नियमित अभ्यास करना पड़ता है, समय पर मैदान में पहुंचना, कोच के निर्देशों का पालन करना और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना अनुशासन का पहला नियम होता है।
1: चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, कबड्डी हो, हर खेल के अपने नियम होते हैं। खिलाड़ियों को उन नियमों का पालन करना पड़ता है। यही आदत आगे चलकर जीवन में सभी काम आते हैं।
0: खेल हमें यह भी सिखाता है कि केवल प्रतिभा ही पर्याप्त नहीं है, यदि मेहनत और अनुशासन नहीं होगा तो सफलता प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है।
1: हम अक्सर देखते हैं कि सफल खिलाड़ी अपनी फिटनेस, खानपान और अभ्यास को लेकर बहुत अनुशासित होते हैं। यही अनुशासन उन्हें दूसरों को अलग बनाता है।
0: खेल में जीत और हार दोनों का सम्मान करना पड़ता है। हार मिलने पर निराश नहीं होते हैं, बल्कि मेहनत करके दूसरी बार जीत की ओर अग्रसर होते हैं।
1: खेल हमें धैर्य रखना और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना सिखाते हैं। खिलाड़ी जानते हैं कि निरंतर प्रयास और अनुशासन से ही अच्छे परिणाम मिलते हैं।
0: इसके अलावा खेल टीम भावना की भी विकसित करता है। एक टीम में हर खिलाड़ी को अपने निजी हित से ऊपर उठकर टीम के हित का काम करना पड़ता है,
1: और यह तभी संभव है जब टीम के सभी सदस्य अनुशासन हो अनुशासन टीम को मजबूत बनाता है और सफलता की ओर ले जाता है।
0: दोस्तों, आज के युवाओं के लिए खेल बहुत जरूरी है। खेल उन्हें समय का महत्व समझाता है और जीवन को संतुलित बनाने में मदद करता है।
1: जो युवा खेल से जुड़े रहते हैं उनमें आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और अनुशासन जैसे गुण स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं।
0: इसलिए हम अपने जीवन में खेलों का स्थान देना चाहिए और बच्चों तथा युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए,
1: क्योंकि खेल केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि व्यक्तित्व निर्माण की एक महत्वपूर्ण पाठशाला है। तो खेलते रहिए, सीखते रहिए और अनुशासित जीवन अपनाइए।
0: तो दोस्तों, हमारे पास और भी बातें थी आपके लिए, लेकिन आज हमारे जाने का समय हो चला है। तो मैं वैभवी
1: और मैं प्रीति,
0: हम दोनों को आप दीजिए इजाजत। हमारी ओर से आप सभी को नमस्कार।

ये आकाशवाणी रांची है, प्रस्तुत है कार्यक्रम श्रमिक लोक, और आज आपके साथ है योगेश्वर राम और महिमा गोल्डन बिलोंग।

0: बारिश की बूंदों और बिजली की कड़कड़ाहट के बीच मैं योगेश्वर आप सभी तमाम साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम श्रमिक लोक में। मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार। मेरे साथ मौजूद है महिमा। महिमा आपको भी नमस्कार।
1: नमस्कार योगेश्वर और सभी साथियों को भी मेरी ओर से नमस्कार। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों को पूरे जोश के साथ कर रहे होंगे और बारिश की जो बूंदे जिनके बारे में आपने बात किया उनका मजा भी ले रहे होंगे।
0: बिल्कुल सही कहा महिमा। रांची का मौसम तो पल पल में बदल जाता है, कभी तेज धूप पड़ती है तो कभी बारिश की बौछार। इस बदलते मौसम में आप सभी को अपना ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बार जो हमारे साथी है वो घर से निकलते हैं गर्मी के मौसम की तैयारी करते हुए, ध्यान में रखते हुए, लेकिन जब लौटते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और इस मौसम में तापमान और उमस में तेजी से उतार चढ़ाव होता है जिसके कारण बैक्टीरिया और वायरस तेजी से पनपते हैं। इसके लिए आप अपने आप को सुरक्षित रखें, साफ पानी पिए और पानी दिन भर में 3-4 लीटर तो जरूर ही पिए।
1: बिल्कुल। और इसके साथ नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ भी अच्छा विकल्प हो सकता है। आपको जैसी सुविधा होती है जो आपके पास में उपलब्ध होते हैं वैसे आप इसका इस्तेमाल जरूर से करें
0: और कोशिश करनी चाहिए कि ताजा बना हुआ खाना ही खाएं, बाहरी खाने से परहेज करें। बहुत बार हमारे जो श्रमिक साथी हैं बाहर का खाना बहुत जो है उनको बहुत ही आकर्षित करता है। अगर आपको अच्छा स्वाद चाहिए तो आकर्षण से तो बचना ही होगा।
1: आपने बहुत बड़ी बात कही कि आकर्षण से अगर बचेंगे तो हमारे साथी जो है उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए साथी इस मौसम में आप संतरा, नींबू, आंवला अपने डाइट में जरूर से शामिल करें और कोशिश करें कि घर में बना हुआ हर्बल काढ़ा का इस्तेमाल तो जरूर करें।
0: पता है महिमा, मैं भी अपने जीवन शैली में तुलसी, अदरक, काली मिर्च, गिलोय का काढ़ा शामिल करता ही रहता हूँ।
1: बहुत अच्छा कहा आपने, इसीलिए यही आपके स्वास्थ्य

0: राजन हल्दी वाला दूध भी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है, इसका भी समय समय पर साथियों आप सभी सेवन जरूर से करें।
1: और महिमा, जो हमारे श्रमिक साथी हैं उन्हें कपड़ों का चुनाव भी सोच समझ कर करना चाहिए। उमस से बचने के लिए ढीले और सूती कपड़े पहनना चाहिए, और अगर बारिश में भीग गए तो कपड़े भी तुरंत बदलना ही चाहिए।
0: बिल्कुल
1: साथियों, जब आप स्वस्थ रहेंगे तो अपना और अपने परिवार का विकास कर पाएंगे।
0: बिल्कुल, और साथियों स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ अच्छा खान पान पेय पदार्थ ही काफी नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी जीवन शैली भी बहुत जरूरी है।
1: और मैं समझ रहा हूँ कि आपका इशारा किस ओर है, आप योग को जीवन शैली में शामिल करने की बात कर रही हैं।
0: जी योगेश्वर, आपने बिल्कुल सही समझा, अच्छे स्वास्थ्य शांत मन के लिए योग बेहद ही जरूरी है।
1: श्रमिक साथी बहुत मेहनत करते हैं आप सभी, और बहुत ज़्यादा शारीरिक और मानसिक श्रम भी करते हैं। कई बार तो शरीर में दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है, कई बार तो उन्हें मानसिक दर्द से भी गुजरना पड़ता है। ऐसे समय में शारीरिक मजबूती और मन की शांति बहुत ही जरूरी है, जो सिर्फ योग से ही मिल सकता है।
0: नियमित योग करने से फेफड़ों और दिल की कार्य क्षमता बढ़ती है, जिससे हमारे साथी लंबे समय तक काम भी कर पाते हैं। सुचारू रूप से रक्त प्रवाह के लिए भी योग बहुत अच्छा माध्यम है।
1: और दिन भर की जो थकान है ना, उसे मिटाने के लिए योग अच्छा माध्यम है। पाचन क्रिया को ठीक करने का एक बेहतर उपाय है। कह सकते हैं कि हर एक दर्द से निजात दिलाने के लिए योग में बेहतर उपाय है। तो आइए योग के जो गुण है, उसकी जो विशेषता है, उसे हम जानते हैं योग प्रशिक्षक से।
0: साथियों अभी आप सुनेंगे एक भेंट वार्ता श्रमिकों के लिए योग का महत्व, और भेंट वार्ताकार है अमिता प्रियदर्शनी, और उनसे बातें करें हमारे साथ ही योगेश्वर राम।
2: जीवन में स्वस्थ रहना प्रथम प्राथमिकता है, वहीं स्वास्थ्य एक चुनौती भी है। जीवन में स्वस्थ रहने के लिए खान पान और योग का महत्वपूर्ण स्थान है। तो चलिए आज हम योग से संबंधित कुछ खास बातें करते हैं। हमारे बीच हैं योग प्रशिक्षक डॉक्टर अमिताभ प्रियदर्शी। अमिताभ जी, आपको मेरा नमस्कार।
3: नमस्कार योगेश जी।
2: आप एक योग प्रशिक्षक हैं, और योग आज के समय में हर किसी के लिए जरूरी हो गया है, स्वास्थ्य को बेहतर रहने के लिए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके दृष्टिकोण से योग का जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है।
3: योगेश जी, आप जानते हैं कि आज वर्तमान परिस्थितियों में हमारा जीवन कितना व्यस्त हो गया है,
2: जी।
3: और इस व्यस्तता में अपने आप को स्वस्थ रख पाना बहुत मुश्किल है। लोगों के पास फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, और समय है तो ज्ञान का अभाव है। इस कारण वे अपने शरीर को खान पान की दृष्टि से, कसरत और योगाभ्यास की दृष्टि से उतना सुडौल और सुस्थिर नहीं बना पाते हैं। योग में एक फायदा है योगेश जी, कि अगर आप अपने लिए 20 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट समय निकाल लें, तो आपको योग से शरीर को, मन को, तन को स्वस्थ रखने का बहुत बढ़िया साधन मिल जाता है।
2: बिल्कुल,
3: तो योग आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है शारीरिक और मानसिक शांति के लिए।
2: कुछ लोग ये कहते हैं कि योग तो स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, लेकिन योग करने का जो तकनीक है वो हमें पता नहीं है, हम सीखे कैसे।
3: योगेश जी, योग एक सनातन परंपरा है, 5000 साल पुरानी परंपरा है, या उससे भी पुराणों में, वेदों में इसका वर्णन मिलता है। जो प्रक्रिया है इसकी, वो सहज है, लोगों ने इसे कठिन बना लिया है या समझ लिया है। गीता में तो भगवान कृष्ण ने बहुत सहजता से कहा है कि योगस्थ कुरु कर्माणी संगत त्यक्ता धनंजय सिद्ध असिद्धयो समूह भूत्वा समत्वम योग युच्यते। अगर इसको समझेंगे तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि धनंजय, तुम आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि को में समान बुद्धि होकर योग में स्थित हो जाओ और अपने कर्तव्यों को करो। तो इस तरह से जो समत्व है, सिद्धि असिद्धि का भेद से ऊपर उठकर समत्व ही जो है वो योग है। अगर इनकी बात मान ले तो सिर्फ अपना कर्म हम एक नियम तरीके से करते रहे तो योग कहलाता है। अब रह गई बात शारीरिक और मानसिक शांति की योग से और इसकी प्रक्रिया की, तो कुछ आसन है, कुछ प्राणायाम है, ध्यान है, इन तीनों को मिला दें तो योग की एक

0: सुसंगति बनती है। तो कुछ प्रक्रियाएं हैं जिसको सीखनी जरूर पड़ती हैं, बिना उसके सीखे नहीं हो सकता। आप लिखना पढ़ना भी सीखते हैं, बस उसी तरह सहज है योग।
1: और इसकी जरूरी है किसी योग प्रशिक्षक के पास जाना और जो तकनीक है योग का उसे कुछ प्राप्त करना।
0: जी वैसे इतना भी जरूरी है।
1: अमिताभ जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि हमारा जो कार्यक्रम है वो श्रमिकों से जुड़ा हुआ है। श्रमिक जो है वो शारीरिक और मानसिक श्रम ज्यादा करते हैं, उनके लिए सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कौन सा योग बेहतर है।
0: योगेश जी, अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग बीमारियों के लिए, अलग अलग मानसिक स्थिति के लिए योग किए जाते हैं। और योग को ऐसे समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। योग को आसनों में बांटे, प्राणायाम में बांटे तो और ध्यान में बांटे तो हम समझ पाएंगे। श्रमिकों के लिए जो शारीरिक और मानसिक दोनों श्रम करते हैं, सुबह 4 बजे से 5 बजे से उनकी तैयारी होनी शुरू होती है और घर लौट करके 5 से 7 बजे तक वो कंटिन्यूअस लगातार व्यस्त रहते हैं, तो एक योग का समूह है जिनको हम लोग सूर्य नमस्कार कहते हैं। सूर्य नमस्कार में 12 योग प्रक्रियाओं का संयोग है, 12 इसमें स्टेप्स हैं। अगर इनको हम लोग करें, जैसे उसमें सूर्य नमस्कार को लोग समझते हैं कि कोई धार्मिक पक्ष है, चाहे किसी सनातन या विशेष धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। उसका नाम सूर्य नमस्कार दिया गया है क्योंकि सूर्योदय के बाद उसको किया जाता है, जिससे विटामिन डी मिलता है सूर्य को और शारीरिक स्थितियां बदलती हैं। तो सूर्य नमस्कार में पहला है प्राणायामासन, हस्त उत्तानासन जिसमें पीछे की ओर मुड़ते हैं, पाद हस्तासन जिसमें आगे की ओर मुड़ते हैं, अश्व संचालन एक पैर पीछे करके अपने शरीर को तान करके सीधे खड़े करते हैं, मतलब सुलाते हैं शरीर जमीन पर और सीधे ऊपर उठाते हैं वक्ष को, और पर्वतासन ये दोनों हाथों पैरों को समान भाव से उठा करके धरती पर रखते हैं और अपनी कमर को पूरी तरह से ऊपर की ओर उठाते हैं। इस तरह से इसमें 12 स्टेप्स हैं योगेश जी। अगर कोई इंसान इन 12 स्टेप्स को 10 बार कर ले तो आप समझ लें कि उसके योग की तमाम प्रक्रिया और उसके शारीरिक नीड जो जरूरत है शरीर की वो सारी पूरी हो जाती है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ सूर्य नमस्कार को करने से ही योग की सारी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, अगर इसकी हम संख्या बढ़ा दें तो।
1: इन योग से शारीरिक और मानसिक दोनों समस्याओं का बहुत हद तक हल निकाला जा सकता है।
0: जी जी योगेश जी, अगर हम सूर्य नमस्कार करते हैं, देखिए उसमें हम लोग शुरुआत करते हैं प्रणाम आसन से, हाथ को जोड़ करके और सूर्य के सामने खड़े रहते हैं। ये प्रणाम किसी को प्रणाम या देवता को प्रणाम करने का नहीं है, हम अपने आप को मानसिक रूप से उस शक्ति के साथ जोड़ने की एक प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं जो इस पूरी सत्ता को चलाता है। तो इसलिए इससे मानसिक शांति भी मिलेगी और आगे की जो क्रियाएं हैं, आगे के जो स्टेप्स हैं, उनसे शारीरिक स्थिरता भी प्राप्त होगी।
1: जी अमिताभ जी, आप देखते हैं कि हमारे श्रमिक जो हैं प्रायः कल कारखानों खदानों में काम करते हैं और इससे उन्हें श्वास संबंधी समस्याएं ज्यादा होने की संभावनाएं होती है, और आप भी कई क्षेत्रों में जाते हैं, श्रमिकों को देखते हैं कि किस तरह वो कार्य करते हैं और किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो दवाइयां तो अपनी जगह है ही और खान पान तो का ध्यान रखना आवश्यक है, लेकिन योग के माध्यम से अपनी समस्याओं का हल कर सके, जो खासकर श्वास संबंधी है, क्या कुछ खास उसके लिए स्टेप्स हैं?
0: योग की जो परिकल्पना है मैंने पहले ही बतलाया कि ये सिर्फ आसन नहीं है
1: जी,
0: ये आसन प्राणायाम और ध्यान का समूह है
1: जी।
0: तो हृदय संबंधी या फेफड़ों से संबंधित अगर कोई बीमारी है, परेशानी है, तो इसके लिए भी प्राणायाम अगर हम लोग करते हैं तो उसमें बहुत सफलता मिलती है लोगों को। आप आजकल सुने होंगे कि लोग कपालभाति कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, जब से योग भारत में पुनर्जीवित कह ले हम लोग हुआ है, तब से इसकी चाहत और जानकारी लोगों में बढ़ गई है
1: जी।
0: तो इस तरह करके प्राणायाम में कई सारे प्राणायाम है, जैसे सूर्यभेदी है, उज्जयी है, शीतकारी है, शीतली है, भस्त्रिका है, भ्रामरी है, मूर्छा है, इस तरह के कई सारी व्यवस्थाएं हैं। तो अगर कोई भी किसी को भी लंग्स संबंधित, फेफड़ों संबंधित परेशानी है तो वो पहले तो सूर्यभेदी प्राणायाम करे, अनुलोम विलोम करे और कपालभाति। कपालभाति वास्तव में क्या है कि ये प्राणायाम नहीं है, ये जो है शुद्धि प्रक्रिया है। अगर कोई इंसान कपालभाति करता है, उसकी शारीरिक शुद्धि हो जाती है। तो इसलिए दो प्राणायाम

0: अगर वो याद रहे अनुलोम विलोम और कपाल भाती, सिर्फ इन दोनों को करने से ही हृदय और फेफड़े ये काफी मजबूत हो जाते हैं।
1: अमिताभ जी एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कुछ योग में ऐसा भी नियम है कि कुछ लोगों के लिए या कुछ ऐसी परिस्थिति में ये निषेध है, ये नहीं करना चाहिए?
0: एकदम, कई सारी इसमें वर्जनाएं हैं। कुछ ऐसे आसन हैं जिनको हम लोग की बहुत उच्च स्तर के आसन मानते हैं, जिनमें शरीर की सारी हड्डियां और शरीर को पूरी तरह से मोड़ लिया जाता है। ऐसे आसन जो बीमार है उनको नहीं करना है। अब जैसे मैंने कहा कि आपको सूर्यभेदी और चंद्रभेदी प्राणायाम है ये, तो अगर ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं वो सूर्यभेदी प्राणायाम करने लगेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: और लो बीपी वाले हैं तो अगर वो चंद्रभेदी प्राणायाम करने लगे तो उनका बीपी और लो हो जाएगा। तो इसलिए यह जरूरी है कि देख लिया, या फिर जो लोग कमर के रीढ़ की हड्डी से परेशान हैं, अगर वो पश्चिमोत्तानासन या सर्वांगासन जैसे बीमार जैसे आसन करने लगे तो उनकी रीढ़ की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए कभी भी कोई भी योग करे तो निश्चित देखरेख में करे और चिकित्सकों की सलाह के साथ करे, ऐसे नहीं करे कोई भी।
1: अमिताभ जी से आज वर्तमान परिस्थिति में एक आम समस्या बन गई है, वो है डायबिटीज की समस्या, और श्रमिक भी इससे अछूते नहीं रह गए हैं, तो क्या उन्हें इस स्थिति में योग करना चाहिए, और करना चाहिए तो कौन सा बेहतर उनके लिए होगा?
0: एकदम, बहुत अच्छा प्रश्न किया है योगेश जी आपने। डायबिटीज या मधुमेह अभी वो भारत की नहीं पूरे विश्व की समस्या बन गई है यह बीमारी, और इसमें रक्त में या पेशाब में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, वो उस उतनी ऊर्जा शरीर में खपत नहीं हो पाती है, और ये ऊर्जा या ये जो शर्करा है ये पेशाब और रक्त में समाहित हो जाता है। इसको दूर करने के लिए दो प्राणायाम बहुत बढ़िया है। एक तो है वज्रासन, इसमें दोनों पैरों को पीछे की ओर मोड़ करके और रीढ़ को सीधी करके गर्दन ऊंची समानांतर करके एक दिशा में टिका दी जाती है नजरों को, और 10 मिनट तक इसी प्रयास को थोड़े थोड़े देर में किया जाता है। और दूसरा आसन है वो है मंडुकासन, इसमें भी वही प्रक्रिया है, दोनों पैरों को पीछे मोड़ ली जाती है, हथेलियों को की मुट्ठी बना ली जाती है और उसे नाभि के दोनों ओर दोनों हथेलियों को रख करके अपनी कमर को धीरे धीरे आगे की ओर झुका करके धरती से स्पर्श कराने की कोशिश की जाती है। तो अगर आप मंडुकासन का प्रयोग कर रहे हैं और वज्रासन का प्रयोग, वज्रासन से खाना सहज पचता है, मंडुकासन से आपके लीवर पैंक्रियाज और या इस तरह की जितनी पाचन ग्रंथियां हैं या छोटी आंत बड़ी आंत, इन पर दबाव पड़ता है और इससे इनकी मालिश होती है और ये एक्टिव हो जाती हैं, इनमें इनकी जो कार्य प्रणाली है वो पुनः संचालित होने लगती है और पूरे वेग से होती है। इससे क्या होगा कि जब अंग सहज काम करेंगे तो जो पाचन क्रिया है वो सहज हो जाएगी, और जब पाचन क्रिया सहज हो जाएगी तो मधुमेह जैसी बीमारियां नहीं रह पाएंगी। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप वज्रासन खाने के बाद करें। वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जिसे खाने के बाद किया जा सकता है, बाकी सारे आसनों में वर्जना है कि आप खाने के बाद नहीं कर सकते हैं, 4 से 5 घंटे के बाद करना है, पेट खाली रहने के बाद ही करना है, लेकिन आप वज्रासन करें और मंडुकासन करें तो इससे आपके मधुमेह की समस्या दूर रहेगी।
1: यदि हम योग से जुड़ चुके हैं और योग को नियमित कर रहे हैं तो क्या कुछ खान पान पर भी ध्यान रखना जरूरी है क्या?
0: आज के समय में खान पान की जो परिस्थितियां हैं आप जानते हैं कि मैं एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि भ्रष्ट हो गई है खान पान की, कोई उसकी न तो व्यवस्था है न नियम है। इस कारण सारी बीमारियों की जड़ में हमारा खान पान, हम लोग आयुर्वेद में या योग में कहते हैं कि आज आहार और विहार ये बदल गया है, तो जब आहार बदल जाएगा तो पाचन क्रिया बदलेगी, पाचन क्रिया बदलेगी तो आपके शारीरिक अवस्थाएं बदलने लगेंगी आपकी। तो खान पान में क्या है, हम कहते हैं कि प्रकृति से जो सहज जैसा है वैसा ही खाओ, तो इससे क्या होता है कि हमारा शरीर उसको सहज स्वीकार कर लेता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, अगर आप फल खाएंगे, कच्चे फलों को खाएंगे तो उसके पचने में बहुत सहजता होती है, ये प्रकृति से सीधे प्राप्त हुआ। अब हम धान की बात करते हैं, धान हमने लिया उसे प्रोसेस किया, चावल बनाया और उसे फिर पकाया फिर खाया, तो ये क्या हुआ कि वो जो सहज चावल था उसे हमने प्रोसेस कर लिया, अब उसको पेट सहज स्वीकार नहीं करता है, तो उसको पचने में फलों की तुलना में या

0: जो सीधे आप खाते हैं, फल खाते हैं, कच्ची सब्जियां खाते हैं, उनकी तुलना में ज्यादा समय लगता है। तो मेरा कहना है कि जो सीधे प्रकृति से मिलता हो उस आहार का प्रयोग करें, और तेल और आज के समय में रिफाइंड का प्रयोग होता है, चीनी का प्रयोग होता है, इनका धीरे धीरे इनका त्याग करें और इसकी जगह घी और गुड़ का प्रयोग करें जो प्राकृतिक अवस्था में हमें सहज मिलते हैं। इनमें कोई केमिकल नहीं होता है और पचने में शरीर इनको सहज स्वीकार कर लेता है।
1: श्री अमिताभ जी, आपने योग से संबंधित बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: बहुत ही अच्छी जानकारी दी अमिता प्रियदर्शनी ने कि श्रमिकों के लिए योग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आप जो वार्ता सुन रहे थे, भेंट वार्ता, उनके भेंटकर्ता योगेश्वर जो हमारे साथी भी है। साथियों, आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं, तो अपने आप को जानना भी जरूरी है।
3: बिल्कुल सही कहा महिमा। जब आप अपने हुनर को और कौशल को पहचानेंगे तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। आज का समय हुनर और कौशल का है। बहुत सारे साथियों ने तो अपने हुनर और कौशल के कारण देश विदेश में काफी नाम भी कमाया है।
2: बिल्कुल सही कहा योगेश्वर आपने। मेरी पड़ोस में एक दीदी है जो पहले छोटा मोटा काम करती थी। जब से उसने अपने हुनर को पहचाना और अपने कपड़ों में कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी का काम शुरू की और उसे वो बेचने लगी, तो उसकी आमदनी भी बहुत अच्छी होने लगी और वो अपने परिवार का भरण पोषण करने लगी, लोग उसको जानने लगे और वो अलग अलग जगह पर एग्जीबिशन लगाती है। उसका नाम सिर्फ रांची में नहीं, झारखंड में और भारत में भी हो गया है।
3: बिल्कुल, काम से पहचान तो जरूर मिलती है और हुनर ने तरक्की का रास्ता काफी आसान बना दिया है। इसीलिए तो भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों हुनर और कौशल को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाओं को संचालित कर रहे हैं, स्टार्टअप के लिए वित्तीय रूप से सहायता कर रहे हैं और उन्हें एक मंच भी प्रदान कर रहे हैं।
2: बहुत सही कहा आपने। साथियों, आप जब आपके पास हुनर होगा, कौशल होगा, तो सरकार भी आपके साथ जरूर होगी और हम अपने साथियों से कहना चाहेंगे कि अपने हुनर को पहचान कर आगे बढ़ने चाहिए और आप कोशिश करें कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो हमेशा आप आत्मनिर्भर, आप मजबूती के साथ बढ़िए। और हम कह सकते हैं कि मजदूर से मालिक बनने का जो रास्ता होता है, जो सफर होता है, ये हुनर और कौशल से ही संभव हो पाता है।
3: और आज कल तो श्रमिकों की ही मांग है, इसके साथ ही जो है बोनस और कई जो है अन्य लाभ भी उनको लिए तैयार किए जा रहे हैं। और कई बार लोग का कहना होता है कि काम नहीं मिल रहा है, या इसलिए लोग कहते हैं कि वे अपने हुनर को तराशते नहीं हैं। जब हमारे साथी अपने हुनर और कौशल को तराशेंगे तो काम मिलना बहुत ही आसान हो जाएगा।
2: बिल्कुल सही कहा योगेश्वर आपने। हुनर और कौशल से जो हमारे साथी है उन्हें काम भी मिलेगा, वे आत्मनिर्भर भी बनेंगे, तरक्की भी करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो हमारे साथी है वो दूसरों को रोजगार भी दे पाएंगे।
3: बिल्कुल, और बातें बहुत सारी हो गई, और भी बातें हम करेंगे। सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: लेकिन महिमा, हमारे जो श्रमिक साथी हैं वो तरक्की भी करना चाहते हैं और जीवन में आगे भी बढ़ना चाहते हैं। ये तरक्की करने, आगे बढ़ने के लिए जो है कार्यात्मक जो साक्षरता है वो भी बहुत जरूरी है। जब आपको प्रबंधन की जानकारी होगी तब आप तेजी से आगे भी बढ़ पाएंगे।
1: बिल्कुल, और कई बार कार्यात्मक साक्षरता आपको आपके हक और अधिकार की भी जानकारी देते हैं, जिससे आप अपने लिए स्टैंड भी ले पाते हैं।
0: और कार्यस्थल पर बहुत सारे चुनौतियां जो आते हैं उस पर जो है कार्यात्मक साक्षरता ही आपको मजबूत बनाती है। सुरक्षा निर्देशों को समझना, मशीनों का संचालन, वेतन का हिसाब किताब सहित दूसरी अन्य जानकारियां जो है वो भी उनसे उनको मिलती है और इसको समझने की जो है सीख भी मिलती है।
1: बिल्कुल, और साथियों, आप इस देश और अपने कार्यस्थल के मजबूत स्तंभ है, इसलिए कोशिश करें कि केवल स्कूली शिक्षा, महाविद्यालय की शिक्षा, तकनीकी शिक्षा ही केवल ना लें। कार्यस्थल की जो कार्यात्मक शिक्षा होती है वो भी बहुत जरूरी है और उसे भी लेना चाहिए। और हम अपने साथियों से कहना चाहेंगे कि जानकारियां तो बहुत सारी है, पर अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो अपनी दोस्त महिमा,
0: और ईश्वर को दे इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने जमशेदपुर में आज प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और निर्देशन में पिछले 12 वर्षों में देश के हर क्षेत्र और हर वर्ग का अभूतपूर्व विकास हुआ है। श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत झारखंड समेत देश भर के 11 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रूपये की सहायता राशि दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत रांची में नेशनल टास्क फोर्स की बैठक से टीबी मुक्त भारत पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि जमीनी स्तर पर कार्य करने वालों की मदद से वर्ष 2029 तक टीबी मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में 18 जून को मतदान होगा। नाम वापसी के अंतिम दिन आज कोई भी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों झामुमो के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के बीच मुकाबला तय है। सिमडेगा जिले के कोलेबेरा थाना क्षेत्र में आज एक 4-पहिया वाहन के पेड़ से टकरा जाने से उस पर सवार पति पत्नी और 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स लाया जा रहा है। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज दोपहर बाद तेज हवाओं और गरज के साथ मूसलाधार बारिश हुई। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कई इलाकों में सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: वैज्ञानिक खेती करू, उपज के बढ़ाओ।
1: किसान वाणी कार्यक्रम सुनवैया सब भाई बहन मन के मनीष भाई भट्ट से जोहार और करण भाई राउर के हूँ जोहार।
0: जोहार जोहार मनीष भाई और मोर बट से हूँ सब किसान मन के जोहार। आशा कर ला कि सब कर हाल चाल एकदम नगदे नगद होगी, है नी?
1: एकदम
0: बताई देवे खोजी रही कार्यक्रम का प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। बताओ कैसा हाल समाचार है?
1: मोर हाल समाचार तो नगदे नगद है और उम्मीद करत है कि किसान भाई बहन मन हूँ नगदे नगद हो गए, अपन खेती बाड़ी कर काम एकदम मस्त करत हो गए।
0: एकदम सही बात है रौरे, मस्त करी रख, मस्त रहू, व्यस्त रहू, स्वस्थ रहूगा।
1: एकदम व्यस्त रहू कहती रौरे, तो व्यस्त तब रह जब हमरे के कोनो काम धाम रही का।
0: सही बात है, कोनो काम धाम भेटाए के लिए तो देखो कोनो प्रयास हो करे पड़े। अगर रौरे कहब कि का करब खेती बाड़ी कर पाछे तो कोनो कामे न की। अरे काम तो बहुत आ है लेकिन काम करे खोजत ही कि नहीं तो सोचे पड़ी।
1: एकदम खेती बाड़ी कर पाछे हूँ ऐसा ढेर काम है जेके कर के हमरे अपन जे खेती बाड़ी कर काम है और बढ़िया कर सकीला।
0: सही कहती काले के देखो ने कचिया तो तनी कमे रहेला तो पूंजी लगाए पड़ेला कोनो दूसर काम में, है ना?
1: हाँ हाँ।
0: तो उकर ले सरकार बड़ से बहुत एकन योजना चलाल जाएला, तो उकरे में गोटे है किसान क्रेडिट कार्ड योजना।
1: एकदम देखो भाई बहन मन, जे किसान क्रेडिट कार्ड योजना है सरकार बड़ से चलाल गल एगो जाए को लाएगो योजना है और इकर किसान क्रेडिट कार्ड बनाई के हमरे मन जे है कृषि पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़ल जे ऋण हो सकेला के ले सकेला और अपन खेती बाड़ी और मत्स्य पालन और जे काम है पशुपालन करूँ के और बढ़िया से कर सकेला।
0: एकदम सुपट कहली काले की पूंजी रही तो हमरे दोसर काम के करे के लिए सोच सकेला, आगे बढ़ सकेला। और देखो बुद्धि ओहे बड़ा काम करे जखन घर में कचिया रहे खाए पियर ले भरपूर भरल रहे, नहीं तो बुद्धि काम नहीं करे, है नहीं? तो बुद्धि बढ़िया एकन काम करे तो कर ले हमरे मन के तनी मनी लोन ले कर हूँ कोशिश करे का है, नहीं तो बहुत कहे नहीं लोन के ले भी तो लोन लेके देखू कचिया के बढ़िया होकर उपयोग करब तो थोड़ी डूबी।
1: और कचिया अगर हमरे जग और एक से डबल हुआ थे तो लोन लेवे में का दिक्कत है का?
0: सही बात है, कचिया लेवा थी बैंक से लोन तो के घुराए दो और एक समय से घुराओ और जे काम ले लेगा थी वही काम में लगाओ। और काले की किसान क्रेडिट कार्ड बैंक से बनेला तो भीड़ कर बैंक में जाओ और ये कार्ड के बनवाओ और अपन जिंदगी के खुशहाल बनाओ।
1: और देखो भाई बहन मन, जे किसान क्रेडिट कार्ड है कर माध्यम से 3 लाख तक कर जो ऋण है वो 7% कर दर लागू हो 3 लाख तक
0: मतलब ले 7% हाँ, पड़ेला
1: लेकिन सरकार हमरे से 1.5% लेवेला।
0: हाँ मतलब ठीक से 1.5% कह दे।
1: हाँ, हाँ।
0: तो इतना कम ब्याज में अगर देवल जाते तो एक लाभ लेवे चाहिए। और देखो ने हमरे तो कहते कोनो और काम करे लेकिन खेत बाँची खेत बढ़िया रही तबे तो कोनो काम करब।
1: एकदम
0: तो खेत कर जे स्वास्थ्य है उके हम बढ़िया बनाई के राखे के काले कि आजकल हमने चला में नहीं माइंड लगाई के ओके ऐसा कर दे ही कि उपज हो बे नहीं करेल, है नहीं?
1: एकदम। और हमरे मन देखो खेत मन में खेत कर बात कहती तो कि एक एक फसल के बार बार लगाई के उकर खेत कर जो क्षमता उपजाऊ क्षमता उके घटाई देव थी।
0: देखो फसल चक्कर अपनाए के चाहिए, है नहीं? फसल चक्कर अपना ले बहुत एकन जे खेती ले चाहिए उकर जे पोषक तत्व तो उसन भेटा रहे चलते फसल के बदल बदल के करे के चाहिए। डाँड वाला विशेष कर खेत में, है नहीं? दैन वाला खेत में तो हमरे मन धाने खेती करेला लेकिन डाँड वाला खेत में हमरे मन के तनिक तो बदल बदल के खेती करे के चाहिए। गोबर माइन मन के देते रहे के चाहिए।
1: और देखो इसे इके ध्यान में रख के भारत सरकार जो है 1 जून से 30 जून तक ये खेत बचाओ अभियान चलाते और इके भारत सरकार का कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय चलाते।
0: ये कार्यक्रम के जो हमारे मन के जो प्रायोजक हैं वो एक विभाग चलाते हैं।
1: हाँ, हाँ,
0: और देखो किसान मन ले भारत सरकार बड़ से बहुत एक योजना कहते तो उकरे में देखो एगो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाल जाती कर 12 साल पूरा होते हैं।
1: हाँ, हाँ,
0: और सरकार हमरे कर देश कर किसान मन कर जे तनी मनी कोचिया कर कमी रहे के पूरा करे कर कोशिश कर रहे साल में 6,000 रुपया देवल जाएला और 3 किस्त में देवल जाए 2,000 2,000 करके

0: बोल जाए, जेकर से कि किसान में तनिक पूंजी अपन जैसे के उपयोग में लाइन के तनिक खेती में लगावे तो और आगे बढ़िया बढ़ब। यही उद्देश्य से योजना के चलाल जाइ है और 2026 तक देखो जे भारत सरकार वर्षा है से 22 किस्त दे ही कर माध्यम से देखो एखन तक जे कचिया बटाल जाइ है वह 4,28,00,000 रुपया एखन तक देवल जाइ है और गोटा देश कर करीब करीब का कहब 10 करोड़ जैसन परिवार इकर से लाभान्वित होवत है, मतलब उतना परिवार के लाभ भेटाई चुके और 25% जो महिला मन है इकर लाभ ले हैं तो बहुत बढ़िया बात है।
1: बहुत बढ़िया बात है ये तो।
0: और आज तो बाप रे बाप लागत रहे कि मोर को पानी धाई कि नहीं धाई में एक बजे डेढ़ बजे आसपास से सन पानी रांची में अलग की बाप रे बाप एकदम रूंध दे रहे है नी
1: एकदम हम तेज हवा कर संगे पानी गिरत रहे।
0: तो मैं खन रोद तो है ये है रोद नहीं जाई है तनी मनी एखनो रोद कर मौसम में पशु पक्षी मन का तनी बढ़िया देखभाल करे कर दरकार है मनीष भाई
1: एकदम।
0: तो आई चलू तो एक बारे जानी ला कि रोद कर दिन में जे हमारे कर मवेशी मना है और जे चरे चिड़िया मन जहा है जे कि मुर्गी मन के गेड़े मन के हम पोसिल नहीं तो कर खातिर देखभाल करे के चाहिए और रोग हो जाए तो का करे के चाहिए कर बारे में बताते हैं डॉक्टर नंदिनी कुमारी और इनकर से भेंट कर हैं कृष्ण जीवन पौराणिक।
1: चलो तब सुन ले वीला।
2: किसान साथियों नमस्कार। गर्मी के मौसम में पशुओं की खास देखभाल की बहुत जरूरत होती है क्योंकि गर्म मौसम में उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। तेज धूप गर्मी और लू लगने से पशु बीमार हो सकते हैं या उनकी मौत भी हो सकती है, इसलिए उन्हें धूप पानी से बचाना, पानी की व्यवस्था करना और संतुलित आहार देना जरूरी है। तेज गर्मी और लू लगने से पशुओं में हीट स्ट्रोक हो सकता है, इससे भी इनकी जान चली जाती है। गर्मी के कारण दुधारू पशुओं के शरीर का तापमान बढ़ने से उनकी दूध उत्पादन में भी कमी आ जाती है, पशु में तरह तरह के रोगों का खतरा भी हो जाता है। तो यही सब विषयों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, खासकर गर्मी के मौसम में पशुओं की देखभाल कैसे करें और अगर इस मौसम में हमारे पशु रोगग्रस्त हो जाएं तो इसका उपचार कैसे करें। और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदिनी कुमारी, सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक पशु प्रजनन एवं आनुवांशिकी विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची। नंदिनी मैडम आपको नमस्कार है।
3: जी जोहार, सभी पशुपालकों को, किसान भाई बहनों को, श्रोतागणों को मेरा जोहार।
2: आप हमारे किसान भाइयों, हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि गर्मियों में पशु पक्षियों की खास देखभाल की जरूरत आज के समय में क्यों है?
3: जी, ये जो आपने आज के समय में यह जोड़ा, यह खुद में ही एक बहुत बड़ा मीनिंग रखता है, बहुत बढ़िया सवाल है। बढ़ते हुए टेम्परेचर यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम सभी परेशान हैं, तो फिर पशु पक्षी जो कि मूक हैं, अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उनके लिए व्यथित होना तो लाजमी है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पशु पक्षी इंसान सभी के स्वास्थ्य पर असर पड़ा है तथा बढ़ते तापमान में रोग से बचने हेतु सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है क्योंकि हीट स्ट्रेस की वजह से कम भोजन, कम बढ़ोतरी, कम उत्पादन, बढ़ते मृत्यु दर इत्यादि देखने को मिलती है। सही प्रबंधन द्वारा इन रिस्क को कम किया जा सकता है। कुछ और बात जो इस संदर्भ में मैं श्रोतागणों से कहना चाहूंगी वह ये है कि हीट स्ट्रेस से तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता बाधित होती है जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एसिड बेस असंतुलन और दमनकारी प्रतिरक्षा जैसे शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इससे फीड सेवन यानी वो जो भोजन कर सकता है, विकास दर, मुर्गियों में अंडा उत्पादन, दुधारू पशुओं में दूध उत्पादन काफी कम हो सकता है। गंभीर मामलों में हीट स्ट्रोक, जिसे अभी आपने बोला था कि हीट स्ट्रोक से मृत्यु भी हो जाती है, मृत्यु दर में वृद्धि हो सकती है, खासकर युवा व कमजोर जानवरों तथा छौनों में। पशुधन और पोल्ट्री के शरीर का तापमान तो हम जानते हैं कि मनुष्यों की तुलना में अधिक होता है जिससे वो हीट स्ट्रेस के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। गर्मी के कारण तनाव प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर होना भी लाजमी है, जिससे जानवर बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं।
2: जी, गर्मियों के मौसम में अपने शरीर के तापमान को सामान्य रखने के लिए पशुओं की शारीरिक क्रियाओं में क्या बदलाव देखने को मिल सकती है?
3: जी श्रोतागण, इस पर थोड़ा जानना प्रकाश डालना मेरे लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि यह समझना जरूरी है कि आखिर क्या होता है कि गर्मी में हमारा शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है या कुछ भी अनटुवर्ड रिएक्शन मैंने बोला वो होता है तो क्यों होता है, आखिर गर्मी में पशु पक्षी इंसान परेशान क्यों होते हैं। शरीर को एडजस्ट करने के लिए, बढ़ते तापमान में अपने आप को सही रखने के लिए चेंजेस करने पड़ते हैं, बदलाव लाने पड़ते हैं, उनके शारीरिक क्रियाओं में बदलाव आता है। बढ़ते तापमान के साथ पशुओं की जो श्वास गति है वह बढ़ जाती है। आप देखते होंगे कि वो तेज सांस लेते हैं, हांफने लगते हैं, जिसे पैंटिंग भी कहते हैं, तथा सलाइवेशन यानी मुंह से लार गिरने लगता है। पशुओं के रक्त के पीएच में वृद्धि और शरीर में बाइकार्बोनेट आयन की कमी देखी जाती है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर का जो बनावट, संरचना और ब्लड का पीएच वो बहुत जरूरी होता है सारे एंजाइम्स के एक्ट करने के लिए, सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। चूंकि पशु दाना खाना कम कर देते हैं, जो हमारे श्रोतागण, हमारे किसान भाई बहनों ने देखा होगा, कई बार इस मसले के साथ वो पशु चिकित्सकों को भी पूछते हैं कि आखिर हम क्या करें, हमारे जानवरों ने दाना खाना कम कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले बस एक बात मैं कहना चाहूंगी कि संतुलित आहार और मिनरल मिक्सचर जरूर हर मौसम में हर एक जानवर को दे, उससे ये जो कमी है वो हमेशा बची रहेगी, उसका असर कम होगा। पुनः उसी सवाल पर आते हुए, चूंकि पशु दाना खाना कम कर देते हैं, ड्राई मैटर यानी शुष्क पदार्थ के कम सेवन से दुग्ध उत्पादन घट जाता है। रूमिनल एनिमल जैसे गाय बकरियों के गट हेल्थ, गुड बैक्टीरिया और ह्यूमन मोटिलिटी पर प्रभाव पड़ सकता है। अर्थात साधारण भाषा में समझें तो पेट के अच्छे जीवाणु कम हो जाते हैं, पेट में भोजन की गति कम हो जाती है और इस वजह से पाचन तंत्र पर असर होना जैसे दुष्प्रभाव देखने को मिलने लगते हैं।
2: हमारे किसान भाई जैसे मुर्गी, बत्तख इत्यादि पक्षियों का भी पालन करते हैं
3: जी,
2: तो इन पक्षियों में गर्मी के क्या असर हो सकता है?
3: जो जानवर होते हैं या पक्षी होते हैं, उनका बॉडी टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से अधिक होता है। पक्षियों का जो शरीर होता है उसके ऊपर पंख भी होता है, कि अगर हम लोगों को स्वेटर पहना दिया जाए गर्मी में तो हमें कितनी मुश्किल होगी। तो बिल्कुल उसी तरह से पक्षियों को ऐसे ही कोप अप करने में थोड़ी परेशानी होती है मुर्गियों को। और जो सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल कारण समझ सकेंगे, जैसे हमारे शरीर से पसीना निकलता है, स्वेट ग्लैंड, जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने में थर्मो रेगुलेटरी बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है वो, जो कि मुर्गियों एवं अन्य पक्षियों में स्वेट ग्लैंड यानी पसीने की ग्रंथि नहीं होती है, अतः उन्हें गर्मी में खास देखभाल की जरूरत पड़ती है। पंखों की वजह से शरीर का तापमान और बढ़ जाता है। होता यह है कि जो पक्षी या जो मुर्गी पालते हैं, बत्तख, हम सोचते हैं बत्तख पालन, हम सोचते हैं कि इन्हें सिर्फ ठंड में बचाने की जरूरत है क्योंकि इसमें सांस से संबंधित समस्या अधिक होती है, ऐसा नहीं है, गर्मियों में भी उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पंखों की वजह से शरीर का तापमान, जैसा मैंने कहा, बढ़ा रहता है। शरीर के अधिक तापमान की वजह वसा की उपस्थिति भी एक कही जा सकती है। उच्च आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, जैसे जो रूम बंद बंद होता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोतागण किसान भाई बहन समझे। थोड़े से पैसों की बचत के लिए कभी भी गंदे जगह या ज्यादा आर्द्रता नमी वाले जगह या कम खिड़की दरवाजे वाले जगह या कम हवादार जगह पर किसी भी पशु पक्षी को ना रखें, क्योंकि उच्च आर्द्रता वाले वातावरण के साथ मिलकर यह स्थिति एक चुनौती बन सकती है और इससे पक्षी असुरक्षित हो सकते हैं, तरह तरह के बीमारियां हो सकती हैं। शोध के अनुसार पोल्ट्री 22 से 28 डिग्री सेल्सियस आसपास के पर्यावरण तापमान में सबसे अधिक आरामदायक होता है। गर्मी में पक्षियों में व्यावहारिक न्यूरो एंडोक्राइन और शारीरिक परिवर्तन भी देखे जा सकते हैं। आंतरिक रूप से पक्षी प्रोटीन पाचक और अवशोषण में कमी, चयापचय संबंधी विकारों में वृद्धि, बीमारी के प्रसार की संभावना में वृद्धि और प्रजनन संबंधी समस्याओं का अनुभव कर सकता है। तो ओवरऑल सारे सिस्टम पे अफेक्ट मिलता है।
2: जी मैडम, जैसा कि आपने कहा
3: जी
2: कि पक्षियों में गर्मी का खासा असर दिखता है
3: जी,
2: तो हमारे किसान जो मुर्गी पालन करते हैं
3: जी,
2: वह ग्रीष्मकालीन पोल्ट्री प्रबंधन कैसे करें?
3: जी बहुत बढ़िया सवाल है आपका, किसान भाई बहनों के मद्देनजर। ग्रीष्मकालीन पोल्ट्री प्रबंधन को मैं चार भाग में बांटकर अपने श्रोतागणों के समक्ष रखना चाहूंगी। जल प्रबंधन, आवास प्रबंधन, चारा प्रबंधन, सामान्य प्रबंधन। जल प्रबंधन की बात करें तो 3 से 4 गुना बढ़ते पानी के खपत को देखते हुए गर्मियों में मुर्गियों को 3 से 4 गुना कम से कम स्वच्छ पानी पानी देने की आवश्यकता होती है, वरना एडलिब यानी वो जितना पानी पिए उन्हें स्वच्छ पानी देते रहना चाहिए। ये सब

0: बहुत फायदेमंद होता है जो मुर्गियों के या बत्तखों के फीड में डाल सकते हैं। उच्च ऊर्जा वाले आहार का प्रयोग करिए ताकि वो कम भी भोजन खाए तो उसकी ऊर्जा की उपयोगिता पूरी हो सके, उसका वजन ना घटे। कैल्शियम और फॉस्फोरस के स्तर को बढ़ाने से जो अंडा उत्पादन है उस पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अंडा में कैल्शियम का बहुत बड़ा योगदान होता है।
1: जी, हमारे किसान भाई दुधारू पशुओं का भी पालन करते हैं।
0: जी,
1: तो उनको ये आप बताएं कि डेयरी पशुओं जैसे गाय भैंस इत्यादि को गर्मी के मौसम में उनका प्रबंधन कैसे?
0: जी, अब हमारे पास प्राकृतिक पानी के स्रोत उस तरह के मौजूद नहीं हैं जैसा पहले हुआ करते थे। लोग गांव घर में ऐसे भी गाय भैंस को छोड़ देते थे तो नदी पानी तालाब इस पर वो आश्रित होकर उनके पानियों की जरूरत पूरी हो सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसीलिए स्वच्छ और पानी पीने लायक पानी का प्रॉपर बंदोबस्त होना चाहिए। अन्य जो है मुख्य लक्षण जो बढ़ते तापमान में हीट स्ट्रेस या हीट स्ट्रोक में देखने को मिलते हैं उसका ख्याल रखना चाहिए। जैसे अगर मुंह खोलकर जानवर सांस ले रहा हो या हांफ रहा हो या सांस तेज हो रहा हो या पशु की सक्रियता कम हो या दुग्ध उत्पादन कम हो तो इन सब को देखते हुए हमें सचेत होकर पशु चिकित्सक को बुलाना चाहिए। इसके अलावे इन जनरल साधारणतः सामान्यतया दुधारू पशुओं को छायादार स्थान पर रखें। बहुत आवश्यक है कि घर हवादार एवं आर्द्रता रहित हो। गाय और भैंस को थोड़ा और दूर दूर रखिए। नॉर्मल फ्लोर स्पेस से जो नॉर्मल है वो तो देना ही चाहिए, बल्कि गर्मी में और भी थोड़ा फ्लोर स्पेस प्रॉपर दें। सूर्य की सीधी किरणों से बचाना चाहिए। चारे हेतु सुबह कम धूप में निकालें तथा शाम को सूर्य की किरणें जब तक तेज हो तब तक ना निकालें। संतुलित एवं पोषक आहार सुनिश्चित करना चाहिए। इसके लिए समुचित प्रोटीन ऊर्जा खनिज तत्व तथा विटामिन का समावेश रहना चाहिए। बासी भोजन तेलीय भोजन पार्टी का बचा हुआ खाना बिल्कुल नहीं देना चाहिए।
2: तो एखन हमरे मन सुनत रही डॉक्टर नंदिनी कुमारी से कि ये रौद कर मौसम में मवेशी मन कर कैसन देखभाल करे के चाहिए और रोग हो जाए तो का करे के चाहिए है नहीं?
3: एकदम
2: गोठियर हैं कृष्ण जीवन पौराणिक। तो मनीष भाई देखो, आप तो लागत है कि मानसून आइए जाते हैं, हालांकि जेठे महीना है अब। हाँ, हाँ। दू को जेठा है कहते हैं।
3: हाँ, हाँ।
2: तो आषाढ़ महीना तो नहीं चढ़े।
3: नहीं,
2: चलो नहीं है तेरे पानी उनी वाला गोटे गीत सुन ले तो
3: सुनाओ एगो गीत बढ़िया एकदम नागपुरी में।
2: यशोदा देवी और संगीत मन कर गावले।

0: तो कैसे लगल गीत?
1: गीत एकदम नगद रहे, बड़ा बेस रहे।
0: हाँ, हालांकि खाना 4 महीना नहीं चढ़ी, लेकिन देखो आज मुके लागलक नहीं, इतना ठनकत, इतना घिड़कत है बदरी, और बाप रे बाप बिजली लौकत है, लागलक बाप रे बाप, 4 महीना आ गेलक
1: सेले छाइट के लाइन रही गीत
0: तो
1: का।
0: सोचली आज गीत के सुनाई देवी, यशोदा देवी संगे हुनकर गावल रे नागपुरी में। तो चलो अब किसान बढ़ जाइला
1: एकदम। तो चलो आज हमरे एगो जैविक खेती करे वाला किसान जे हैं कमल कुजूर से करल गोइट के सुनीला, इनकर से रावरे गोठिया ही।
0: चलो सुन ले तब।
1: चलो तब।
2: नमस्कार, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
3: मैं कमल कुजोर रांची जिला के बुढ़ो प्रखंड से हूँ। सबसे पहले मैं पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद कृषि पर आया, कृषि कार्य करते करते मैं एनजीओ से जुड़ा, और कृषि कार्य करने के बाद हमने लोगों को कृषि के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया, और प्रेरित करने के बाद लोगों को जो है कृषि के बारे में अभी जगह जगह पर बताने का काम कर रहे हैं, जिसमें जैविक खेती के बारे में हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, और जो परंपरागत कृषि है उस पर विशेष जोर दे रहे हैं।
2: कमल भाई, आपने कहा कि आप बुढ़मू प्रखंड के अंतर्गत गांव से आते हैं और आप जैविक खेती पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य की बात है, साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण को लेकर भी ये सब चीज की जा रही है। तो जैविक खेती के लिए आप किसानों को किस तरह से प्रेरित कर रहे हैं, क्या किसानों का रुझान दिखता है?
3: जैविक खेती के प्रति लोगों का रुझान बिल्कुल है, लेकिन ये चीज जो है किसान लोग अभी तुरंत ही इसको शुरुआत करने में थोड़ा सा दुविधा में है, क्योंकि जैविक खेती एक हम लोग करेंगे, जैविक खाद का इस्तेमाल करेंगे तो पता नहीं खेती होगा कि नहीं होगा, इसलिए वो लोग दुविधा में है। लेकिन हम लोग ये प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग जैविक खाद का प्रयोग कीजिए, और अगर फसल का उत्पादन थोड़ा कम होने जैसा लगता है तो आप हल्का मात्रा में रासायनिक खाद का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग लोगों को प्रेरित कर रहे हैं।
2: जैविक खेती कहें तो अगर हम किसानों को समझाने की बात करें तो क्या है, किस तरह की खेती को जैविक खेती कहेंगे?
3: जैविक खेती जिसमें रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करने होता है, उसमें केवल गोबर और जितना हरा घास फूस कूड़ा कचरा कटुआ जितना भी है, पुआल का चूर्ण सूखा पत्ता, ये सबको मिला के खाद जो तैयार किया जाता है उसे जैविक खाद कहा जाता है, और वही सब चीज को हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
2: तो आपने कहा कि हम जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, तो इसमें क्या वर्मी कंपोस्ट है, केचुआ खाद है और भी कुछ है?
3: वर्मी कंपोस्ट में जैसे हम लोग पीट तैयार करवा रहे हैं किसान लोग का ही सहयोग से, वे लोग पीट तैयार करते हैं, उसके बाद 15 से महीना दिन का जो पुराना गोबर है उसको हम लोग पीट में डलवाते हैं, उसके बाद हम लोग केचुआ उपलब्ध कराते हैं और उसमें केचुआ छोड़ते हैं। केचुआ छोड़ने के बाद उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरह से उसको निकालना है, कैसे उसका देख रेख करना है, उसके बारे में बताते हैं। साथ ही साथ जैसे बरसात के दिन में जितने भी हरा घास फूस है उसको जमा करके गड्ढा खोद के उसको कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए बारे भी हम लोग बता रहे हैं।
2: ये बताएं कि अगर कोई किसान इसको बनाना चाहे तो वो केचुआ कहाँ से लेगा, और थोड़ा बनाने की विधि को थोड़ा बता दें।
3: बनाने की विधि जो है, जैसे पीट तैयार हो गया और वही 15 दिन का पुराना गोबर जिसमें कि पानी का अंश कम हो, और कच्चा या ताज़ा गोबर देने से गोबर में गर्मी आ जाती है, गर्मी आ जाने से केचुआ मर जाता है, इसलिए 15 दिन का जो पुराना गोबर 15 से महीना दिन का वो गोबर को उसमें दिया जाता है। उसके बाद उस गोबर में जितना भी छोटा मोटा पुआल का चूर्ण घास का टुकड़ा सूखा पत्ता ये सबको मिला दिया जाता है, और खाने का जो सामान है जैसे बीन का छिलका, पपाया का छिलका, पालक का छिलका, या मान के चलिए फूलगोभी या बंद गोभी का पत्ता, ये सबको गोबर खाद में मिलाया जाता है, और जिसको कि आसानी से केचुआ खा सके, और केचुआ की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाता है तो 45 दिन में केचुआ खाद तैयार हो जाता है।
2: ये बताएं कि आप

0: ने कहा कि 45 दिन में केचुआ खाद तैयार हो जाता है। एक किसान अगर अपने खेत के लिए, मान लिया उसके पास 5 एकड़ खेत है और उसके लिए उसको पूरा करना है वर्मी कंपोस्ट के लिए, तो कितना पिट बनाना होगा?
1: 1 एकड़ में खेती करने के लिए पिट का आकार बड़ा करना होगा, कम से कम मान के चलिए 8 फीट बनाना होगा और बड़ा साइज का बनाना होगा
0: 1 एकड़ के लिए।
1: 1 एकड़ के लिए
0: ये केचुआ कहाँ से वो लेंगे? ऐसा ही तो जो खेत में मिलता है वो केचुआ तो नहीं डाला जाता है कि डाला जाता है?
1: केचुआ जो है उन्नत किस्म का केचुआ है, ये रामकृष्ण मिशन आश्रम जो है मुराबादी में, वहाँ से लिया जा सकता है, या तो अनगड़ा में उसका फार्म है रामकृष्ण मिशन का, वहाँ से मिलता है। और वो केचुआ जो है 50 पैसा से 60 पैसा प्रति पीस के हिसाब से मिलता है। ये दो प्रकार का होता है, जो टीडा पोटीडा कहा जाता है केचुआ का नाम। केचुआ को रखने के लिए लाल किस्म की एक छोटी चिट्टी होती है, वो चिट्टी उसका बड़ा दुश्मन है, इसलिए चिट्टी उसमें केचुआ पीट में प्रवेश ना करे, नहीं तो अगर प्रवेश कर जाएगी चिट्टी तो केचुआ को पकड़ के ले जाता है चिट्टी। तो उसके लिए जो केचुआ पीट बनता है, तो पीट का किनारे किनारे भाग में थोड़ा सा जो गड्ढा किया जाता है उसमें पानी रखा जाता है, ताकि उस पानी से पार होके चींटी ना जा सके केचुआ पीट में।
0: प्रशिक्षण लेना कितना जरूरी है, और अगर जरूरी है इसको बनाने के लिए प्रशिक्षण लेना आवश्यक है, तो हमारे किसान भाई कहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं?
1: केचुआ खाद बनाने के लिए अगर प्रशिक्षण लेना है तो कोई भी NGO के लोग, NGO से संपर्क करना होगा, और यह तो रामकृष्ण मिशन जो मुराबादी में है वहाँ ट्रेनिंग होता है।
0: आप कहीं लिए थे प्रशिक्षण?
1: हम तो ट्रेनिंग लिए हैं, प्रशिक्षण NGO के माध्यम से ही लिए हैं।
0: कमल जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि जैविक खेती आज की जरूरत बन गई है, और हमारे स्वास्थ्य को देखकर अगर हम जैविक खेती को आगे बढ़े तो बहुत अच्छी बात है। कई तरह की नई बीमारियां आ रही हैं, इससे भी हम बच सकते हैं, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो कुछ काम कर पाएंगे। अंत में किसान भाइयों को क्या सलाह देंगे, क्योंकि बहुत से किसान अभी भी रासायनिक खाद से हट नहीं पा रहे हैं, उनका कहना है कि खेती तो होबे नहीं करेला, होता ही नहीं है, तो क्या करें, देना जरूरी है, ऐसे किसानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: सबसे पहले हम लोग जैविक खाद के बारे जब बताते हैं तो लोगों को रासायनिक खाद से होने वाली खराबी के बारे में लोगों को बताते हैं। रासायनिक खाद से कैसा कैसा किस किस प्रकार की बीमारी मनुष्य को पकड़ रहा है इसके बारे में हम लोग बताते हैं। जैसे पहले जमाने में जैविक खाद से खेती करते थे लोग, गोबर खाद से खेती करते थे, उस समय बीमारी बहुत कम होती थी, लोगों में बीमारी बहुत कम होती थी और फसल में भी बीमारी बहुत कम होता था। रासायनिक खाद से होने वाली बीमारी के बारे में बताते हैं तो लोग डर जाते हैं, और सही में कहते हैं कि जैविक खाद का इस्तेमाल आप करने से ही हम लोग का लाइफ बढ़ सकता है, हम लोग बीमारी से बच सकते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: इस तरह से वे लोग प्रोत्साहित होकर शुरू कर रहे हैं किसान लोग।
0: कमल जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आशा करते हैं हमारे किसान भाई अवश्य जैविक खेती की ओर ध्यान देंगे, और जैविक जो खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, उसका भी निर्माण करेंगे, और जो अपने घास फूस है उससे भी कंपोस्ट बनाकर खेत को दे सकते हैं, और थोड़ा बहुत जो आपने कहा कि 2 बैल रखते हैं तो उसका गोबर को भी देंगे, तो मुझे लगता है मिला जुला कर उनका खेती अच्छा ही होगा। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
2: तो भाई बहन मन, एखन हमरे मन जैविक खेती करे वाला किसान कमल कुजूर से करल भेंट के सुनत रही, इनकर से रौरे गोठियाई रही भाई।
3: तो देखो, हमरे मन के जैविक खेती बतने की घूरे के चाहिए, काले की कर से बहुत फायदा है, और आज कल तो बहुत किसान मन घूर बो करते हैं।
2: हाँ हाँ।
3: मनीष भाई, एक संगे देखो, किसान वाणी कार्यक्रम कर बेरा यह जग सिरा थे, तो बताई देखो जिला ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार,
2: और प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लालकर।

0: मिलजुल के रहो, सुखे ने के रहो।
1: हमारी दुनिया कार्यक्रम सुनुया सब भाई बहन मन के एक धाव फिर से मनीष भाई बट से जोहार और करण भाई राउर के हूँ जोहार।
0: जोहार जोहार मनीष भाई और हमार बट से हूँ सब सुनुए मन के जोहार। और बताओ तब कैसन हाल समाचार है, रौद कर दिन चलत है, हालांकि पानी अलग तो आज तो कैलो पानी आई रही आई जो पानी अलग
1: एकदम कल जो पानी आलक और आज जो पानी गिरलक एक मौसम तो तनी ठंड लागत है, अब तो ठंड ठंड लागत है का कहत है।
0: एकदम कल तो मैं भींज जाई रहूं, बाप रे लुड़ लुड़ लुड़ एकदम
1: कांपत रही
0: सब लुड़ लुड़ा हो गेल तो नहीं कांपबो उतना पानी में, आज के कर पानी भींजब तब नहीं जानब
1: तो पूछ कर रहा था आई के लग जैसे बुझात रहे का
0: पूछ कर राइत कहली तो ओहो कहानी के पढ़ ले तो बाप रे कैसन कांपत रहे नहीं ओकर जो मुख्य पात्र है से पूछ कर कहानी में
1: एकदम।
0: तो देखो मौसम तो बदला थे और देखो एखन दो तीन दिन कर पाछे तक मौसम विभाग कहते कि मानसून झारखंड में ढुक जाए, तो देखो पानी बदरी करते करते मानसून आइए जाए है नहीं
1: एकदम।
0: तो खेती बाड़ी कर काम के डाण मन कर जो खेत मन ऐसे मन के
1: जोत के निपटाई देवे के चाहिए।
0: हाँ सही बात है, बहुत एकन तो लाग जाइए कांदा उंदा मन तो लागिए जाइए है
1: नहीं।
0: और देखो नहीं लेकिन का कहब कतनों कमाप कचिया पूर्वे नहीं करे कोनो कोनो धाम और होवे ला के छुआ पोता बेसी आए तो कचिया कहाँ पूरी नहीं
1: एकदम। सिले छोट परिवार रखे के काले की छोट परिवार हम लेकर विकास कर आधार है।
0: और छोट परिवार रहले देखो कचिया कमाते तो छुआ मन में बढ़िया खर्चा कर सकेला, मन कर जे पौष्टिक आहार है जेकर में पोषण भरपूर है उसन खियाई सकेला, उमन कर लुगा फटा बढ़िया दे सकेला, बढ़िया बढ़िया जो शिक्षा है बढ़िया स्कूल कॉलेज मन में हमरे पढ़वाई सकेला है नहीं। जे कोनो काम करे खोजत है छुआ तो पूंजी हो दे सकेला
1: एकदम, मन कर सब जे ख्वाब है जे इच्छा है जे खाए पिए के सब के पूरा कर सकेला, पढ़े के लिखे सब के।
0: हाँ तो एक से कहा है कि घर आगे बढ़े लेकिन कहा है ला कि कोनो कोनो धाम माय बाप कर ऐसा इच्छा रहेला कि छुआ पुता बेसी रह बेसी काम आब। हाँ अरे तुमन के शिक्षा नहीं देव ज्ञान नहीं देव तो फिर कैसे होगी है नहीं, तो ज्ञान देवे के हो तो बहुत जरूरी है। एगो कहावत कैसन है कि ज्ञान लेवे के चाहिए कैसन एगो कहावत है नहीं। मतलब जाए तो साधु कर नहीं पूछे के चाहिए कर से ज्ञान ले लो है नहीं
1: एकदम।
0: तलवार कर मोल नहीं करे के चाहिए म्यान किसने रखे के चाहिए, तो कहे का मतलब ज्ञान अगर देव उमन की शिक्षा देव बढ़िया तो डहर बढ़िया धरब
1: एकदम।
0: से चलते बैठो ध्यान देवे कर जरूरत है काले कि कचिया बहुत जरूरी है जिंदगी में और बढ़िया कोनो काम करे के लिए हमारे मन के कचिया कर दरकार पड़ेला, लेकिन बेसी छुआ रह तो खाए खे पी खे में सिराई जाए और उमन कर बढ़िया शिक्षा नहीं होगी तो फिर उमन आगे बढ़ पाए कैसे,
1: और उमन के लुगा फुटा हूँ बढ़िया नहीं भेटाई तो उमन के हूँ कैसन लागी कि माए बाप मन खाली जन्माई के छोड़ दे हैं।
0: हाँ तैसा नहीं करेगा है जन्माई के छोड़ दे, उमन कर शिक्षा कर लालन पालन कर जो जिम्मेदारी है बढ़िया लेवे के चाहिए। आकाशवाणी रांची से है हमारे कार्यक्रम से बहुत पहले गोटे के रेडियो में नाटक में सुन रहो तीन कौड़ी साहू जी कर में रोल कर रहे हैं मुख्य भूमिका में रहे मुखिया रहे और पात्र कर अति रहे, तो उनकर नहीं 12-13 गो छुआ तो एगो छुआ गिर गेल गाड़ी से पते नहीं चला थे कि छुआ कौन जो गिर लग का हो लग है और मन होने वो दे फिर वहाँ घाक बड़ से घूर ना घर में तो गिनत है का एगो छुआ के मुड़ी के सुन सुन करके गिनत तो हम मन गिन के नहीं सकते।
1: अरे इसने हो रहे एकदम, एगो बाप गेलक बाल कटवाए के लिए छुआ मन कर केस कटवाए के लिए तो एगो छुआ छूट गेलक और छुआ दिन भर बैठल बैठल रह गेलक पते नहीं बाप के एगो छुआ छूट गेलक
0: तो ईसन नहीं करे का है हमरे मन के
1: बगरा छुआ रहले बाप मन के ध्याने नहीं रहल नहीं कि मोर इतना इतना छुआ है तो एगो छुआ हेराइयो गेलक तो नहीं पता चलल नहीं,
0: मतलब ध्यानों नहीं रखें छुआ मन कर कई गो छुआ है तो आप मैं जो कहते और कम छुआ रह तो मन कर परवरिश बढ़िया हुई ध्यान बढ़िया दे बहे है नहीं। तो गोठियाते रह कि कोनो गीत मन सुनब
1: एकदम गीत सुनब जरूर है, तो चलो खोरठा लोक गीत सुनीला शिवनंदन पांडे गरीब और संगी मन कर गावल।
0: हाँ।

0: तो एखन हमरे मन श्री नंदन पांडे गरीब और संगे मन से खोरठा में बढ़िया कन गीत सुनत रही। सही बात है, छोट परिवार रही तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, खेती बाड़ी कर जे लेके ताना तानी मारा मारी वाले होनी होगी, है नहीं
1: एकदम।
0: और देखो मनीष भाई कि छुआ मन के छोटे से उमन के ने अपन गोड़ में ठंडा के लिए सिखाए चाहिए। छुआ मन के कहीं ना छुआ हके कहते कहते छुआ को एकदम बैठ जाए, फिर ना जिम्मेदारी बुझेल ना कोनो करेल, और अपन गोड़ में पाछे ठढ़ा के लिए कितना मुश्किल हो जाए उमन के। नौकरी तो सबके नहीं भेटाई, प्राइवेट नौकरी हूँ सबके नहीं भेटाई, सरकारी हूँ नहीं भेटाई, तो कोनो कोनो काम तो अपने से करे पड़ी नहीं
1: एकदम। तो बच्चुआ मन के एकदम अपन गोड़ में ठढ़ाए के लिए।

0: हम छुआ रखे को जरूरी है
1: हाँ, और उमन के स्वावलंबी बनाए कर आदत हूँ डलवाए के छोटी सी।
0: एकदम। तो चलो छुआ मन के हमरे कातिर स्वावलंबी बनाई सके ला, एकर बारे में एगो वार्ता सुनीला। वार्ताकार हैं सुगंधा विहंगम।
1: चलो तब।
2: हम अपने बच्चों को सारी खुशियाँ देना चाहते हैं क्योंकि हम में से बहुतों ने बहुत सादा बचपन बिताया। हमारे अभिभावक के पास विकल्प सीमित थे, इसीलिए हम अपने बच्चों को उन चीज़ों से वंचित नहीं रखना चाहते जो हमें उपलब्ध नहीं थी। लेकिन हम में से कई अभिभावक अपने बच्चों के प्रति इतना अधिक स्नेह रखते हैं कि वे बच्चों में घर कर रही बुरी आदतों को नज़रअंदाज कर देते हैं और जो उन्हें स्वावलंबी नहीं बनाते। यह जरूरी है कि आप बच्चों को समय समय पर यह एहसास होने दें कि वे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन्हें अपने नियंत्रण से मुक्त कर देने के परिणाम प्रतिकूल हो सकते हैं। बच्चों पर आपके नियंत्रण का अर्थ यह है कि आप उनके लिए सीमाओं का निर्धारण करें, उन्हें यह समझाएं कि उन्हें किन हदों को कभी पार नहीं करना है। इसके लिए यह जरूरी है कि आप उन्हें कुछ जिम्मेदारियां सौंपें और अभिभावक होने के नाते उनका मार्गदर्शन करें। आजकल अधिकांश घरों में माता पिता कामकाजी होते हैं, इसीलिए वे बच्चों का पर्याप्त समय न दे पाने के कारण उन्हें सुख सुविधा और पॉकेट मनी देकर अपने अपराध बोध को कम करते रहते हैं। ऐसा करते समय वे यह भूल जाते हैं कि पैसा एक साधन मात्र है और इसे साध्य नहीं बनना चाहिए। यदि आप स्वयं पर इस नीति का पालन करेंगे तो आपके बच्चे भी इसका महत्व समझेंगे। जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए स्वयं कार्य करना बहुत जरूरी है। हर जिम्मेदार व्यक्ति को स्वावलंबी बनना पड़ता है। अपने बच्चों को यह बात बताकर आप उन्हें उनके भावी जीवन की सफलता में सहायक हो सकते हैं। हो सकता है कि आप उन्हें किसी भी ऐसे काम से बचाना चाहते हो जो कठिन हो या जिसमें बहुत परिश्रम लगता हो, लेकिन उन्हें कोई भी काम ना सौंप कर आप उन्हें आलसी ही बना देंगे। आपके बच्चों को ये बताना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि समय की क्या अहमियत है। उनके जीवन में उनमें ये आदत शुरू से ही डालने की कोशिश करें कि वो अपना काम किस प्रकार से समय पर करें। इसकी शुरुआत उनमें आप छोटे छोटे कामों जैसे समय पर सोना, उठना, पढ़ाई करना, खेलना, कूदना आदि उनमें ये आदत डालने की। वो अपना काम समय पर नहीं करेंगे तो जो समय बीत गया वो वापस नहीं आएगा और वो पीछे रह जाएंगे। उनको कई ऐसे प्रेरणादायक किस्से और कहानियां सुनाएं जिससे वे समय की कीमत को समझ सकें। बच्चों को बचपन से ही आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें। इसकी शुरुआत उनके छोटे छोटे कामों से करें। उनको ये सिखाएं कि वो आगे रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों को स्वयं ही करें, जैसे कि स्कूल जाने के लिए समय पर बिना किसी के जगाए उठ जाना और स्कूल के लिए तैयार हो जाना, अपना स्कूल बैग तैयार करना, अपना सभी काम समय पर स्वयं करना। उन्हें ये भी सिखाएं कि घर के बाकी सदस्यों के भी छोटे छोटे कामों में उसकी मदद करें। आज का जो दौर चल रहा है उसमें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को सही और गलत में अंतर को बताया जाए। उनको ये भली भांति समझना चाहिए कि कभी भी किसी गलत राह पर चलकर कोई काम नहीं करना चाहिए, वरना उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। किसी भी मंजिल को पाने के लिए सही राह ही चुनना चाहिए। सही राह से में मुश्किलें जरूर होती हैं और समय भी लगता है, लेकिन सही राह पर चलकर मिली सफलता आपकी अपनी होती है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता, और गलत राह पर चलकर कम समय में मिली सफलता का कोई मोल नहीं होता और वो आपके पास कब तक टिकी रहेगी कोई पता नहीं। इसीलिए आपके जीवन में हमेशा सही राह पर चलकर काम को करना सिखाएं। बच्चों में ये आदत जरूर डालें कि वे झूठ न बोलें। उनमें ये विश्वास बनाएं कि आप हर हाल में उसके साथ हो। अगर उसने कोई गलती हो भी गई है तो आप उसे सुधारने में उसकी मदद करेंगे, लेकिन झूठ बोलकर वो अपनी गलतियों को छिपा कर कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं और उसका परिणाम क्या हो सकता है इस बात का एहसास उन्हें जरूर कराएं। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनमें ये आदत बनाएं कि वे स्वयं ही की गई गलतियों को किसी और के सर पर डालने से अच्छा उसे स्वयं स्वीकार की करें कि ये गलती उनसे हुई है।

0: साथ ही बच्चों में मेहनत के गुण शुरू कर देने चाहिए। पहले इसकी शुरुआत छोटे छोटे कामों से करनी चाहिए। उनको समय समय पर ये बताते रहना चाहिए कि वो जितना मेहनत करेंगे सफलता उनके उतने ही करीब आएगी, और किसी भी काम को करने से वो जी नहीं चुराएंगे। जितने ही हो कड़ी मेहनत करेंगे उतने ही वो स्वावलंबी बनेंगे और सफलता उनके कदम चूमेगी। बच्चों को दिखावे की जिंदगी से दूर रखें। उनको समय समय पर यह सिखाते रहें कि उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है, ना कि बाहर की दुनिया की ये चकाचौंध के पीछे भागना, क्योंकि दिखावे की चमक धमक सिर्फ चार दिन की चांदनी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे अगर आपसे चार चीजों की फरमाइश करते हैं तो आप उनमें से उनकी जरूरत को पूरा करने हुए एक दो फरमाइशों को टालना भी सीखें, क्योंकि अगर आप उनकी हर फरमाइशों को पूरा करेंगे तो जिद्दी हो जाएंगे और उनमें किसी भी चीज या बात को लेकर समझौता करने वाले गुण नहीं आएंगे।
1: सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
4: तो चलो तनिक बेरा बाई छे तो गोटे गीत सुन लेविला है ने।
5: चलो तब नागपुरी लोकगीत सुन लेविला रूना देवी और संगी मनकर गावत।
4: चलो।

0: तो एखन हमारे मन रूना देवर संगे मन कर गावल नागपुरी गीत सुनत रही, बहुत बढ़िया लागत रहे। लेकिन देखो बेरा के देख के काम करे पड़ेला, तो हमारी दुनिया कार्यक्रम कर बेरा तो यह जग सिरा थे।
1: तो कार्यक्रम
0: में रौरे मन अपन जीव जहान कर ख्याल रखू, बढ़िया रहू और हमरे के विदा देव। तो रौर मनक रेडियो संगीकरण भाई और
1: मनीष भाई के देव विदा।
0: जोहार, जोहार।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में विकसित राष्ट्र के लिए सामूहिक प्रयास पर दिया बल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से सहयोग की जताई अपेक्षा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने जमशेदपुर में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कहा, केंद्र से राज्य को मिल रहा पर्याप्त आर्थिक सहयोग। राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत रांची में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू। स्वास्थ्य मंत्री ने टीबी मुक्त झारखंड पर दिया जोर। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में प्री मॉनसून बारिश से गर्मी से राहत। पड़ोसी राज्य बिहार में मॉनसून की दस्तक, राज्य में 2-3 दिनों में करेगा प्रवेश। और श्रीलंका दौरे के लिए अंडर-19 भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा। झारखंड की कुमारी पलक का चयन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आज नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की बैठक में झारखंड को केवल खनिज उत्पादक राज्य नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब और नॉलेज इकोनॉमी के रूप में विकसित करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, कृषि, खेल और डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में राज्य सरकार की पहलों की जानकारी देते हुए केंद्र से विभिन्न परियोजनाओं और संस्थानों के लिए सहयोग की मांग की। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन की बाकी राशि जारी करने, कोयला कंपनियों के बकाया भुगतान, मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति तथा भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं के सरलीकरण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड के संसाधनों को मानव पूंजी से जोड़कर राज्य को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भागीदार बनाया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने जमशेदपुर में आज प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और निर्देशन में राज्य को पर्याप्त केंद्रीय सहायता राशि दी जा रही है। श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत झारखंड समेत देश भर के 11 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रूपये की सहायता राशि दी जा रही है।
1: 81 करोड़ों को केंद्र द्वारा यहाँ पर राशन भेजा जाता है, क्रियान्वयन करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। आज 7 करोड़ लोगों को 5 करोड़ से अधिक की राशि आयुष्मान कार्ड से लोगों को सुविधा दिया जा रहा है। अगर गरीब कल्याण की बात करें तो सरकार ने जन धन योजना के माध्यम से 58 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए हैं।
0: स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत रांची में नेशनल टास्क फोर्स की बैठक से टीबी मुक्त भारत पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि जमीनी स्तर पर कार्य करने वालों की मदद से वर्ष 2029 तक टीबी मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा।
2: टीबी कैसे दूर करें इस राज्य से, क्योंकि झारखंड में अभी तक लगभग 6,000 से अधिक पेशेंट हैं हमारे। तो मैंने तमाम जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्रियों से मैंने आग्रह किया है कि आपके गांव में भी यदि कोई पेशेंट है तो उनको आप लोग चिन्हित करें। हम लोग मुफ्त में टीबी का इलाज करते हैं, 1,000 रुपये।

0: हम लोग हर मंथ रात जो भी चलाते हैं उनको देते हैं, जहाँ तक कि हम लोग ने एक फ्रेंड जो बीमारी टीवी ठीक हो जाता है तो वैसे मरीज को हम लोग गांव में भेजते हैं। तो आप प्रसार करो कि कहाँ पे आपका पेशेंट है, ये बीमारी जो है लाइलाज बीमारी है, इसे घबराना नहीं है। और भारत सरकार ने कहा था कि 2025 में टीवी मुक्त करेंगे, लेकिन 2025 हुआ नहीं, हम लोग 2029 में हम झारखंड को टीवी मुक्त झारखंड हम बनाएंगे।
1: राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में आगामी 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन परिणाम जारी होंगे। नाम वापसी के अंतिम दिन आज किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन वापस नहीं लिया। अब झारखंड में दो सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए झामुमो के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के बीच मुकाबला तय है। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले मतदाताओं की मैपिंग प्रक्रिया 15 जून तक जारी रहेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अब तक राज्य के 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। 23 मई को अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित होने के बाद 14 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपनी मैपिंग कराई। श्री कुमार ने अनमैप्ड मतदाताओं से जल्द मैपिंग प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्य के 3 प्रतिष्ठित लोक कलाकारों को संयुक्त रूप से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। इन कलाकारों में बूटन देवी, सोमवारी देवी और सरायकेला खरसावां के छऊ मुखौटा शिल्पकार सुशांत कुमार महापात्र शामिल हैं। श्री महापात्र ने इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है।
2: मैं एक पारंपरिक घराना का हूँ, ये मुझे तो दुख भी लग रहा है कि मुझे बहुत देर में मिला हूँ। मैं छो के लिए समर्पित हूँ, छो के लिए काम करूंगा, ये हमारा परंपरा है। 3-4 पीढ़ी हो गया। मेरे बड़े चाचा थे जो सरायकेला के जगन्नाथ मंदिर को जितनी भी मूर्तियां हैं वो बनाए हैं।
1: पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट के बीच केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस की सप्लाई स्थिर है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में बताया कि पिछले 3 दिनों में 1,40,00,000 एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग हुई, जिसके आलोक में 1,49,00,000 की डिलीवरी की गई।
3: देश में क्रूड, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस की सप्लाई स्टेबल है। हमारी रिफाइनरीज उच्चतम क्षमता पर चल रही हैं। पिछले 3 दिनों में 1.40 करोड़ एलपीजी सिलेंडर्स की बुकिंग रिसीव हुई है। इसके अगेंस्ट 1.49 करोड़ डिलीवरी की गई है। अफवाहों से बचें, जहां पर भी संभव हो वहां अल्टरनेट सोर्स का उपयोग करने का प्रयत्न करें।
1: प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना जामताड़ा जिले के लोगों, विशेषकर गरीब मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जरूरतमंद लोग जन औषधि केंद्र में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां ले रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं।
4: प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई है, जो गरीबों के लिए बहुत फायदेमंद है। यहाँ सस्ती और बहुत अच्छी दवाइयाँ मिल रही है, जो गरीबों को बहुत आवश्यकता अनुसार काम कर रही है। प्रधानमंत्री को धन्यवाद करती हूँ।
1: रांची के नगड़ी मौजा में प्रस्तावित रिम्स 2 के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने आज विरोध मार्च निकाला। ग्रामीणों की योजना मुख्यमंत्री आवास घेरने की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें मोराबादी में रोक दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि राज्य सरकार विकास के नाम पर किसानों की कृषि योग्य भूमि छीन रही है।
5: रिम्स 2 बने, आदिवासी समाज कभी भी विरोध नहीं किया है। पूरे झारखंड में यहाँ पे आदिवासियों का ही जमीन दिया गया है। 11-12 में भाजपा सरकार इस जमीन को छीन रही थी, उसके बाद शिबू सोरेन जी उनके आह्वान पे ये जमीन को बचाया गया है। अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना है हमारे दिसुम गुरु को, ये नगरी का जमीन 227 एकड़ खेतीहारी जमीन को पूरे आदिवासी समाज को उपहार देने का काम करे।
1: राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज दोपहर बाद तेज हवा और गरज के साथ प्री मानसून की मूसलाधार बारिश।

पेशवी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पड़ोसी राज्य बिहार में आज मॉनसून ने दस्तक दी है, इसके राज्य में 2-3 दिनों में प्रवेश करने की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार 17 जून तक तेज हवा और गरज के साथ बारिश के आसार हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की महिला चयन समिति ने 3 T20 श्रृंखला के लिए आज 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी। श्रीलंका दौरे के लिए घोषित 15 सदस्यीय इस टीम में झारखंड की कुमारी पलक का भी चयन हुआ है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में विकसित राष्ट्र के लिए सामूहिक प्रयास पर दिया बल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से सहयोग की जताई अपेक्षा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने जमशेदपुर में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां, कहा केंद्र से राज्य को मिल रहा पर्याप्त आर्थिक सहयोग। राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत रांची में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू। स्वास्थ्य मंत्री ने टीबी मुक्त झारखंड पर दिया जोर। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में प्री मॉनसून बारिश से गर्मी से राहत। पड़ोसी राज्य बिहार में मॉनसून की दस्तक, राज्य में 2-3 दिनों में करेगा प्रवेश। और श्रीलंका दौरे के लिए अंडर 19 भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा, झारखंड की कुमारी पलक का चयन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी रांची है, प्रस्तुत है जिले में आजकल।
1: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे कोडरमा संवाददाता।
1: कोडरमा जिले का सुदूरवर्ती सतगावा प्रखंड भी अब रेल मार्ग से जुड़ने जा रहा है। बिहार के नवादा से गिरिडीह तक नई रेल परियोजना के प्रस्ताव को रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इस नई रेल परियोजना के तहत कोडरमा के सतगावा प्रखंड के अलावे गिरिडीह जिले के तीसरी और गांवा भी रेल मार्ग से जुड़ जाएगा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस रेल परियोजना की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस नई रेल परियोजना से कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के कई सुदूरवर्ती इलाके रेल मार्ग से जुड़ जाएंगे, जिससे लोगों को न सिर्फ आवागमन में सुविधा होगी बल्कि रोजगार के नए मार्ग भी प्रशस्त होंगे।
2: सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और माननीय रेल मंत्री जी को कि उन्होंने सतगावा, कोडरमा और गिरिडीह जिले के अंतर्गत पड़ने वाले वैसे हजारों हजार लोगों की भावना को उन्होंने सम्मान दिया है और बरसों से इसकी मांग थी कि नवादा से सतगावा गावा तीसरी को गिरिडीह के साथ जोड़ा जाए। तो इसमें दो राज्य जुड़ेंगे और इसमें हजारों हजार लोगों को फायदा होगा और निश्चित रूप से जब रेल लाइन बनेंगे तो उसके बाद क्षेत्र का विकास होगा।
1: झुमरी तिलैया के इंदरवा में 20 महिलाओं का समूह जूट से उत्पाद तैयार कर आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहा है। महिला विकास समिति के बैनर तले राधा यादव के नेतृत्व में आसपास की 20 महिलाएं यहां जूट से अनेकों तरह के उत्पाद तैयार कर बेहतर आमदनी कर रही है। घरेलू कामकाज के साथ हो रही इस आमदनी से महिलाएं उत्साहित हैं और अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने में जुटी हैं।
3: हम लोग ऐसे तो घर में बैठे हुए रहते थे, कुछ यहाँ जुड़ने के बाद राधा दी बोली कि यहाँ आओ कुछ सीखते हैं, हम लोग भी सिखाते भी हैं, ट्रेनिंग हो चुका है। ऐसे घर में गप्पे लड़ाते थे इधर से उधर, कहीं यहीं कभी सोना कभी बैठना, तो हम लोग सोचे फिर क्यों वहाँ गप्पे लड़ाएं, फिर यहाँ आए तो कुछ थोड़ा सा कुछ रोज नया चीज सीखें। पति का भी हाथ बटाते हैं, बच्चों का स्कूल का फीस वगैरह हो गया, वो चीज में भी हम लोग का भी रहता है, हम लोग का इनकम जो होता है उससे हम लोग करते हैं।
1: जिले के अंगीभूत कॉलेजों को हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय से गिरिडीह के सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी में स्थानांतरित करने का मामला तूल

0: पकड़ता जा रहा है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ जहां छात्र संघ लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार के इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, वहीं भाजपा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने भी इस मामले को लेकर हेमंत सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है।
1: एक छोटी सी बात है, 54 किलोमीटर हजारीबाग जाने की दूरी, 125 किलोमीटर गिरिडीह जाने की दूरी, और यही दूरी के चलते विनोबा भावे विश्वविद्यालय बना और फिर से आप इसको गिरिडीह ले जा रहे, आखिर इसे हम क्या कहें? अरे राजनीति आती जाती रहती है, पद आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जो कि राज्य हित में ना हो, क्षेत्र हित में ना हो, छात्र हित में ना हो।
0: कोडरमा से हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय की दूरी तकरीबन 55 किलोमीटर है, जबकि गिरिडीह सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी 125 किलोमीटर दूर। ऐसे में विश्वविद्यालय स्थानांतरण से कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को परेशानी होनी लाजमी है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा।
2: अभी आप सुन रहे थे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म सिलसिला से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में। गीत को लिखा है हसन कमाल ने, संगीत है शिव हरी का।

इस प्यारे से गीत के साथ ही संपन्न होता है आज का कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज का ये सफर आपने तय किया श्वेता के साथ, आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण।

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पाराशर।
1: नमस्कार। अब उपलब्धियों की बात होती है तो साल दर साल बात होती है। 12 साल एक लंबा समय होता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। एक के बाद एक कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। एक रिकॉर्ड जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी, अब अगर हम बात करें कि कितने समय के लिए और कितने दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर रहे, तो वो रिकॉर्ड भी टूट रहा है। लेकिन सिर्फ बात इन रिकॉर्ड्स की नहीं है, बल्कि बात हो रही है क्या ये नया भारत कुछ विकास लेकर आया, विकसित भारत का नारा जो है वो साकार हुआ। और किसानों के लिए बहुत बात हो रही है, क्या किसान वाकई में खुश हैं, क्योंकि किसानों से सीधे जो जुड़ाव रखते हैं वो खास मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको मामा भी कहते हैं लोग, अब आप पहचान ही गए होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद आपका।
1: अब मैं आपको मामा जी तो नहीं कहूं, लेकिन मैं आपको नेता के तौर पर पहले शुरुआत करती हूं। गर्मी बहुत है, किसान खुश है?
2: किसान खुश रहे इसके लिए सरकार दिन और रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी, उनको बहुत बहुत बधाइयां, उनका अभिनंदन। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। और मैं अभी 2 साल से उनके साथ मंत्री हूं, मेरे जैसे कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उनको बहुत बहुत बधाई।
1: अब क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी से ही शुरुआत की है, मैं अपने हाथ में आपकी किताब भी लेकर आई थी, अपनापन। ये किताब आपने नरेंद्र मोदी संग आपके अनुभव, तो 2 साल से तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप उनको देख रहे हैं, आप उनके कैबिनेट का हिस्सा हैं, सरकार में एक अहम पद पर हैं आप, लेकिन आपने जो इस किताब में अपनापन बताया है, आजकल अपनापन ये शब्द ही इस्तेमाल होना ऐसा लगता है खत्म हो गया है। कोई रणनीति की बात करता है, भारी भरकम शब्दों की बात होती है, ये अपनापन क्या जुड़ाव है मोदी जी के साथ?
2: भारतीय संस्कृति का मूल है एक ही चेतना हम सब में है, इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं, आत्मवत सर्वभूतेषु। और ये भाव मैंने सदैव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में और उनके काम में देखा। अपनापन अपने सहयोगियों के लिए, अपनापन अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनापन देश की संपूर्ण जनता के लिए, अपनापन पीड़ित विश्व मानवता की सेवा के लिए। और इसलिए जब कोविड जैसी महामारी आती है तो वैक्सीन केवल भारत की जनता को नहीं लगती, 100 अलग अलग देशों के लोगों को भी लग जाती है। अगर प्राकृतिक आपदा किसी दुनिया के दूसरे देश में आती है तो सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने हाथ आगे बढ़ाता है सहायता और सहयोग के लिए। लेकिन ये अपनापन केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, प्राणियों के लिए भी अपनापन। और इसलिए चाहे टाइगर हो चाहे चीता हो, वो सुरक्षित रहे, पुनर्वास हो, इसके प्रयत्न किए जाते हैं। अपनापन पेड़ पौधों के लिए, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम जैसा अभियान चलता है, पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की कोशिश होती है। अपनापन नदियों के लिए, और इसलिए गंगा जी से लेके बाकी सब नदियों को बचाने का अभियान चलता है। अपनापन पशु पक्षियों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी, नदियों पर्वत पहाड़ों के लिए भी और ग्रह नक्षत्र तारों के लिए भी, चारों तरफ अपनेपन का भाव दिखाई देता है। और वो अपनापन का अनुभव साथ काम करते हुए मैंने स्वयं भी किया है और सबके लिए अपनापन देखा, इसलिए किताब का नाम अपनापन। इससे आत्मीय और कोई शब्द नहीं मिला मुझे।
1: आपने कई जगह ये जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे पल थे जिसमें कई बार आप भावुक हुए और आपने उनको याद किया नरेंद्र मोदी को, जैसे आपने बताया कि 23 के चुनाव के समय तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने सीधे आपको फोन किया और उन्होंने कहा मैं किसी नेता से नहीं, अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। ये जो एक कनेक्ट है मोदी जी के साथ, यही वो कनेक्ट है जो जनता के साथ भी महसूस होता है आपको?
2: सबके साथ ही, मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ, ऐसे अनेकों साथी होंगे। जब ऐसा लगा कि उनको अपनेपन की जरूरत है तो उनसे किसी पद के कारण बात नहीं की, स्नेह प्रेम और आत्मीयता से बात की। और जब कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब तो मामा का श्राद्ध हो जाएगा और अलग अलग तरह की चीजें चल रही थी, तब उनने फोन करके कहा ना चुनाव की बात, ना मुख्यमंत्री से बात, अपने शिवराज से बात। तो यही तो अपनापन है।
1: शिवराज जी, अब क्योंकि हम 12 साल की बात कर रहे हैं, 12 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस सरकार की क्या मानते हैं?
2: प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत से अपना एक एक क्षण देश की और जनता की सेवा में लगा रहे हैं। और अंतर अगर देखना हो तो हम नहीं कहते, जमाना कहता है। एक जमाना वो था जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान सम्मान और स्थान नहीं मिलता था। भारत को, हमारे प्यारे देश को, एक दिन आज का है जब जहां देखो पूरे सम्मान के साथ भारत का नाम लिया जाता है। हमारे देश के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। मैं विश्लेषण करूं क्या हुआ है तो घंटों लग जाएंगे, उपलब्धियां कितनी हैं, लेकिन देश आज पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ दुनिया में खड़ा है और कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत।
1: ये तो वैश्विक स्तर की बात हो गई, लेकिन अगर अपने देश में सबसे बड़ी उपलब्धि देखें, जैसे आपको मामा, जो मैंने कहा इसलिए जाना जाता है कि बहनों, माताओं और सबके लिए आपने ऐसी स्कीम, लाडली बहना हो या तमाम स्कीम्स हो, कि पूरे देश ने बाद में उसको फॉलो किया, ऐसी क्या बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की जो एक आपको अगर गिनानी हो?
2: देखिए, एक तो संकट है
1: जिसको इतिहास याद रखेगा,
2: 25 करोड़, देखिए इतिहास को याद रखने वाली भी चीजें कही है, चाहे धारा 370 हो, अयोध्या में राम मंदिर हो, विकास से विरासत के एक नहीं अनेकों काम हो, नक्सलवाद से देश को मुक्त करना हो। कौन सोचता था कि ये दिन आएगा कि बस्तर की गलियों में आज शिक्षा से लेके रोजगार से लेके शांति की बयार बहेगी? कौन कल्पना करता था? अगर वो गुनाऊंगा तो संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आम जनता की दृष्टि से अगर देखें, बहनों की बात करें तो 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, इज्जत घर जिनका नाम दिया था जनता ने, 10 करोड़ हमारी ऐसी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सम्मिलित है, जिनमें से 3 करोड़ हमारी दीदियां लखपति दीदी बन गई है, गरीबों के 4 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं। आप किसानों को अगर देखें तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा राशि किसानों के खाते में सीधे डालने का काम हुआ है। मैं अगर गिनाऊंगा तो इतने काम हैं कि समय कम पड़ता है। तो गरीबों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, हमारे नौजवानों के कल्याण के काम सोचने का मामला हो, गरीब, किसान, महिला, नौजवान, सबकी प्रगति और विकास के लिए अनेकों कदम उठे हैं और आप देखेंगे कि जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है।
1: शिवराज जी, आप इतने अनुभवी नेता हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि एक साल के अंदर सरकार गिरने वाली है? LOP तो ऐसा ही मानते हैं राहुल गांधी, उनका कहना है एक साल भी नहीं चलेगा।
2: बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।
1: नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
2: तो ये कौन से ज्ञान चक्षु है उनके पास, दिव्य दृष्टि है, ये तो वो ही बता सकते हैं। लेकिन अभी तो 2029 आने वाला है, 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और 2029 के बाद 2034 देखें जीतेंगे, और 2034 के बाद 2039 भी जीतेंगे। वो ख्याली पुकाओ पकाना बंद करें, मुंगेरी लाल के सपने ना देखें।
1: बच्चों से आपका जुड़ाव काफी ज्यादा है, मामा सब कहते हैं। नीट एग्जाम को लेकर के एक अलग तरीके का विवाद पैदा हुआ है, बात हो रही है कि भाई क्या सरकार सही कर रही है?
2: हम बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, कोई अन्याय नहीं होने देंगे। जैसे ही अनियमितता का पता चला, धर्मेंद्र जी ने तत्काल कदम उठाया, परीक्षा निरस्त की गई, दूसरी परीक्षा की तिथि 12 मई के बाद 15 मई को तत्काल घोषित कर दी गई, फीस लौटाई गई, अगली परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, और संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी बनाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि जिससे कहीं कोई गड़बड़ और दिक्कत ना हो। CBI को मामला दिया गया, अपराधी कई पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जो सारे कदम उठाए जाने थे वो हर कदम उठाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी भी लगातार सजग और सचेत हैं, पहले भी पेपर लीक होते थे, इतनी तत्परता से कब कार्रवाई होती थी, लेकिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और एक के बाद एक जरूरी कदम उठाए गए।
1: आपने जो बात कही पहले भी पेपर लीक होते थे, तो ये नैरेटिव की लड़ाई में क्या पीछे रह गए हैं कि ये बात सही से सामने नहीं आ पा रही है कि पहले और अब में ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं?
2: ये है कि पहले कुछ नहीं होता था, अब कठोर कार्रवाई हुई है और जहां भी गैप मिला उसको ठीक करने की, भरने की कोशिश की गई।
1: मतलब बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा?
2: सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे देश का भविष्य है, बच्चे हमारी सबसे बड़ी दौलत है, किसी भी कीमत पर उनके साथ ना तो अन्याय ना खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, यही सरकार का संकल्प।
1: क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है? क्योंकि एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है, एक नैरेटिव पूरा सेट करने की कोशिश हो रही है।
2: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठे।

0: केवल भारत का विकास है और जनता का कल्याण, ये दोनों काम दिन और रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, इसलिए जनता साथ खड़ी है। उपलब्धियां तो मैं कई घंटों आपको गिना सकता हूँ
1: सर, लेकिन नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जो कि जब भारत आजाद हुआ स्वतंत्र भारत के बाद की नींव रखी, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दोनों के इस अंतर को आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए, कौन कितने समय प्रधानमंत्री रहा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन ने कैसा काम किया। एक जमाना था जब भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। PL 480 जैसा गेहूं, लाल गेहूं, जिसको मतलब जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं था, वो हम इम्पोर्ट करते थे। उस जमाने में विकास की दृष्टि नहीं थी। कई ऐसे फैसले हुए जिनने देश और देश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचाया। सिंधु जल समझौता ही अगर हम देखें, आज वो पानी हमारे काम आ रहा है जो बह के पाकिस्तान जाता था। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24 घंटे मतलब मैं तो कहूंगा कि 24 घंटे में से भी हर क्षण, हर मिनट और हर सेकंड राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। निरंतर काम राष्ट्रहित सर्वोपरि, जनहित सर्वोपरि, इसी भाव से निरंतर काम चल रहा है। और चाहे वो देश के विकास का काम हो, इंफ्रा का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल हो, किसानों के उत्थान का सवाल हो, नौजवानों के बेहतर भविष्य के निर्माण का सवाल हो, या महिला सशक्तिकरण का मामला हो, आप चारों तरफ देखेंगे कि एक के बाद एक अनेकों निर्णय हो रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं और वो जनता की जिंदगी बदल रहे हैं।
1: शिवराज जी, आप तो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ हर दूसरे दिन आप देश के किसी ना किसी राज्य में होते हैं, अलग अलग जगहों पर। लोग आपसे ये बात करते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या LPG के दाम की बात पूछते हैं क्या लोग?
0: आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए, मिडिल ईस्ट के संकट के बाद दूसरे देशों में कितने दाम बढ़े हैं और हमारे यहाँ कितने दाम बढ़े हैं। जनता बहुत समझदार है, हर परिस्थिति जनता के सामने है। मिडिल ईस्ट के संकट को भी जनता अच्छी तरह से पहचानती और समझती है, और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उससे देश के सामने जो बड़े खतरे और संकट हो सकते थे उनसे निपटने में मदद मिली है, और जनता ये सच जानती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का संकट को पहचानना और पहचान के रास्ते निकालना, अभी जो उन्होंने अपील की पिछले दिनों, और अपील की उन कई लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। कोविड से जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निपटे, अगर कई बार मैं सोचता हूं तो मतलब मन कांप जाता है कि मोदी ना होते तो क्या होता। दो दो वैक्सीन 9 महीने के अंतराल में बनकर लग भी गई, केवल हमारे देशवासियों को नहीं लगी, दुनिया के कई देशों के लोगों को भी लगी। और जिस ढंग से जनता कर्फ्यू, थाली ताली, दीपक जलाओ, आप एक के बाद एक कदम के बारे में सोचिए। जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेनें चली और खाली जो टैंकर थे वो वायुसेना के हवाई जहाजों से वापस भेजे गए। जिस ढंग के कदम उठे, कोई कल्पना करता है क्या? अब कोई तो कोविड में भी आनंद देखे कि जनता परेशान है और वो आनंद ले। अगर विपक्ष की मानसिकता हो तो मैं उनकी बुद्धि को मैं क्या कहूं। इसलिए हर संकट में अवसर ढूंढना राजनीति के ये गलत है। हर संकट का मुकाबला भारत ने बहुत मजबूती से किया है। परिस्थितियां बनती है तब कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन देश लगातार आगे बढ़ता है।
1: मैंने पता किया, मुझे पता लगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी, आपने उसी दिन तुरंत अपने ऑफिस में कर्मचारियों को सबको बुलाकर उनको बताया था कि अब क्या करना है, कैसे प्रधानमंत्री की अपील का एक तरीके से पालन करना है। आपने भी कुछ टिप्स अपने ऑफिस में दे दिए थे लोगों को?
0: तत्काल देखिए, मैं तो उनके हर भाषण को ध्यान से सुनता हूँ। पहली बार जब मैं मंत्री बना उनके नेतृत्व में, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैंने तुरंत वहां से उतरते ही लाल किले की प्राचीर से अपने दोनों सचिवों को फोन किया, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, और कहा कि कल सारे कर्मचारी अधिकारी इकट्ठे होंगे, बाकी सब वर्चुअल जुड़ेंगे। और हम सब ने खड़े होकर संकल्प लिया राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कि हम भी 3 गुना ताकत से काम करेंगे। प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हम पीछे कैसे रहें। उन्होंने इस बार कहा कि सरकार फाइल में नहीं, जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए। हमने तुरंत नियम और प्रक्रियाओं के सरलीकरण का एक व्यापक अभियान छेड़ा कि जनता को कोई तकलीफ ना हो किसी भी कीमत पर। जो अभी उनकी अपील आई उस पर तुरंत हमने अमल करते हुए, कैसे हम कार पूलिंग कर सकते हैं,
1: अच्छा,
0: कैसे विदेश यात्रा अनावश्यक बिल्कुल नहीं करनी है, डीजल पेट्रोल कैसे बच सकता, उसके एक एक कदम हमने उठाए। जिनमें मैं भी शामिल हूँ, और मिलकर उन पर अमल करने की कोशिश की।
1: तो आप भी

0: कारपूल करते हैं अगर बाहर जाते हैं तो?
1: हम बैठक में जाते हैं कैबिनेट की और दूसरे मंत्री जा रहे हैं तो हम साथ बैठ के जाते हैं, तो काय को हम दूसरी कार ले जाएं, जब पिछली बार बैठक में हम तीन मंत्री एक साथ गए थे कार।
0: अच्छा, देखिए ये सब खबरें बाहर नहीं आती है, ये पता ही नहीं चलता किसी को,
1: और इसलिए कोशिश करते हैं कि यथासंभव जनता के काम को नुकसान ना पहुंचाते हुए हम जो भी बचत कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें।
0: शिवराज जी, AI नैनो की भी बहुत बात हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा विजन बताइए कि क्या विजन है और इससे किसानों को किस तरीके से, मतलब अगर कुछ दिक्कत है तो सामना कैसे करें और फायदे क्या पहुंच सकते हैं?
1: देखिए, हमको एग्रीकल्चर के माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो तीन बड़े लक्ष्य हमारे, एक देश की खाद्य सुरक्षा में सुनिश्चित करना है, दूसरा पौष्टिक आहार जनता को उपलब्ध कराना है, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण इन दोनों से भी किसान की आजीविका और रोजगार सुनिश्चित करना है, और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और इसलिए AI का उपयोग भी हम कैसे हम कर सकते हैं, मैकेनाइजेशन का काम कैसे करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादन की लागत घटा सकते हैं, इस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं, एक नहीं अनेकों प्रयोग हो रहे हैं। जैसे AI के माध्यम से ही अगर आप बात करेंगे,
0: जो अल नैनो की हम बात कर रहे हैं,
1: हमने अल नैनो की भी हम बात करें, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, हमने एक भारत विस्तार, हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर कोई भी किसान पूछता है अगर कोई सवाल कि मेरी फसल की पत्ती पीली हो रही है, ऐसे लक्षण है, अब मैं क्या करूं, तो तत्काल उसको जवाब मिलता है कि फलानी बीमारी हो सकती है, आप ये दवाई डालिए, ये AI का इस्तेमाल है। मोबाइल लेके आप खेत पे खड़े हो जाएं तो ये पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व है और हमको कितनी खाद डालनी चाहिए, और नहीं तो बिना मतलब के जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी डाले जा रहे हैं, खर्चा भी बढ़ता है, उत्पादन में भी कोई लाभ नहीं होता। तो AI के ऐसे अनेकों उपयोग है जो निरंतर कर रहे हैं। अभी अल नीनो का संकट दुनिया पे बरकरार है, केवल भारत नहीं, दुनिया के मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि अल नीनो के कारण यहाँ बारिश कम हो सकती है। हमने वो 197 डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की है जहाँ कम बारिश होने की संभावना है, और हमने AI के माध्यम से उन जिलों को न केवल पहचाना है बल्कि उनका कंटेंजेंसी प्लान बना रहे हैं कि वहां अगर ऐसी परिस्थिति बनी है, संभावित है, क्योंकि मौसम के बारे में 100% कोई नहीं कह सकता, संभावित है, तो उनका कंटेंजेंसी प्लान हमने बनाया है, उन जिलों में कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन से बीज इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी किस्म बेहतर रहेगी, अगर बारिश में तो स्पेल में लंबा गैप हो गया, एक दिन बारिश हुई और फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद बारिश होती है, तब हमको क्या करना चाहिए, तो सारी चीजों का आकलन करके और उसकी AI की मदद से हम उससे कैसे निपटेंगे इसका प्लान भी हम तैयार कर रहे हैं। मध्य भारत के कई इलाकों में कम बारिश की संभावना है तो उनमें हम क्या करेंगे, उसका प्लान हमने तैयार किया है, हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी का सहारा हम ले रहे हैं, हर सप्ताह मैं मॉनिटरिंग करता हूं, रोज हमारे अफसर मॉनिटरिंग करते हैं कि आज मानसून कहां पहुंचा, कितना पहुंचेगा, किस गति से बढ़ेगा, कहां कम संभावना है, कहां ज्यादा संभावना है, तो सब चीजों का आकलन करके हम फैसले कर रहे हैं।
0: आपको लगता है शिवराज जी कि बंगाल के इलेक्शन ने ये तुष्टिकरण और ये वोट बैंक की राजनीति को काफी हद तक खत्म किया है?
1: देखिए, सीधा तुष्टिकरण अब ये देश स्वीकार नहीं करेगा, वोट बैंक की राजनीति ये देश स्वीकार नहीं करेगा। आज गर्व के साथ हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक सुपर ह्यूमन है, भारत के लिए भगवान का वरदान है, उनके नेतृत्व में जो हम कर रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, घुसपैठ जैसे मामले हो, प्रगति और विकास और जनता का कल्याण तो है ही, बल्कि वसुदेव कुटुंबकम के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रहित सर्वोपरि मानते हुए, जो विश्व हित की भी सोचता हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है।
0: शिवराज जी, बहुत बेबाक तरीके से आपने बात की, एक ऐसी बात नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि हम 12 सालों पर बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आप हमेशा उनसे सीखते हैं और उनकी बात को याद रखते हैं, क्या वो एक स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, या सॉफ्ट हार्टेड हैं, क्या हैं?
1: केवल एक ही घटना में सुनाऊंगा, एक बार मैंने उनके सामने, मैं और वो दोनों थे, उनके कामों की प्रशंसा की कि ये बहुत अच्छा हुआ, देश उसको बहुत पसंद करता और हमारे मन में भी आपके प्रति श्रद्धा का इसलिए भाव है, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, मैं प्रशंसा से नहीं, मैं काम से प्रसन्न होता हूं, जो काम करेगा उसको कंधों पर बैठा के मैं नाच सकता हूं, लेकिन प्रशंसा मैं नहीं सुनता, केवल काम पसंद करता हूं, और वो चीज मुझे हमेशा ध्यान में रहती है, काम करो, काम करो, काम करो, चलते रहो, चरे वेती चरे वेती चरे वेती, अपने देश के लिए काम करते रहो, अपनी जनता के लिए काम करते रहो, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।
0: बहुत आपने एक हम सबको भी एक सीख दी चरे वेती के इस मंत्र के साथ, और यही मंत्र होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ इस खास बातचीत।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के,

0: जन कल्याण के। इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पाराशर। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अब सुनिए संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत।
1: छब्बीस मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। उस समय उन्होंने सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि एक नए भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दी और तब से लेकर के पिछले 12 सालों में चाहे विकास की बात करें या सुशासन की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें या फिर गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत की बात करें, लगातार मोदी सरकार पूरे देश में काम कर रही है। और गुलामी की मानसिकता की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, कैसे आगे बढ़ रही है पूरी आधुनिकता के साथ में, ये भी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत की संस्कृति अपना परचम लहरा रही है और केंद्र सरकार का बराबर साथ दे रही है केंद्र सरकार का मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय। तो खास मेहमान है संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में।
2: धन्यवाद।
1: भारत किस तरीके से जो उसकी संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो उसका पुनः जागरण हो रहा है। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत, तो उसको संस्कृति मंत्रालय कैसे आगे लेके जा रहा है?
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिया वो यह है कि भारत की जो सभ्यता है वो युगे युगीन है, वो युगों युगों से चली आई है और वो अटूट है। बीच में ऐसे कालखंड आए जिन कालखंडों में इस अटूट सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की गई या जो इस सभ्यता के स्मारक थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई, पर इन सब प्रयासों के बाद भी जो हमारी युगे युगीन भारत की सभ्यता है वो अनावृत चलती रही। इस अध्याय को पुनः स्थापित करने के लिए और जो गुलामी का कालखंड रहा उसकी याद को समाप्त करने के लिए या उसकी याद को एक ऐसे पृष्ठभूमि में रखने के लिए जिससे कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारी ज्ञान परंपराएं, उनको हम पुनः स्थापित कर पाए और हमारे जो नागरिक हैं, खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनके समक्ष ला पाए, उसके लिए बहुत सारे कदम भारत सरकार ने उठाए। बहुत सारे जो हमने काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जो कॉलोनियल समय में भारत की सेक्रेटेरिएट थी और जहां से भारत के राज्य का संचालन अंग्रेज करते थे, उस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नया म्यूजियम बनाने की घोषणा की जिसपे हम काम कर रहे हैं, वो भी म्यूजियम युगे युगीन भारत के नाम से। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अगर आप लॉर्ड मैकले ने जब भारत की एजुकेशन पॉलिसी बनाई कॉलोनियल के समय में, उन्होंने कहा कि यूरोप की किसी भी लाइब्रेरी में जो एक शेल्फ की किताबें हैं वो भारत की पूरी ज्ञान परंपरा से ज़्यादा बेहतर हैं। उसको जो वो भावना भारत में लाने की कोशिश की गई कॉलोनियल राज द्वारा, उसको मिटाने के लिए और भारत की जो अपनी ज्ञान परंपरा है उसको पूरे विश्व के सामने लाने के लिए और भारत के नागरिकों के सामने लाने के लिए ज्ञान भारतम का काम प्रारंभ हुआ है, जिसमें जो हमारी हस्तलिखित मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारी पांडुलिपियां हैं, जो विभिन्न विषयों पे हैं, खासकर जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हीलिंग सिस्टम्स हो, मेडिसिन हो, जो चिकित्सा के साथ साथ जो सर्जरी की डेवलपमेंट थी उसके ऊपर जो हमारा काम था, उस सब को अब हम पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं, एक नेशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे हमने उनको पुनः निर्मित करते रहे, बार बार तोड़ते रहे और हम निर्मित करते रहे, इसको भी भारत की याद में दोबारा भारत के नागरिकों के समक्ष लाने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हम मना रहे हैं।
1: सर, आपने युवा पीढ़ी की बात कही, जहां किसी भी देश का हम कहते भी हैं कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसका जो आधार होते हैं उस देश के युवा होते हैं, और जैसा कि हमने

0: किताबों में भी पढ़ा है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति खत्म कर दीजिए, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपने भी जिक्र करा शिक्षा में भी बदलाव हो रहा है, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि जब पूरा विश्व समझने की कोशिश कर रहा था कि सभ्यता होती क्या है, उस वक्त हम सभ्यता के धरातल पर दौड़ रहे थे और उसको भी संस्कृति मंत्रालय आगे लेके जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
1: भारत की ज्ञान परंपरा का एक बड़ा सेंटर नालंदा विश्वविद्यालय था, जो प्राचीनतम, जो विश्व में अकेला ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय था जिसके साथ पश्चिम भारत में तक्षशिला था। नालंदा की जो परंपरा थी उसको इसी कालखंड में, जब भारत पे हमारे पे अतिक्रमण हुए, हमारे पे बहुत सारे आक्रमण हुए, उस समय नालंदा पे भी आक्रमण हुआ, उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास हुआ, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब नालंदा की जो ज्ञान परंपरा है उसका पूरा रिवाइवल हुआ है। वहाँ पे नालंदा बिहार विश्वविद्यालय चल रहा है, जिसमें जो बुद्धिस्ट और पाली लैंग्वेज और पोटी लैंग्वेज का जो लर्निंग है वो होता है, इतिहास, संस्कृत, और साथ में जो सांस्कृतिक धरोहर नालंदा की थी, जो ज्ञान परंपराएं थी उसके ऊपर वहाँ पे शिक्षण का कार्य होता है, उस पर रिसर्च का कार्य होता है। उसी तरह जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन को साथ जोड़ के एक बहुत बड़ा कार्य इस सरकार द्वारा इस समय में किया गया है।
0: आपने अभी जिक्र किया राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, या जो हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता था, मतलब आज की जेनजी की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा जानते हैं, रादर हम अपनी बात करें अपने समय में हमें नहीं पता था, तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से अगर ये दोबारा निर्माण किया जा रहा है, या फिर जो स्थानों के नाम राष्ट्रीय सेनानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं, क्या उससे कोई बदलाव आएगा और एक जो सभ्यता है वो पुनः जागृत होगी?
1: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब कॉलोनियल शासन था तो अंग्रेजों के जो उस समय के प्रशासक थे या उस समय के गवर्नर जनरल थे या वाइसरॉय थे, उनके नाम पे बहुत सारे भारतीय स्थानों के नाम रखे गए, जैसे पोर्ट ब्लेयर था जो अब श्री विजयपुरम है, जो वहाँ पे द्वीप थे वो अब नेताजी द्वीप के, नेताजी के नाम से द्वीप हुआ, जो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनमें कॉलोनियल लिगेसी थी, उनको परिवर्तन करके हमने अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको पुनर्जागृत किया है। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक स्थल हैं या जो पुरातत्व स्थल हैं, उनको हम अगर विकसित करते हैं और उनके ऊपर हम विजिटर एमिनिटीज अच्छे से डेवलप करते हैं, और खासकर वहाँ के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर हैं, और वहाँ पे अगर हम ऑडियो विजुअल गाइड के साथ ARVR एक्सपीरियंस क्रिएट करके हम पूरा नैरेटिव जो वहाँ पे जो हमारे यूथ है, हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं वो जाते हैं, तब उनको वो समझ में आएगा कि वास्तव में इतिहास में इन स्थानों का क्या महत्व था और क्या हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की ऊंचाई थी प्राचीन समय में। जैसे लोथल में एक बहुत बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम स्थापित हो रहा है, ये लोथल 5000 वर्ष पुरानी साइट है। 5000 वर्ष पहले यूरोप अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था, परंतु भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी और उस सभ्यता का संपर्क था विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ, और डॉकयार्ड था, पूरा मैरीटाइम सिस्टम था, वेयरहाउसेस थे, ट्रेड का सिस्टम था, सील्स थी, करेंसी थी, तो एक पूरी विकसित सभ्यता थी जिसको उजागर अगर हम अच्छे से प्रॉपरली इन साइट्स को डेवलप करके करते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी को उसकी उसका महत्व और उसकी ज्ञान की जो जो जो ज्ञान का ज्ञान की प्राप्ति होगी, उससे ना केवल नेशनल प्राइड डेवलप होगा बल्कि जो एक पूरा माइंडसेट है वो भारत के नागरिकों का बदलेगा।
0: एक सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, खासकर हमारी जेनजीज के लिए, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं सर। आपने वो दौर भी देखा जब ये गुलामी की जो मानसिकता थी वो पूरी तरीके से छाई हुई थी और अपनी ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति, अपने ही इतिहास से हम वंचित थे, और आज जब आप इस दौर में ही संस्कृति मंत्रालय के सचिव बनकर जब आप विदेशों में जाते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं, तो और खास कर जब भारत की वो पुरानी धरोहर है, वो मूर्तियां, वो अमूल्य चीजें आप जब भारत वापस लेकर के आते हैं तो कैसा महसूस होता है, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
1: देखिए, मिक्स्ड भावना होती है जब

0: में जाते हैं तो कई बार हमें दिखता है कि भारत की धरोहरें उन्होंने अपने म्यूजियम्स में रखी हुई हैं और वो प्राउडली उनको डिस्प्ले करते हैं, तो मन में ये भी आता है कि ये धरोहर भारत की है और भारत के पास वापस आनी चाहिए। पर जब हमें कुछ हिस्सा धरोहर का हमें वापस मिलता है और हम वापस भारत में लेके आते हैं तो एक बहुत गर्व की भावना भी होती है, क्योंकि ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने बहुत निश्चय करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। बट ये शुरुआत है, मेरा मानना है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, जिसमें ना केवल भारत का कल्चर मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय काम करता है बल्कि भारत के सभी मिशंस, सारे एम्बेसीज, सारे हाई कमीशंस, हमारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स पूरे विश्व भर में इस कैंपेन का हिस्सा बन के इस काम को कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो हम करते जा रहे हैं और जितनी हमें सफलता प्राप्त हो रही है उससे पूरे भारतवासियों को उस पर गर्व होगा। पर मैं ये भी मानता हूँ कि और भी काम होना है, उस काम के लिए हमें और शक्ति हमारा देश देगा, हमारे नागरिक देंगे। और मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो भारत की रिस्पेक्ट और भारत की वॉइस जो आज सुनी जा रही है विश्व में, वो पहले कभी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि मैंने पूर्व का दौर भी देखा है, मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में पूर्व में भी जाता रहा हूँ और अब भी मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में जाता हूँ, पर आज जो हमारी वॉइस है और जो जिस तरह से भारत को बहुत गंभीरता से सुना जाता है और जहाँ भारत कोई स्टैंड लेता है तो हमेशा हमारे को साथी मिलते हैं, क्योंकि हमारी बात नॉर्मली हम वैसी बात करते हैं जो विश्व के कल्याण की हो, जो विश्व को साथ लेके चलने की हो, और जब हम वो बात करते हैं तो हमारे को साथ भी मिलता है और हमें सफलता भी मिलती है।
1: सर, एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों और खासकर हमारे जेंजी दर्शकों से, जबकि भारत में महिलाओं का वही सम्मान जो उन्हें दिया जाता था महिलाओं के लिए सामने आ रहा है, वही संस्कृति आज हमारी दीपावली का त्योहार पूरा विश्व मनाने जा रहा है, तमाम बदलाव आपने लेकर के आए केंद्र सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, बहुत सारे प्रयास हुए थे जिनको उस समय सफलता नहीं मिली। जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक सोसाइटी बनी थी, इट वॉज उसको कहा गया था ग्रेटर इंडिया सोसाइटी। उसका मतलब ये था, जो करीब 1926 में कोलकाता में बनी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भारत से विश्व को गया उसको हम विश्व को बताएं। तो शुरुआत हुई, अब हम उसको बहुत अच्छे से विश्व को बता पा रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने गर्व से अपना सीना ताना सिर ऊंचा किया और अपनी बात पूरे विश्व में कहना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज जब हम कह रहे हैं, पूरा विश्व उसको सुन भी रहा है और उसको मान भी रहा है और इसको हम सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं और इसको रिकग्निशन के लिए, ताकि ये ऐसा नहीं हो कि हम कहें और शुरू में माना जाए उसका इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हो, उसकी हम इंस्क्रिप्शन भी यूनेस्को में कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो पूरा जो जो प्रक्रिया है, पूरा सेटअप है, वो ऐसा है कि ना केवल हम किसी चीज को एस्टैब्लिश करें बल्कि उसको एस्टैब्लिश करके हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि पूरा विश्व उसको रिकग्नाइज करे और रिकग्नाइज करके उसको डॉक्यूमेंट करे और फाइनली वो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में विश्व में मान्यता प्राप्त करे। उस और हम बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमैटिकली हम काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी।
1: तो हम बात कर रहे थे अब संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी से, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: अभी आपने सुना विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।
2: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: व्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल

0: और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, काम जीवन और बुढ़ापा।
1: यूथ वर्किंग लाइफ टू ओल्ड एज।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
2: नाविक कल्याण कोच समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को MT सिटबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर MT जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20

0: भारतीय चालक दल के सदस्य सवार है। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से ये जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
1: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
0: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
2: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
4: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
3: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
5: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है, जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
3: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में

0: महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

राव, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को तहरीक देती रहेगी, जबकि बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11

वी गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत की। मरकज आसाम और नागालैंड की हुकूमतों ने खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के सिलसिले में एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। भारत ने उमान के साहिल के नज़दीक तेल के एक जहाज पर अमरीकी हमलों की सख्त मजम्मत की है, जिसमें 3 भारतीय मल्लाहों की जान को तलब करके एहतजाज दर्ज किया है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलिया ओपन के ख्वातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और आज रात फीफा आलमी कप 2026 शुरू हो रहा है। मैक्सिको के स्टेडियो एस्टिका में पहले मैच में मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका आमने सामने होंगे। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक ऐसे वक्त जब दुनिया की बड़ी मईशतों को गैर भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को लगातार तहरीक दे रही है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने खुद किफालत के तहत मुल्क के अज़्म को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत को उजागर किया और दुनिया की बेहतरीन अमल आवरियों बिलखसूस काबिल तजदीद तवानाई के शोबे के तौर तरीकों को इख्तियार करने और उन पर अमल करने भारत यानी पेशरफ्त कर रहा है। मरकज और रियासतों की इज्तिमाई जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ गई है। वजीर आजम ने रियासतों से जोर देकर कहा कि वो एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट की स्कीम पर तवज्जो मरकूज करें और इसके ताल्लुक से बरामदात मैनुफैक्चरिंग के शोबे को एक उभरता हुआ सेक्टर करार दिया, जिसमें भारत अपनी इम्तियाजी शनाख्त कायम कर रहा है और रियासतों को तरगीब दी कि वो इस तरक्की से रूनुमा होने वाले मौके से फैज उठाने के लिए पॉलिसियां वजा करें। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अशोक कुमार लहरी ने आज कहा कि नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल में 2047 तक विकसित भारत के विजन को हासिल करने की गरज से बुनियाद के तौर पर एक हुनरमंद और बाइख्तियार आबादी तैयार करने पर तवज्जो मरकूज की गई। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में मीटिंग के बाद मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब लहरी ने कहा कि विकसित भारत एट द रेट 2047 के लिए शमूलियाती इंसानी फरोख के मौजू पर और रोजगार जैसे कलीदी शोबों का अहाता किया गया। जनाब लहरी ने कहा कि नीति आयोग ने वज़राए आला के बामकसद नजरियात और उनकी मुतालिका रियासतों में किए जा रहे काम से इस्तिफादा किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने इस मीटिंग से तफसीली खिताब किया और इस बात पर जोर दिया कि एक बेहतर तालीम याफ्ता और हुनरमंद आबादी भारत की तरक्की के लिए लाजमी है। मगरबी एशिया के बहरान से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब लहरी ने कहा कि वजारत खारजा सूरत हाल को मुनासिब तरीके से हैंडल कर रही है, जबकि अफरादी कुव्वत की तरक्की पर मरकूज तवज्जो में कोई तब्दीली नहीं है। उन्होंने मजीद बताया कि तबादला ख्याल के दौरान शमसी तवानाई जोहरी तवानाई और मैन्युफैक्चरिंग पर भी खास तौर पर तवज्जो दी गई। नीति आयोग के रुकन राजीव गौबा ने कहा कि तबादला ख्याल में एक और कलीदी शोबा मनसूबा बंद शहरकारी था। उन्होंने वाजे किया कि नीति आयोग से एक एजेंडा तैयार करने के सिलसिले में मुख्तलिफ वजारतों के साथ के आसाम नागालैंड सरहद पर सहूलियात शुरू की जा सकें। इस मुआहदे पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने इस मुआहदे को एक तारीखी कदम करार दिया, जो तआवुन पर मबनी वफाकियत और कौमी मफाद के जज्बे का मजहर है। उन्होंने कहा कि इस कदम से खित्ते में तेल और गैस की तलाश को खातिर खा फरोग मिलेगा और इस तरह भारत की तवानाई की यकीनी फराहमी को इस्तेहकाम मिलेगा और दरामदात पर इन्हिसार में कमी आएगी। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि इससे शुमाल मशरक में अमन और इस्तेहकाम में भी बेहतरी आएगी, इससे सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए साजगार हालात पैदा होंगे। भारत ने आज अमेरिका के चार्ज डी अफेयर्स को तलब किया और ओमान के साहिल
इस हमले में 3 भारतीय

0: मुफ्त अनाज फराहम कर रही है। आकाशवाणी इसी दौरान खांजा फरोशों को 1,12,00,000 से ज्यादा कर्ज फराहम किए गए हैं। भारत के समाजी तहफुज का अहाता जो 2015 में 19% था, इसमें तेजी के साथ इजाफा होकर 2025 में 64% से ज्यादा हो गया है। आकाशवाणी से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
1: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़े हमलों से खबरदार किया है और उसने मुतनब्बे किया है कि वो ईरान के तेल और गैस के बुनियादी ढांचे के अहम हिस्सों का कंट्रोल हाथ में ले लेगा। इस तरह मगरबी एशिया में कशीदगी और ज्यादा बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान पर इंतहाई सख्त हमला करेगा और जिसमें खर्क जजीरे का ऑयल टर्मिनल शामिल है। यह बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब अमेरिका और ईरान लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इधर ईरान ने दावा किया है कि उसने कुवैत, बहरीन और उर्दून में निशाना बनाकर जवाबी हमले किए और इस तरह खित्ते में तनाजे के वसत इख्तियार करने के सिलसिले में तश्वीश पैदा हो गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल से उत्तराखंड के 2 रोजा दौरे पर रवाना हो रही हैं। अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकेडमी में 158वीं रेगुलर कोर्स और 141वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की परेड का जायजा लेंगी। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन के ख्वातीन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। 2 मरतबा ओलंपिक मेडल याफ्ता सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में ईशा रानी बरवा को 22-20, 21-12 से शिकस्त दी। अब उनका मुकाबला चेन सू यू से होगा। एक और प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जिसमें दोनों भारतीय खिलाड़ी आमने सामने थे, तन्वी शर्मा ने मालविका बंसोड़ को 21-13, 21-15 से शिकस्त दी। फीफा आलमी कप 2026 का आगाज आज मेक्सिको शहर के तारीखी स्टेडियम स्टेडियो एस्टिका में होगा। इसके साथ ही 1 माह से ज्यादा अरसे तक चलने वाले इस अजीमुश्शान टूर्नामेंट का आगाज हो जाएगा। इफ्तिताही मुकाबले के ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा जो भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। अब तक का यह सबसे बड़ा आलमी कप होगा जिसमें 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इसमें 104 मैच खेले जाएंगे जो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होंगे। आखिर में बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को तहरीक देती रहेगी जबकि बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत की। मरकज, आसाम और नागालैंड की हुकूमतों ने खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के सिलसिले में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। भारत ने ओमान के साहिल के नज़दीक तेल के एक जहाज पर अमरीकी हमलों की सख्त मजम्मत की है जिसमें 3 भारतीय मल्लाहों की जान तलब हो गई। उसने अमेरिका के चार्ज डी अफेयर्स को तलब करके एहतजाज दर्ज किया है और आज रात फीफा आलमी कप 2026 शुरू हो रहा है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: कंट्री वाइड ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर एनडीए कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना।
3: आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं एनडीए अधिवेशन में प्रधानमंत्री के संबोधन के मुख्य बिंदु और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा। आशुतोष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: तो आशुतोष जी, जैसा कि कल हमने सुना प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन था और जिसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पे बात की, देश के अंदर जो हमारे सामने समस्याएं हैं, जो विकास के मुख्य आयाम हैं और वैदेशिक संदर्भ में भारत की क्या मुख्य भूमिका है, इन तमाम बिंदुओं पर प्रधानमंत्री ने चर्चा की। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से पिछले 12 साल में सरकार ने काम किया है और देश को किस तरह से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की, ढांचागत विकास की उन्होंने बात की, डिजिटल

0: सेवाओं की बात की, वेलफेयर स्कीम्स की बात की, आप इसके बारे में और क्या जोड़ना चाहेंगे?
1: पिछले 12 साल जो काम हुए हैं राजग काल में, एनडीए के काल में, उसकी जो बात की वो तो की, उपलब्धियां गिनाई जाए। ये उपलब्धियां मुझे लगता है कि दो स्तर पर दिखी। एक तो कि जो जमीन पे जो चीजें आपको बदलती हुई दिख रही हैं वो, कि जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, और दूसरा है सोच के स्तर पर बदलाव कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। जो जो पहले की सरकारों में 60 सालों में जिस तरफ हमारा, जिस सेक्टर पे फोकस नहीं होना चाहिए था और नहीं गया, उसको कैसे सुधारना है, वो एक लेवल वो था कि कैसे बदलना है। और जो तीसरा जो एक लेवल था जो मुझे दिखा, और प्रधानमंत्री ने इसके बारे में बात भी की, वो ये है कि भारत की जो 140 करोड़ जनता है उसके मन और दिमाग में कुछ चीजें असंभव सी थी जो कि बैठी हुई थी कि ये चीजें असंभव है, बाकी चीजें तो हम करेंगे। उस असंभव को पार करना, जिसमें कि उन्होंने फिर वो 370 और 3 तलाक, जो इस तरीके की बात की जो समाज से भी जुड़ते थे, देश की सुरक्षा से भी जुड़ने वाले इशू थे, और जो आम जन की जनभावना से जुड़े हुए जो मुद्दे थे वो, तो ये 3 तरीके के बदलाव
0: जी
1: जो पिछले 12 साल में हुए, मुझे लगा कि प्रधानमंत्री ने इस पे बहुत खुल के बात की।
0: आशुतोष जी, अगर हम खासतौर से बात करें आर्थिक प्रगति की, हम सभी देखते हैं कि किस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, निवेश की बात करें, डिजिटल पेमेंट की बात करें, और खासतौर से पूरी दुनिया में भारत ने अपनी एक जगह बनाई है, और न सिर्फ एक जगह बनाई है, हमने लगातार कोशिश की है इस सरकार के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कि हम बाकी दुनिया से एक कदम आगे चलें। तो आइए सुनते हैं इस बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, इसलिए भारत को अब ग्लोबल पैरामीटर्स, ग्लोबल कॉम्पिटिशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना है। दुनिया भारत से सॉल्यूशन चाहती है, दुनिया भारत में वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद पार्टनर देख रही है, और हमें दुनिया की इन अपेक्षाओं पर खरा उतर कर दिखाना, हमें ये समय गंवाना नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ, यही समय है, सही समय है। हमें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में खुद को श्रेष्ठ रखना है, हमें सिर्फ दुनिया जैसा नहीं करना, हमें दुनिया से एक कदम आगे रहना है।
0: तो आशुतोष, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और अगर हम देखें कि किस तरह से जो देश का विकास हुआ है और जो 2047 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, क्योंकि 100 साल हमारे देश की स्वतंत्रता के हो जाएंगे, और उसमें आर्थिक विकास से लेके जो टेक्नोलॉजी का विकास है, जो सोशल इंक्लूजन की बात है, सामाजिक समावेश की बात है, और एक अच्छे प्रशासन और गुड गवर्नेंस की बात है, इस बारे में आप आशुतोष जी और क्या जानकारी देना चाहेंगे?
1: आज देश को किस चीज की जरूरत है? अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें, जो बात हो रही है ना कि पश्चिम एशिया का संकट आया और पूरे विश्व पे इस संकट का असर दिख रहा है, यहाँ पर विपक्ष में बैठे लोग कुछ ज्यादा उसे तूल दे रहे हैं, ऐसा लगता हो कि सिर्फ इंडिया का वो एक इशू है, लेकिन फिर भी जो समस्या अभी आपको दिख रही है ये और कम दिखती अगर कुछ कदम पहले उठाए गए होते, जिसका कि जिक्र अभी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया था, और उन्होंने कहा था कि भाई जो सप्लाई चेन में जो इंडिया कई बार दिखता है कि हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, ये कोविड के टाइम में भी ये चीजें दिखी थी और अभी भी चीजें दिख रही है, वहां कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन में मुख्य भूमिका में इंडिया को आना है। एक टाइम आप याद कीजिए कि कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जहां हम पहले से मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जैसे कि दवाइयां, ये 80-90 के आसपास की मैं बात बता रहा हूँ, और फिर धीरे धीरे उस समय कुछ इस तरीके से निर्णय लिए गए कि भाई हम मार्केट इकोनॉमी में किस तरीके से घुस जाए, और हम वहां मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो उस समय में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार खड़ा करना था वो नहीं किया गया, अब शुरुआत हो रही है इसकी। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने बहुत लंबे तरीके से किया और मुझे वो चीजें बहुत सही लगी आज के परिप्रेक्ष्य में कि क्यों नहीं भारत हर मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है, जिसकी बात उन्होंने की। ये आत्मनिर्भरता ही जो है वही कड़ी है और वही आप समझिए सबसे बड़ी कुंजी है, जिसमें कि आप वित्तीय रूप से बहुत संबल, जो बात हो रही है ना बार बार विकसित भारत बनने,
0: जी,
1: विकसित भारत ऐसा नहीं है कि एक शब्द में जुड़ के कहीं खत्म हो जाए, कई लेवल पे जो स्टेप्स लेने हैं, और इसलिए प्रधानमंत्री ने ये बात की कि भाई ये ग्लोबल सप्लाई चेन बनना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनना है। आज से 8-9 साल पहले तक आप याद कीजिए तो यहाँ आपके हाथ में, हमारे हाथ में जो भी फोन है वो बाहर से ही आ रहे होंगे कहीं ना कहीं से। अब स्थिति बदली हुई है कि आज अमेरिका वहां के जो यूजर है उसमें से एक फोन मेड इन इंडिया हो रहा है। ये जो बदलते हैं माहौल, उसकी बात उन्होंने की कि हमें किस तरीके से आर्थिक पावर के रूप में उभरना ही पड़ेगा, यही सबसे बड़ी कुंजी है। उसी के साथ समाज का भी ग्रोथ होगा। भारत जैसे देश में जहां इतनी बड़ी जनशक्ति है, आप जान रहे हैं कि आज के दिन हम लोग करीब करीब 4-4.5 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी में देते हैं, आखिर कहां से कर पाएंगे अगर जब तक आप एक आर्थिक ताकत के रूप में नहीं उभरेंगे। और आर्थिक ताकत के रूप में उभरने के लिए इसकी भी जरूरत है, और साथ ही साथ सभी राज्यों को भी लेना चाहिए जो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन की बात है।
0: जी जी,
1: कि भाई ये हेल्दी कॉम्पिटिशन सिर्फ राज्य और राज्य में ना हो, ये हेल्दी कॉम्पिटिशन गांव से शुरू हो सकता है कि एक गांव दूसरे से कॉम्पीट कर रहा हो कि हम अपने गांव को कैसे ज्यादा बेहतर बना पाए, एक शहर दूसरे से कॉम्पीट कर रहा हो कि हम कहां पर ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाए। और उन्होंने कहा कि राज्यों को तो ये कॉम्पीट करना चाहिए कि भाई आने वाले टाइम में हु विल बी द फर्स्ट स्टेट जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का स्टेट होगा।
0: तो आशुतोष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाए, और प्रधानमंत्री ने सहभागिता की बात भी की, क्योंकि उनका ये मानना है, जैसा कि आप भी अभी जिक्र कर रहे थे, कि सारी जनता मिलके और सारे राज्य मिलके ही विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक जन विश्वास की जो बात है, जन भागीदारी की बात है, इस पर प्रधानमंत्री ने काफी जोर दिया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
2: देशवासियों की सहभागिता की हमारी बहुत बड़ी शक्ति। ये 12 वर्ष सरकार और समाज की सहभागिता का उत्सव मनाने वाले रहे हैं। बीते 12 वर्षों में मैंने जो भी सहयोग देश से मांगा, देशवासियों ने दिल खोल करके साथ दिया। मैंने स्वच्छता का आग्रह किया तो पूरा देश निकल पड़ा। मैंने देश से डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए आह्वान किया तो भारत रियल टाइम ट्रांजेक्शन में दुनिया में सबसे आगे निकल गया। मैंने कोरोना महामारी के दौरान एकजुटता का, संयम का आग्रह किया तो देश ने एकजुट होकर उस महामारी का सामना किया। जनता ने कभी हमें निराश नहीं किया। आने वाले समय में भी इसी जन विश्वास और जन भागीदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है।
0: आशुतोष जी, जैसा कि अभी हमने सुना, प्रधानमंत्री ने इसके अलावा हाउसिंग की बात की, वित्तीय समावेशन की बात की, सफाई का भी जिक्र किया, स्वास्थ्य का जिक्र किया। खास तौर से जिस तरह से गरीबी उन्मूलन की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़े हैं और काफी लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की कोशिश की है, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को और क्या जानकारी देना चाहेंगे?
1: न सिर्फ गरीबी से, जो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया, और साथ में उन्होंने कहा कि हमें इसका विशेष प्रयास करना चाहिए, एक साथ मिल करके प्रयास करना चाहिए कि ये फिर से उस गरीबी के दलदल में ना जाए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या यही होती है जब आप इस तरीके की योजनाओं पे काम करते हैं, स्लिपेज की बात, कि आपने कुछ चीजें ठीक की और वो फिर से धीरे धीरे वहीं चला जाए तो वो प्रयास वहां पर विफल होता है। और देखिए, ये गरीबी की जब बात करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा कारक हुआ करता था वो है बीमारी, कि एक बार कोई घर में एक बीमार हो गया किसी गरीब के घर और वो फिर से लोन और इसके दुष्चक्र में फंसता हो, वो वहीं जाता था। बीमारी को लेकर के सरकार ने पहले ही एक कदम उठाया, आज से 5-6 साल पहले जब आयुष्मान योजना की बात हुई थी, उससे बहुत सारी चीजें सुधरी थी। और ये जो 25 करोड़ का आंकड़ा अभी आ रहा है कि इतने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया, वो नियो मिडिल क्लास में और थोड़ा सा उससे नीचे में प्रवेश कर चुके हैं, अब उनकी आकांक्षाएं और बढ़ रही। ये आकांक्षा बढ़ना ही तो है विकसित भारत के लिए जरूरी है।
0: जी जी, और प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि किस तरह से कुछ समय पहले हमारी अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब हम बहुत ही त्वरित गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था की स्थिति में पहुंच गए हैं। और जैसा आपने भी इसका जिक्र किया कि किस तरह से 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से निकाला है, और प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि किस तरह से एक ऐसा भारत बनाया जाए जहां गरीबों के सपने भी पूरे हो पाएं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: जैसा कि हमने सुना, आशुतोष जी जो प्रधानमंत्री ने कहा, वो एक ऐसे भारत के

0: कल्पना कर रहे हैं कि जब 100 साल पूरे हों देश के, तो एक नए तरह का भारत हो जो बहुत विकसित हो और विकसित श्रेणी और विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो पाए। आप इस बारे में क्या और कुछ जानकारी देना चाहेंगे?
1: ये जो विकसित भारत की कल्पना की गई, और उसी समय ये भी है कि विकसित भारत क्या होगा। विकसित भारत का अर्थ ये है कि एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में भारत खड़ा होगा, एक आत्मनिर्भर देश के रूप में भारत खड़ा होगा। भारत की तुलना आप किसी छोटे कंट्री से नहीं कर सकते। बहुत सारे विकसित देश ऐसे हैं जहां की जनसंख्या आप देख लें तो वो पूरे के पूरे भारत में समाई। तो यहाँ की सोच अलग है और उसी तरीके से इसका ग्रोथ किया जा रहा है। मुझे लगता है जो उन्होंने बात कही दिशा सही है,
0: जी
1: थोड़ी गति की बात है जो उन्होंने कही। हाँ, हमें गति और बढ़ानी है, और जिसमें सबके प्रयास की बात की
0: जी
1: उन्होंने,
0: जी
1: ये दोनों चीजें होंगी तो मुझे लगता है दिशा और गति दोनों मिलकर जो है सो इच्छित परिणाम भी देंगे।
0: आशुतोष जी, एक और महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही कि किस तरह से सरकार ने विकास के लिए जो भी जरूरी फैसले हैं वो समय पे लिए, क्योंकि राजनीतिक स्थायित्व तो है और सरकार के पास ये इच्छा शक्ति है कि वो देश को विकास की ओर आगे ले जाना चाहती है। तो सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
2: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही, और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
0: आशुतोष जी, आप और क्या इसमें जोड़ना चाहेंगे? प्रधानमंत्री ने जो बात की कि देश हित में जो भी फैसला जरूरी होगा वो ये सरकार करेगी, जिससे कि देश विकास की दिशा में आगे बढ़ पाए।
1: मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दूंगा। 370 की बात इन्होंने की, और आपको याद होगा कि जब 370 हटाया गया था तो उस समय में किस तरीके की बातें कही जा रही थी। मैं अभी अभी कश्मीर से लौट के आया, बारामूला और शोपिया जैसे जिले, आप वहां भी खुलेआम घूम सकते हैं एक सामान्य नागरिक की तरीके से। वो भी कश्मीर ही नहीं, आप बाहर से जाकर के घूम सकते हैं और सुरक्षित घूम सकते हैं, लोग खुश हैं। उसी तरीके से जो 3 तलाक वाली जो बात कही, सरकार का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि वो आपको नौकरी दे दे, सरकार का काम ये भी होता है कि वो इस तरीके के प्रयास करे कि समाज में भी बदलाव आए।
0: जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर एनडीए कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइड

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरी यादें। आइए सुनते हैं पहला गीत।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरी यादें। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म घर से, लता मंगेशकर के स्वर में। शब्द रचना है गुलजार की, संगीत है आरडी बर्मन का।

इस गीत के साथ ही संपन्न होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुने ही यादें। ये आकाशवाणी रांची है, आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। कलाकार है क्रिस्तिया ठाकुर। गिटार पर राग बागेश्री में आलाप और गत बद्धिक लय की रचना झप ताल में व द्रुत लय की रचना तीन ताल में निबद्ध है।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत, कलाकार थे क्रिस्टिया ठाकुर, ये आकाशवाणी रांची है। अब आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी और
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की टिप्पणी नीति आयोग को लाभ हुआ।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
4: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की

0: संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Vikasit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and developed export-oriented strategies around it. He also identified defence manufacturing as an emerging sector where India is establishing a distinct identity and encouraged the states to formulate policies to leverage the opportunities arising from its growth. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047. Briefing media after the conclusion of the Governing Council meeting, Niti Aayog Vice Chairperson Ashok Kumar Lahiri said the theme covers all aspects of life, including education, health and employment.
3: The topic for the Governing Council meeting was Inclusive Human Development for Vikasit Bharat 2047. And it was about details. The states talked about what they're doing. Inclusive Human Development covers all the 4 stages of life, from childhood to youth to working life to old age. A skilled population is the key to success.
2: A tripartite memorandum of understanding MOU was signed between the center and the governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas along the Assam-Nagaland border. The MOU was signed in New Delhi in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and Nagaland Chief Minister Naifiu Rio. Speaking on the occasion, Mr. Shah termed it as a historic moment, as this initiative will enhance the prospects of oil and natural gas exploration and opens up possibilities for mineral mining as well. India strongly condemned the recent attack on Palau-flagged tanker MT Setebalo off the coast of Oman, in which three Indian nationals lost their lives. Addressing an inter-ministerial media briefing in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that in this regard, the government has lodged a strong protest by summoning the U.S. Charge d'Affaires. Mr. Jaiswal noted that the continuing attacks on shipping in the region are deeply worrisome and linked to the ongoing conflict. All four candidates of the National Democratic Alliance, NDA, have been elected unopposed to the Rajya Sabha from Andhra Pradesh today. The elected candidates are Vashyam Ramakrishna, Sana Satish Babu and Chintakayala Vijay of Telugu Desam Party, TDP, and Lingamaneni Ramesh of Janasena Party, returning of Vanita Ramayana of the Minister of State for Chemical and Fertilizers Anup today said that biopharmaceuticals are shaping the future of modern healthcare and India is well positioned to emerge as a global leader in the sector. Addressing the second Pharma Summit and Awards 2026 organized by ASSOCHAM in New Delhi, the minister highlighted that Biopharma Shakti Initiative envisages the launch of 100 biologics by 2047, contributing to the vision of Viksit Bharat and Swasth Bharat. Ms. Patel said the government has created strong funding and policy pathways across the pharmaceutical value chain. She further highlighted the growing importance of advanced therapies and noted that initiatives such as the PRIP scheme, National Biopharma Mission, are helping create a robust ecosystem for innovation, research and manufacturing. In badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to the women's single quarterfinals of the Australian Open in Sydney today. Sports fans across the world are set for a month-long football spectacle as the 2026 FIFA World Cup kicks off tonight at the historic Estadio Azteca in Mexico City. In the opening match, hosts Mexico will take on South Africa in a Group A clash. The match begins at 12:30 a.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
4: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा यहीं संपन्न होती है। हमारी प्रातःकालीन सभा के साथ सुबह 5:53 पर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।